सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंथी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। इसके अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो वंदना कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आदि शक्ति देवी माँ के नाम से, और उनसे हम ये विनती करेंगे कि हे देवी माँ, आप हम सबके हृदय में प्यार की ज्योत जला दें, ताकि हम प्यार ही बांटते रहें।

श्रोताओं, भक्त मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में हम सब जानते हैं। उन दोनों का प्रेम ऐसा प्रेम रहा है कि लोभ मोह माया से बिल्कुल अलग, एकदम सात्विक प्रेम। और इस प्रेम में मीरा भाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना तन और मन अर्पण कर दिया था।

शब्द के बाद पेश है सरफराज साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में ये नाते पाक।

श्रोताओं, शुक्रवार का दिन है आज और शुक्रवार का दिन आदिशक्ति संतोषी माता के नाम समर्पित होता है। भक्तगण उनकी पूजा आराधना करते हैं और सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ती है उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। माँ संतोषी हमेशा से अपने भक्तों को संतोष देने वाली है। आइए उनकी आरती करें।

और इसी के साथ आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म

ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे वाणी जयराम और संगीतकार सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम उठाया, थोड़ा सा किया, मन में दुविधा पैदा हो गई, यदि ये काम पार ना पड़ा तो नहीं, इसे यूं नहीं, यूं करें तो ठीक रहेगा। उस तरह जरा सा किया कि मन फिर डावाडोल हो गया। काम के लिए आवश्यक है कि पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, फिर उसे आरंभ करना चाहिए। एक बार आरंभ कर दिया तो उसे अपनी पूरी शक्ति से करना चाहिए। जिसकी निगाह इधर उधर भटकती रहती है वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। आपने देखा होगा तांगे में घोड़े की आंखों के दोनों ओर पट्टे बांध दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसे सामने का ही रास्ता दिखाई दे, वो दाएं बाएं ना देखे। पांडवों के तीर चलाने की परीक्षा लेने के लिए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सब भाइयों को इकट्ठा किया, बोले, देखो वो सामने पेड़ पर सफेद रंग की एक नकली चिड़िया है, उसकी आंखों में लाल रंग के दो रत्न लगे हैं, तुम्हें उसकी दाहिनी आंख पर निशाना लगाना है। सब भाई धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने एक एक से पूछा, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बताया, गुरुदेव मुझे तो उस चिड़िया की दाई आंख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी थी अर्जुन की एकाग्रता, तभी तो वो बाण चलाने में बेजोड़ थे। एकाग्रता से आदमी को अपने काम को अच्छी तरह से करने का मौका मिलता है, साथ ही उसका संकल्प भी पक्का बनता है। एक ही साधे सब सधे। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, प्रतिभा के माने होते हैं 90% पसीना बहाना और 10% प्रेरणा। दुनिया के काम मेहनत और एकाग्रता से ही पूरे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति भरी होती है कि उसके द्वारा अनेकों मोटरें और चक्कियां चलाई जा सकती हैं। आवश्यकता बस उस शक्ति को एकत्रित करने की है। अगर जिंदगी में कोई बुद्धिमानी की बात है तो वो एकाग्रता, और अगर कोई खराब बात है तो अपनी शक्तियों को बिखेर देना। दुनिया में लोगों में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन वे अपनी उस शक्ति को केंद्रित करना नहीं जानते। बंधी हुई भाप बड़े से बड़े इंजनों को खींच कर ले जाती है, लेकिन अगर वो बिखर जाए तो बेकार चली जाती है।
0: यह था हमारा आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी कथा से आज का अंक।

डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल गए। वहां से हम लोगों का पता लेकर नए ठिकाने पर पहुंचे। जहाज पर मूर्खतावश मैंने दाद का रोग लगा लिया। वहां खारे पानी में नहाना पड़ता, उसमें साबुन घुलता नहीं था और इधर मैंने साबुन लगाने में सभ्यता मान रखी थी। नतीजा यह हुआ कि शरीर साफ होने के बदले और चिकट होता गया। इससे दांत की शिकायत हो गई। डॉक्टर मेहता को दिखाया, उन्होंने मुझे जला देने वाली दवा एसिटिक एसिड दी। इस दवा ने मुझे खूब रुलाया। डॉक्टर मेहता ने हमारा कमरा वगैरह देखा और गर्दन हिलाई, यहां नहीं चल सकता। इस देश में आकर पढ़ने की बजाय यहां के जीवन का अनुभव प्राप्त करना ही अधिक आवश्यक है। इसके लिए किसी कुटुंब में रहने की जरूरत है, पर फिलहाल तो तुम कुछ गड्ढे बनाए जाओ इसके लिए कि यहां तुम्हारे रहने की बात सोची है, वहां तुम्हें ले चलूंगा। मैंने उनकी सूचना ध्यानपूर्वक स्वीकार की। उस मित्र के यहां गया, उनकी ओर से मेरी खातिर में कोई कसर नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखा, अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। ये कह सकता हूं कि अंग्रेजी थोड़ी बोल लेने की आदत उन्होंने ही डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत टेढ़ा हो गया। बिना नमक मसालों की तरकारियां नहीं रुचती थीं। घर की मालकिन बेचारी मेरे लिए और क्या बनाती। सवेरे तो जई के आटे की लपसी बनाती, इसलिए थोड़ा पेट भर जाता, पर दोपहर और शाम को सदा भूखा रहता। मित्र मांसाहार करने की नित्य सलाह देते थे, मैं प्रतिज्ञा की बात बताकर चुप ही रहता था। उनकी दलीलों का जवाब देना कठिन था। दोपहर को केवल रोटी साग और मुरब्बे पर गुजर करता। शाम को भी वही खुराक थी, रोटी के दो या तीन टुकड़े ही लेता था। अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी, भूख तेज लगती थी और ज्यादा मांगती थी। दोपहर या शाम को दूध का तो काम ही क्या। मेरी ये दशा देखकर मित्र एक दिन चिढ़कर बोले, अगर तुम मेरे मां जाए भाई होते तो मैं अवश्य

0: तुम्हें वापस भेज देता। निरक्षर माता से वहां की परिस्थिति जाने बिना की हुई प्रतिज्ञा की भी कोई कीमत है? इसे प्रतिज्ञा कह ही नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मान सकता। ऐसी प्रतिज्ञा का आग्रह तो केवल एक वहम है, और ऐसे वहम से चिपटे रहकर तुम इस मुल्क से अपने देश को कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुम्हें वह रुचा भी था, वहां खाने की कोई आवश्यकता न थी, वहां तो खाया, और जहां खाने की खास तौर से जरूरत है वहां त्याग। कैसी विचित्र बात है, मैं टस से मस न हुआ। ऐसी दलीलें रोज होती, 100 रोगों की एक दवा ना ही मेरे पास थी। मित्र मुझे जितना समझाते मेरी दृढ़ता उतनी ही बढ़ती जाती थी। नित्य ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करता और वो पूरी होती। ईश्वर कौन है ये मैं नहीं जानता था, पर उस रंभा की दी हुई श्रद्धा अपना काम कर रही थी। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बैथम की पुस्तक पढ़ना आरंभ किया। उपयोगिता का विषय पढ़ने लगे, मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं बड़ी कठिनाई से समझता था। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसी बारीक बातें मेरी समझ में नहीं आती। मांस खाने की उपयोगिता मैं स्वीकार करता हूं, पर अपनी प्रतिज्ञा का बंधन मैं नहीं तोड़ सकता। इसके बारे में बहस दलील मैं नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तर्क में मैं आपसे नहीं जीत सकता, पर मुझे मूर्ख या हठी मानकर इस बारे में क्षमा कीजिए। मैं आपके प्रेम का कायल हूं, आपका उद्देश्य समझता हूं, आपको मैं अपना परम हितेच्छु मानता हूं। यह भी देखता हूं कि आपको दुख होता है इससे आप मुझे इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूं, प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती।
1: अब सुनिए यह वचन।

0: अभी आप साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी कथा से आज का अंक सुन रहे थे। हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि आज दिन में 10:30 पर जागरूक श्रोता कार्यक्रम में विषय रहेगा बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाद की क्या तैयारी हो सकती है, इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा और 10:30 पर आप हमसे जुड़िएगा। विषय एक बार फिर, बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाद की तैयारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्ध त्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनम् न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तम् पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्चन्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नामनिर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षास अधिनियम सम्बद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह सम्बद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी

0: केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है गुणकारी हींग।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे मसालों में श्रेष्ठ हींग की। हींग से तो आप सभी परिचित होंगे। हींग का उपयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है। ये घर घर रसोई घर के मसालदान में मिल जाती है। हींग के बारे में कहा जाता है, जिसके घर में नहीं है हींग, उसको मारे बरखा सींग। मतलब ये कि हींग दाल, सब्जी, कचौड़ी आदि को सुपाच्य, गुणकारी तथा हाजमे को दुरुस्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि बच्चों के पेट में दर्द होता हो, पसली चलने लगे या सर्दी लग जाए, ऐसे में हींग पानी में घोलकर पिलाएं, बहुत लाभ होगा। प्राचीन ग्रंथों में हींग से बहुत सारी औषधियां तैयार करने की चर्चा की गई है। हींग हरित क्यादि वर्ग का वृक्ष है। इसका वृक्ष लगभग 8 फीट लंबा होता है। इसके पत्ते कोमल होते हैं, जिन पर छोटे छोटे रोएं दिखाई देते हैं। प्रत्येक डाल पर लगभग एक साथ 3 पत्ते निकलते हैं। पत्तों के किनारे कटे रहते हैं। इसका फल छोटा होता है। इसके फल के पास गूंद निकलता है, जिसे हम हींग के रूप में जानते हैं। हींग में एक प्रकार का उड़नशील तेल होता है, जिसकी मात्रा 6-17% तक मानी जाती है। ये तेल लहसुन में पाए जाने वाले तेल की तरह ही होता है। आचार्य चरक ने हींग के बारे में लिखा है कि हींग वात और कफ जन्य विकारों को दूर करने वाली, दोषों को दूर करने वाली तथा भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली होती है। हींग की अनेक विशेषताएं हैं। हींग उदर की पाचन क्रिया को तेज करती है तथा पेट के विकारों को नष्ट भी करती है। हींग सभी प्रकार के प्रोटीन, वसा, कार्बोज आदि को भी पचाती है। अजीर्ण होने पर एक उपाय करके देखें, बहुत लाभ होगा। सौंठ, जीरा, हरड़, पीपल तथा अजवाइन 2-2 चम्मच की मात्रा में लेकर पीस कर एक चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 2 चुटकी हींग मिला लें। प्रतिदिन भोजन के बाद सुबह शाम आधा आधा चम्मच की मात्रा में सेवन करें, बहुत लाभ होगा। एक और उपाय करके देखें, अजवाइन, हरड़ 4-4 ग्राम, काला नमक 2 ग्राम, घी में भुनी हुई हींग 2 चुटकी, सबका चूर्ण बनाकर आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ भोजन के बाद सेवन करें, अजीर्ण समाप्त हो जाएगा। उदर विकारों विशेषकर वायुजन्य विकारों को मार भगाने में हींग की विशेष भूमिका है। यही कारण है कि इसे प्रमुख घटक के रूप में अपनाकर चून बनाए जाते हैं। ये सभी तुरंत गैस का नाश करते हैं। सोंठ, सौंफ, सनाए, हींग, सेंधा नमक तथा छोटी हरड़, सभी चीजों को बराबर मात्रा में लें। सबको अलग अलग कूट लें, फिर कपड़ छान करके सबको मिला लें। ये चून आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी से लें। रात को सोते समय लेने से ये काफी आराम पहुंचाता है। यदि मिचली महसूस हो रही हो तो ऐसे में एक उपाय करके देखें। बड़ी इलायची के दानों को पीसकर उनमें जरा सी हींग मिला लें। इसे शहद के साथ चटाएं। पीपल का चूर्ण एक चुटकी, हींग आधी चुटकी, नींबू का रस आधा चम्मच, तीनों को मिलाकर शहद के साथ सेवन करें। सूखा अनारदाना पानी में भिगो दें, उसके बाद दाने को पानी सहित रोगी को दें, बहुत लाभ होगा। पेट में कृमि होने पर 5 बूंद लहसुन के रस में 2 रत्ती हींग मिलाकर 4-5 दिन नियमित रूप से खिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। पेट की छोटी मोटी खराबियां हींग के सेवन से दूर हो जाती हैं। अपने दैनिक जीवन में आप भी हींग का प्रयोग कीजिए, बहुत लाभ होगा।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था गुणकारी हींग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। किसान भाई सुने खेती की बातें। आज का विषय है मिर्च, भिंडी और बैंगन की फसल में सामयिक कार्य।
3: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, और इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और बरसात का समय है, तो हम सब्जियों की फसलों में कुछ सामयिक कार्य करते हैं जिससे हमें लाभ होता है। तो आज ऐसी ही एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है मिर्च, भिंडी और बैंगन की फसल में सामयिक कार्य। किसान भाइयों, मिर्च, भिंडी और बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलें हैं। इन फसलों से अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए समय समय पर आवश्यक कृषि कार्य करना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारे किसान भाई उचित समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई, पोषक तत्वों का प्रबंधन और कीट एवं रोग का नियंत्रण करें तो उत्पादन और लाभ दोनों में वृद्धि होती है। इन फसलों में सिंचाई प्रबंधन भी जरूरी है। किसान भाई, इन तीन फसलों में मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वर्षा न होने पर 5-7 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई हमें करनी चाहिए। अधिक पानी भरने से जड़ों में सड़न, मुरझन और अन्य फफूंद जनित रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए हमें हल्की सिंचाई इनमें करनी है। और वर्षा के मौसम में खेत से अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था भी हमें इसमें रखनी है। किसान भाई, इसके साथ साथ निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। किसान भाइयों, खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी और प्रकाश का उपयोग कर लेते हैं जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार मुक्त रखें। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और फल का उत्पादन भी बेहतर होता है। इसके साथ साथ इन फसलों में मिट्टी चढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। भिंडी, मिर्च और बैंगन की फसल में पौधे के आधार पर हल्की मिट्टी चढ़ाना लाभदायक होता है। इससे पौधे मजबूत रहते हैं, गिरते नहीं हैं और नई जड़ों का विकास भी बेहतर होता है। किसान भाइयों, इन फसलों में संतुलित उर्वरक प्रबंधन भी जरूरी है, क्योंकि अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें खाद प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो हम अपने इन पौधों में नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरोन और कैल्शियम की मात्रा भी हम अपने पौधे को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी अपने पौधों में डालनी चाहिए, जिससे हमारे फल अच्छे बने और उनका विकास अच्छे से हो। इसके साथ साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है, इन फसलों में कीटों की हमें निगरानी रखनी है जिससे हमारी फसलों में कीटों का प्रभाव ना हो, क्योंकि इन फसलों में माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला, फल एवं तना छेदक और लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इसके लिए हमें खेत का नियमित निरीक्षण करना चाहिए, और अगर हमें कुछ कीट दिखाई देते हैं तो उसके लिए हमारे किसान भाई पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप लगाकर इन कीटों की संख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ साथ रोगों का नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। मिर्च में पर्णकुंचन, मुरझान और फल सड़न, बैंगन में जीवाणु मुरझान और भिंडी में पीला सिरा मोजक रोग प्रमुख होता है, जो हमारे पौधों को प्रभावित करता है, जिससे फसल और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में रोगग्रस्त पौधों को तुरंत निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए और खेत में हमें जल भराव नहीं होने देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अनुशंसित फफूंदनाशी का प्रयोग या जैविक उपाय का प्रयोग अपनी फसल में करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें एक चीज का ध्यान और रखना है, फल एवं तना छेदक कीट का प्रबंधन।

0: करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेष रूप से बैंगन और भिंडी में फल एवं तना छेदक कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी फसल का उत्पादन काफी हद तक प्रभावित होता है। इसके लिए हमें प्रभावित तनों और फलों को नियमित रूप से तोड़कर खेत से बाहर नष्ट कर देना चाहिए, और इसके साथ हमें फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर हमारे किसान भाई कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हमें पौधों की देखभाल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंगन और मिर्च के पौधों में सूखी पीली या रोगग्रस्त पत्तियां तथा शाखाओं को समय समय पर हमें हटाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे में वायु संचार अच्छा रहता है और रोगों का प्रकोप कम होता है। किसान भाइयों, इन फसलों में समय समय पर हमें तुड़ाई करनी चाहिए, और भिंडी की तुड़ाई हमें 2-3 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए ताकि फल कोमल अवस्था में हमें मिले, और मिर्च की तुड़ाई उपयोग के अनुसार हरी या लाल अवस्था में हमें करनी चाहिए, और बैंगन की तुड़ाई तब करें जब फल पूरी तरह से विकसित हो जाए और उसमें चमक बनी रहे। समय समय पर तुड़ाई करने से नए फूल और फल अधिक बनते हैं, और इसके साथ साथ हमें जैविक एवं समय के अधिक प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। इसमें नीम आधारित जैव कीटनाशकों का प्रयोग हमें करना चाहिए, इससे लागत कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात यह निकल के आती है कि मिर्च भिंडी और बैंगन की फसल में समय पर सिंचाई निराई गुड़ाई संतुलित उर्वरक प्रबंधन जल निकासी कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी और समय पर तुड़ाई जैसे सामयिक कार्य अपनाकर किसान भाई उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था मिर्च भिंडी और बैंगन की फसल में सामयिक कार्य। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संसद समीक्षा आज रात 8:00। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आज रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज सवेरे 10:30 पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम जो सजीव होगा, जागरूक श्रोता में विषय रहेगा बाढ़ से पहले, दौरान और बाढ़ के बाद की तैयारी। इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। हमारे फोन नंबर आप जानते ही हैं, एक बार फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 94-570-78-288। दूसरा नंबर है 0-1341-230-105। तो ये हमारे दो नंबर हैं और दोनों नंबर चालू हैं, इन पर आप हमसे बात कर सकते हैं। विषय आपको एक बार फिर याद दिला दें, बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की तैयारी, ये हमारा विषय रहेगा। समय 10:30 से। आज शाम 6:45 पर एडवोकेट गजेंद्र सिंह से अंकित सैनी की बातचीत का विषय रहेगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर किसान भाइयों की खेती और पशुओं से संबंधी समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री प्रसारित किया जाएगा। आज के युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे, बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, ये शाम गजलों के नाम, और यंग अचीवर्स क्रम में हिमांशु की वंशिका से बातचीत भी सुनवाई जाएगी। क्रम रहेगा लव स्टोरी का, बूस्टर्स का, और साथ में आप फिल्म संगीत भी सुनेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कल मध्यरात्रि एक वीडियो संदेश जारी करके इस मामले में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। प्रधानमंत्री के फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
2: इसी से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग की, सरकार हमारी मांग पूरी कर दे।
0: इस बीच केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपने सामान्य वजन को प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों से चल रहा अपना उपवास समाप्त कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जिले के पहले 6-लेन फ्लाईओवर के सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है।
4: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है।
4: याद करिए, हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज यहाँ से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
0: मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल से गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुए सप्त दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या में कल विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिराम दास छावनी में हुई इस बैठक में श्री राम लला मंदिर की धार्मिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
5: बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। बुधवार को हुई श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। कल हुई बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जाँच पर भरोसा रखा जाए और जाँच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष न पहुंचा जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जिलों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। कल ही के दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

साथ साथ। कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी सुधीर श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। शुक्रवार की एक नई और खुशनुमा सुबह में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, आज के इस अंक में क्या क्या रहेगा पहले वो बता दें आपको।

लेखक, गीतकार और संपादक मनोज कुमार साहब के फिल्मी सफर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। आज 24 जुलाई है और हम मना रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो हम आपको ये बता दें कि ये दिवस साल की वो तारीख है जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी पृथ्वी द्वारा उस साल में उन संसाधनों को दोबारा बनाने की क्षमता से अधिक हो जाता है। और अगर हम इसे आसान शब्दों में आपको समझाएं तो अगर एक साल तक के लिए प्रकृति का बजट एक तय सीमा तक माना जाए तो हम सभी ने उस बजट को तय सीमा से पहले ही खत्म कर दिया है और इसके साल के बचे हुए दिन अपने आने वाले भविष्य के प्राकृतिक संसाधनों का उधार लेकर या उन सबको खत्म करके काम चला रहे हैं। और ये कई बार व्यवहार में भी देखने को मिलता है। हम आपको बता दें कि सन 1970 के दशक में ये दिन दिसंबर के अंत में आता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या और खपत बढ़ी है ये दिन साल के लगभग आधे में आने लगा है। श्रोताओं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी वर्तमान खपत की दर बहुत अस्थिर है। अगर सभी इंसान दुनिया के औसत नागरिक की तरह संसाधन खर्च करें तो हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 1.7 से 2 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। फिर हम बल दे रहे हैं अपनी इस सेंटेंस पे कि लगभग 1.7 से 2 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। तो श्रोताओं, हम सबको इस अपनी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई नुकसान ना हो। तो ये बात हुई अर्थ ओवरशूट डे की। और इस समय हमारे देश के वे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं अपने इसी वर्तमान सत्र में ही सही करियर का चुनाव कैसे करें, इस अहम मुद्दे पर अपने साथियों और परिवारजनों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। कई बार सही करियर चुनने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये समस्या भी सामने खड़ी हो जाती है। श्रोताओं, वर्तमान समय तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों और बदलते रोजगार बाजारों का दौर है। ऐसे में छात्रों को अपने रोजगार के लिए कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। दुनिया हर पल बदल रही है, नए अवसर और चुनौतियां करियर पथ को प्रभावित कर रही हैं, जिससे करियर को समझना काफी कठिन लगने लगता है। तो हम आपको बता देंगे, सबसे पहले हमारे छात्रों को आत्म जागरूक होना होगा कि वे अपनी रुचियों को पहचानें, प्रासंगिक कौशल को विकसित करें और उन्हें नौकरी की जरूरतों के साथ मिलाना है। इसके साथ साथ कैसे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मार्गदर्शन तो बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके व्यक्तियों से वार्तालाप करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, फाइनेंस भी अनेक बदलावों के साथ हैं। भविष्य में किस सेक्टर में नौकरी है उसका अध्ययन भी जरूर करें, दूसरों की देखा देखी से करियर ना चुने। इस 2026 में केवल डिग्री होना ही काफी नहीं होता, आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्टिफिकेशन कोर्स, इंटर्नशिप और वर्कशॉप के जरिए व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इन सभी के साथ करियर काउंसलर भी काफी मदद देने वाले हो सकते हैं। तो इस तरीके से सही करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं आगामी सत्र के संदर्भ में हमने आपसे बात। सुनवाते हैं आपको ये गीत, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: और श्रोताओं, आइए अब नजर डाल लेते हैं बीते वर्षों की 24 जुलाई की कुछ अहम घटनाओं की तरफ भी। तो 24 जुलाई सन 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव कदम रखा गया और उसके अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। हम आपको बता दें कि ये दोनों यात्री अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में उतरे थे और इनकी पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी हुई थी। 24 जुलाई सन 1991 में भारत के आर्थिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट लिया। इसके अंतर्गत तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों और उदारीकरण का बजट पेश किया था। 24 जुलाई सन 1985 को प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शानदार करियर में 27 बार विश्व खिताब जीते हैं। उन्हें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 जुलाई सन 1980 में भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का निधन हुआ। हम आपको बता देंगे उन्हें बंगाल का महान नायक कहा जाता था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में छोटी सी मुलाकात

अमानुष, आनंदाश्रम के अलावा किताब और धूरियां जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी सुचित्रा सेन के साथ काफी पसंद की गई। 24 जुलाई सन 1980 को बंगाली फिल्म ओगो बोधू सुंदरी की शूटिंग करने के समय दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, आज हम भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक, जिन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान और कुशल अभिनेताओं में से एक माना जाता है, मनोज कुमार की जयंती मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनका जन्म 24 जुलाई सन 1937 को ब्रिटिश भारत के एबटाबाद में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। बात अगर उनके फिल्मी सफर की करें तो सन 1957 में फैशन में आने के बाद 1958 में सहरा, 1959 में चांद, 1960 में हनीमून जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के बाद 1961 में इन्हें कांच की गुड़िया में अपनी पहली मुख्य भूमिका मिली। लेकिन सन 1962 में आई फिल्म हरियाली और रास्ता से इन्हें सफलता मिली। उसके बाद वो कौन थी में उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। सन 1965 में उन्होंने अपनी पहली देशभक्ति फिल्म शहीद बनाई, जो क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म इतनी सफल रही कि मनोज कुमार को देशभक्त के रूप में भी पहचाना गया और ये देशभक्ति की फिल्मों में काम करने लगे। उसके बाद उपकार भी देशभक्ति से ओतप्रोत थी। ये समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी उस समय। सन 1968 में उन्होंने फिल्म नीलकमल में राजकुमार के साथ सह अभिनय किया। पूरब और पश्चिम फिल्म ने भी उन्हें देश विदेश में खास पहचान दिलाई। 1970 में उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में, 1975 में सन्यासी में, 1977 में अमानत, 1981 में क्रांति का निर्देशन किया और दिलीप कुमार, हेमा मालिनी आदि के साथ बेहतरीन काम किया। सन 1995 की फिल्म मैदान जंग के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। 4 अप्रैल सन 2025 को उनका निधन हुआ। आज उनकी जयंती के मौके पर उनको सादर नमन और श्रद्धांजलि। आपको सुनवाते हैं उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया देशभक्ति का ये गीत।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज के जागरूक श्रोता सजीव फोन इन कार्यक्रम में सवेरे 10:30 पर हमारा विषय रहेगा बाढ़ से पहले, दौरान और उसके बाद की तैयारी। इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। फोन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 94-570-78-288-0134-123-0105। ये हमारे दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर चालू हैं, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को तैयार भी कर लीजिएगा। एक बार फिर विषय बता दें, बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की तैयारी, ये विषय रहेगा। समय 10:30 पर। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आज हम एक और अहम दिवस मना रहे हैं जिसका नाम है आयकर दिवस। तो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक कमाई या लाभ पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स को ही आयकर कहा जाता है। इस कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे आदि के विकास के लिए किया जाता है। हम इसके इतिहास की बात करें तो सन 1860 में सर जेमन विल्सन ने पहली बार राष्ट्रीय आयकर दिवस की स्थापना की थी, जी, जो इसकी शुरुआत थी। लेकिन व्यापक आयकर अधिनियम 1992 ने देश में एक संगठित कर प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। श्रोताओं, सन 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड एक विधायी एजेंसी को आयकर अधिनियम के कर्तव्यों का निर्वहन करने का काम सौंपा गया। 1946 में ग्रुप ए अधिकारियों की भर्ती हुई जिनका प्रारंभिक प्रशिक्षण बॉम्बे और कोलकाता में हुआ। सन 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन किया गया। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 ने प्रत्यक्ष करों के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जिसे CBDT या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम से भी जाना गया। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का महत्व समय पर कर भुगतान से संबंधित जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित करना, देश के विकास और नैतिक दायित्वों के लिए समय पर कर का भुगतान के लिए महत्व के बारे में जनमानस को शिक्षित जागरूक करके कार्यक्रम आयोजित करना भी है। श्रोताओं, आयकर दिवस पर आयकर विभाग उसके सम्मान में एक स्मारक सिक्के डाक टिकट भी जारी करता है। आइए हम सब भी समय पर कर भुगतान करें ताकि देश के विकास में तेजी से वृद्धि और इसका उद्देश्य भी पूरा हो सके। चलते चलते नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की अहम सुर्खियों की तरफ भी। तो देश के 24 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों समेत कई अन्य विधि संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2027 की तारीख घोषित कर दी गई है।

0: आवेदन 3 अगस्त को और 31 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इसके अलावा भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया को अपना जलवा दिखा दिया है। वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 में न सिर्फ अपना पहला अर्धशतक जड़ा, बल्कि ये कारनामा करने वाले वो सबसे युवा क्रिकेटर भी बन गए हैं। उन्होंने 15 वर्ष और 118 दिन में ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं की निगरानी के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने पिरामल फाउंडेशन पर एजुकेशन लीडरशिप के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये थी आज के अखबारों की कुछ अहम सुर्खियां। चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये संदेश और उसी के साथ एक गीत।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना खास ख्याल रखें।

0: साथ साथ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: घर खर्च के पैसे 2,000 जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
7: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और

0: सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्द रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 में बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.rtfrecruitment.edcis.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। रिपोर्ट।
2: इस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी।

0: केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध भुदा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसिमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
0: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है. वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
5: द दिल्ली हाई कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ फास्ट ट्रैक कोर्ट टू हियर केसेस अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases.

0: अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडस्ट्रीज एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स।
1: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वर्ष जनवरी में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का संपन्न होने से हमारी इंडस्ट्री तथा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अभूतपूर्व अवसरों का द्वार खोलेंगे।
0: She said, India and Romania have agreed to expand cooperation in areas such as manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, renewable energy, green hydrogen, agricultural production, fertilizers, science and technology, digital public infrastructure and artificial intelligence. This is Subhashree Mahapatra from Bucharest, Romania.
2: The sacred city of Puri in Odisha is witnessing the Bahuda Yatra today, marking the ceremonial return journey of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra from the Gundicha temple to the Sri Jagannath temple. More from our correspondent.
3: The sacred city of Puri has come alive with an atmosphere of profound devotion and spiritual fervor as millions of devotees gather to witness the Bahuda Yatra, the auspicious homeward journey of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. The return journey symbolizes the divine reunion of the sibling deities with their eternal abode after their annual sojourn at the Sri Gundicha temple. Amid the resonant chants of devotees and the rhythmic beating of traditional percussions, the deities will ceremonially escorted in the Pahandi procession and seated on their magnificent chariots. During the journey, Lord Jagannath's chariot will halt at the Mausima temple, where the Lord will be offered Pudo Pitha, a traditional baked cake prepared from rice, lentils and jaggery. The Bahuda Yatra embodies Odisha's timeless spiritual legacy and the enduring values of faith, compassion, inclusiveness and universal brotherhood. Prakash Das for Akashvani News.
2: Torrential rains have continuously battered Gujarat over the last 48 hours, affecting multiple districts in the central and southern regions, including Ahmedabad, Surat, Navsari and Valsad. Chief Minister Bhupendra Patel chaired a high-level review meeting in Gandhinagar late last night to assess the flood situation and direct relief operations. More from our correspondent.
4: Heavy rainfall in South Gujarat region has triggered a flood-like situation in Navsari, Valsad and Surat as local rivers and dams including Zui and Kelia are overflowing. Extensive relief and rescue operations are underway across the 10 affected districts with teams of Army, NDRF, SDRF and Fire Brigade deployed on the ground. Over the past 24 hours, thousands of stranded residents have been shifted to safer locations and relief shelters. In view of the student safety, all the schools and colleges will remain closed today in majority of the districts in the state. Meanwhile, rail traffic between Ghulwad and Umargam road station has been suspended as a precautionary measure after water levels touched the danger mark at a railway bridge, which led to the cancellation and diversion of several trains including Vande Bharat and Shatabdi. The state administration has urged citizens to avoid unnecessary travel and rely strictly on official advisories. Aparna Khot, Akashvani News, Ahmedabad.
2: The death toll in Assam due to floods has risen to 47 with 6 more deaths reported yesterday. Over 7.21 lakh people are affected by the floods in 11 districts across the state. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, began in Glasgow, Scotland, with a spectacular and colourful opening ceremony. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent, led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain, marched with athletes waving miniature tricolours. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75-kilogram semi-finals after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
5: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today. Headlines, the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
2: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामला से निमटने की खातिर मुतालिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसवदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसवदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीजें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
7: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
6: वजीर आजम ने कहा कि पेपर लीक होने के वाकये के बाद से गुज़श्ता ढाई महीने के दौरान कई इकदाम किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल जाया न हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना जरूरी था।
7: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा

0: जुडिशल अफसर अन्नू ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वजीर आजम के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निजाम तालीम में इस्लाहात और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवान को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
2: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ के गैस टर्बाइन तहकीक ई इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि डीआरडीओ के डिजाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निजाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने तवील दूरी के जमीन से फिजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नजदीक एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि यह पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई।

0: वजारत ने कहा है कि कुशा मिजाइल निज़ाम लड़ाका जेट हवाई जहाजों मिजाइलों ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस टेक्नोलॉजी तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नजरिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हम मनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ का जायजा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 वर्ष में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती मुहैदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कानात पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैन्युफैक्चरिंग अद्वियात सेहत की देखभाल काबिल तजदीद तवानाई ग्रीन हाइड्रोजन जरई पैदावार खाद साइंस टेक्नोलॉजी डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के कयाम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश कोंकण गोवा मध्य प्रदेश ओडिशा पंजाब सौराष्ट्र कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद सूरत नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए OVO हाइड्रो अरीना में दाखिल हुई। इफ्तिताही तकरीब से पहले ही दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों के मामले में भारत ने अपना खाता उस वक्त खोला जब ओलंपिक में मेडल जीत चुकी मुक्केबाज लवलीना सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वजीर आजम मोदी के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वो सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जरूरी इमदाद फराहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासिर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफे अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हो रहे हैं। समय है गोल्डन हिट्स का, तो गोल्डन हिट्स कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस अंक में। और इस अंक में जो एक ख़ास बात रहेगी वो ये रहेगी कि आज के जो हमने ये गीत सुने हैं ना, ये सब भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक मनोज कुमार पर आधारित हैं, यानी उनकी ही फिल्मों से लिए गए हैं। तो पेश है कार्यक्रम का पहला गीत मुकेश की आवाज़ में।

पहला गीत था मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम हिमालय की गोद में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: पेश कार्यक्रम का अगला गीत मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में।

शोर फिल्म का गीत आपने सुना, मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इससे पहले कि हम आपको अगला गीत सुनवाएं, एक बार फिर याद दिला दें, आज सवेरे 10:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता में विषय रहेगा बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की तैयारी। इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, नंबर आप हमारे जानते ही हैं। विषय एक बार फिर बताना चाहेंगे, बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद की तैयारी, ये हमारा विषय रहेगा। इस पर हम आपसे बात करेंगे सवेरे 10:30 से। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा, ताकि हमें भी आपसे बात करने में अच्छा लगे और आप खुद अच्छा महसूस करें। चलिए, खैर ये बात तो रही जागरूक श्रोता की, और गीत हम आपको सुनवा ही रहे हैं। अभिनेता मनोज कुमार साहब पर फिल्माए हुए ये गीत बहुत अच्छा है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। है ये बड़ा भावपूर्ण मुकेश की आवाज़ में, और मुकेश की आवाज़ इन पर बहुत फिट बैठती थी, है ना। बहुत सारे गीत मुकेश ने ही गाए हैं, गाए अन्य कलाकारों ने भी हैं, तो हमने कोशिश की है कि कुछ कलाकारों को हम लेके आए इस कार्यक्रम के जरिए और वो गीत आपको सुनवाएं जो चुनिंदा गीत है मनोज कुमार साहब पर फिल्माए हुए। फिलहाल मुकेश की आवाज़ में ये भावपूर्ण गीत।

ये गीत था फिल्म पूरब और पश्चिम से, मुकेश की आवाज थी, इंदिवर ने लिखा था, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ थी सन्यासी फिल्म के लिए। विश्वेश्वर शर्मा ने लिखा था और गीत को धुन तैयार की थी शंकर जय किशन ने। एक गीत और है हमारे पास में, है ना, और वो फिल्म का नाम है दो बदन। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूं ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। और ये आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत रहेगा। एक बार फिर याद दिला दें, 10:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आज का विषय रहेगा बाढ़ से पहले, उसके दौरान और बाद की तैयारी।

0: आज का गोल्डन हिट्स में हमने आपको अभिनेता मनोज कुमार साहब पर फिल्माए हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत सुनवाए। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, समय है जिले की हलचल का।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कालूकुआ चौराहे में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा और बबेरू विधानसभा की 229 परियोजनाओं की शिलान्यास के लिए मुझे इस वीरांगना की धरती में आने का सौभाग्य मिला है। अब मुझे बुंदेलखंड आने में गर्व महसूस होता है। आज बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण था। बुंदेलखंड में पहले ना तो कनेक्टिविटी थी, ना सिंचाई और ना ही पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा में खेत बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। विगत 2 जुलाई को कृषि मंत्री ने बांदा में मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
2: जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें इन बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के बारे में जनपद

0: एक और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल ने की। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवम यादव ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के अंतर्गत विद्यालयी वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 65 विद्यालयी वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 43 वाहनों को सीज किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों में वैध फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और जीपीएस जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 5,70,000 पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए 20 मोबाइल वाहन और 32 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण के साथ जियो टैगिंग और पोर्टल पर फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और स्वस्थ पशु ही किसानों की समृद्धि का आधार हैं। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RP शर्मा ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यात्रा मार्गों पर विद्युत पोलों की सुरक्षा, खुले ट्रांसफार्मर की बैरिकेटिंग और झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मार्गों की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई, जबकि नगर निकायों को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एटा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोजगार मेला, तकनीकी प्रदर्शनी और कौशल विकास पर आधारित तमाम गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की ओर से तैयार किए गए तकनीकी मॉडल और जॉब वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। सफल प्रशिक्षुओं, उद्यमियों और संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक को भी सम्मानित किया गया। बृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जनपद के विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थानों, सड़कों के किनारे, नहरों और तालाबों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं लाभार्थियों को सहजन यानी मोरिंगा के पौधे वितरित किए गए, साथ ही ढाक और पलास के पौधे भेंट कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित वातावरण

0: उपलब्ध कराया जा सके। जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस बार जनपद में तय लक्ष्य 31,36,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है।
1: हरियाली का कवर यहाँ बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर लक्ष्य वृक्षारोपण का था 31,36,400 और इसके सापेक्ष 32,94,000 पौधरोपण हुआ है। शासन स्तर से भी और बड़े बड़े पैचेस को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया। हर ब्लॉक में 15 से 20 पैचेस ब्लॉक्स बड़े थे, ब्लॉक प्लांटेशन जहां पर अच्छा हुआ है और हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कपीवन करके प्लांटेशन कराए गए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे रामकुमार राठौर की आवाज में आल्हा। पहले सुनते हैं ये आल्हा।

0: रामकुमार राठौर की आवाज में आपने ये आल्हा सुना और अभी ये संदेश।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रामकुमार राठौर की आवाज में आल्हा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रामकुमार राठौर की आवाज में आल्हा।

0: रामकुमार राठौर के गाए इस आल्हा के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मेरा यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरे साथी
1: और मैं हूं राजवीर सिंह, मेरा भी आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल नमस्कार स्वीकार कीजिएगा और हम दोनों की तरफ से स्वागत भी आप
1: और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीत तुम्हारे। तो हमारे जो भी श्रोता साथी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना, तो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अब से लेकर के 10:30 के बीच। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो श्रोताओं इस नंबर पर लिख भेजिए अपना नाम पता और अपनी फरमाइश और भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।
0: बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं, लगातार मैसेज हमें मिल ही रहे हैं
1: मनोज जी, लगातार मैसेज हमारे पास श्रोताओं के आ ही रहे हैं। लेकिन एक बात और हम अपने श्रोताओं को यहाँ पर कहना चाहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: कि आज 10:30 पर जो लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा जागरूक श्रोता, उसमें आज श्रोताओं से बातचीत का हमारा विषय है बाढ़ से पहले और बाद की तैयारियां। तो हम कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि जो भी श्रोता साथी इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे तमाम श्रोताओं तक अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हमें 10:30 से लेकर के 11 के मध्य हमारे नंबर 9457078288 और 01341230105 पर कॉल कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे मैसेजेस हम भी देख रहे हैं मनोज जी की, हमारे इस समय स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो चलिए मैसेज पढ़ने का सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं।
0: चलिए बिल्कुल, तो सबसे पहला मैसेज मैं ले रहा हूँ, हमारे नियमित श्रोता हैं ये विलेज और पोस्ट राहु नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान, राघव चौहान, कनिष्का चौहान, भव्या चौहान और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे आप भी श्रोता हैं, जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे ये श्रोता भी हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप भी श्रोता। ये मैसेज मुझे मिला है रेलवे रोड गंजुंडवारा से, मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम। के अलावा एक मैसेज और लेते हैं, ये एम ताहिर यानी मोहम्मद ताहिर का, पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर के हमारे श्रोता हैं और ये हमारे श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं, मोहल्ला हलवाईयान शिरकुट बिजनौर के, मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी, हिना कौसर। के अलावा ये गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, राजवीर आप।
1: और ये मैसेज जो मैं देख रहा हूँ, ये मैसेज हमें मिला है गांव गधोरना, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। हमारे श्रोता हैं मदनगिरी, विमलागिरी, बलराम, भारत, सोनिया, मधु, रमन और दिव्या गिरी। और इसी गीत को सुनना चाह है, ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है। हाँ, ये फरमाइश हमारे पास आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। और ये फरमाइश है सल्लार पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा मिराज, मिराजुद्दीन इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। और तेलंगाना निज़ामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश और आसिफ शेख ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास कर भेजी है। और ये फरमाइश हमें मिली है गांव पाठर कड़वा से, फरमाइश करता है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। फरमाइश कर रहे हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी और समस्त परिवार। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये मैसेज हमारे पास आया है कमर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की ओर से।
0: ये मैसेज और पढ़ते हैं हम। लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी भाई बागरी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी के अलावा एक मैसेज और लेते हैं, उसके बाद आपको आप ही की पसंद का ये गीत सुनवाएंगे। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया, लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत क्रांति फिल्म का।

ये बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर के साथ नितिन मुकेश की आवाजों में आपने सुना। फिल्म का नाम था क्रांति और ये गीत मनोज कुमार साहब पर अभिनीत था और उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा था, वो गीत हमने सुनवा दिया और संदेश उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं यानी राजवीर और हम दोनों मिलके उसे पसंद करने वाले हैं आप सब। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि परी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मौला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं ग्राम जुझेला थाना शिवाला कलां बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, सायना, महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए लगातार हमारे श्रोता लाइन पर हैं। हाँ जी, ये मैसेज है नसीब रो रेडियो श्रोता संघ नागचुंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी। और इसके अलावा ग्राम नागर कुहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद देखिए आप भी हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रमा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक, वीके पुरी, विनोद पुरी भी इनके साथ में ही हैं और ये गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं भाई। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी और राजवीर।
2: जी हाँ, और अगला मैसेज हमारे पास आया है गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही का। और इसी गीत को सुनना चाहा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है गाँव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युआन और आर के राजा ने। फरमाइश कर रहे हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाविया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। और ये फरमाइश मनोज जी हमें मिली है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से।
1: जी,
2: फरमाइश कर रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ
1: मरावी। बिल्कुल।
2: और ये फरमाइश है चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव और छत्तीसगढ़ महासमुंद से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, याकूब आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम।
1: चलिए तो सुनवा देते हैं राजवीर अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का अगला गीत।
2: फिल्म
1: अमानुष्का है ये किशोर कुमार की आवाज में और ये गीत अभिनेता उत्तम कुमार पर फिल्माया गया है। इसकी भी हमारे श्रोताओं ने पसंद किया था कि भाई ये गीत भी आप सुनाइएगा क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है।
2: हाँ, तो फिर देर ना करते हुए प्ले कीजिएगा आज का ये सॉन्ग।
1: बिल्कुल।

0: अमानुष फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, और ये संदेश उसके बाद अंतिम गीत सुनवाएंगे आपको।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए फरमाइश करने वाले आप सब हैं खतों के जरिए। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और शीतल कश्यप। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, और कस्बा मीरगंज बरेली से ही भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक। शाही मार्केट से और जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, आराफा चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी। पसंद करने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूरबीन के साथ हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और राना सिद्दीकी। मौला अफगानान शेरकोट बिजनौर से आप हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और इनका पूरा परिवार। सारनपुर दाऊद सराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी। दूल्हापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और इनका पूरा परिवार। राजवीर कुछ?
6: जी हाँ बिल्कुल। और ग्राम नंगलाउबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से फरमाइश कर रहे हैं ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और परिवार के सदस्य। और इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद से गीता रानी वर्मा, अनीता वर्मा, मेघा वर्मा, नैना वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और अमित वर्मा ने। ये मैसेज हमें मिला है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली की ओर से। ये फरमाइश हमारे पास आई है सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना की ओर से। ये अगले श्रोता हैं हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। फरमाइश कर रहे हैं नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम और बेबी मरियम। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

0: आई मिलन की रात फिल्म के इस गीत के साथ आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे और मेरे साथी राजवीर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। तो जागरूक श्रोता कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत है और सभी श्रोताओं को नमस्कार आज के इस अंक में। और विषय वैसे तो हम कई बार बता ही चुके हैं, आज का विषय रहेगा
1: जी, हमारा आज का विषय है बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की तैयारियां।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे जो भी श्रोता साथी हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस संबंध में अपने विचार हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहते हैं तो वो हमें हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। नंबर हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। हमारे फोन नंबर है 9457078288 और हमारा लैंडलाइन का नंबर है 01341। ये कोड है नजीबाबाद का और 230105 ये हमारा फोन नंबर है। तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपनी बात हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। तो मनोज जी, चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। श्रोताओं के फोन्स तो हमारे पास आ ही रहे हैं लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि श्रोताओं देखिएगा जिस तरह से इस वक्त महीना चल रहा है, जो मौसम चल रहा है वो बरसात का मौसम है और जब बरसात का मौसम होता है तो मनोज भाई क्या होता है?
0: बिल्कुल, देखिए कई बार तो ऐसा होता है इस बरसात के मौसम में कि बहुत जगह बारिश नहीं के बराबर होती है और अगर होगी तो इतनी होती है कि बस बाढ़ आने की तैयारी हो जाती है। अब हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि भाई कई बार, वैसे तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि बाढ़ कैसे किसे हैं लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं बाढ़ बता दूं, बाढ़ होती क्या है भाई, जोड़ने के अपने श्रोताओं को है ना।
1: वैसे सही कहा आपने, सभी श्रोता जानते हैं कि बाढ़ होती क्या है। तो खैर मनोज जी विस्तार से इस बारे में श्रोताओं आपको बताएंगे कि बाढ़ क्या होती है।
0: हाँ जी, तो देखिए नदियों का नालों के जल में असामान्य वृद्धि अगर हो जाए बारिश के कारण और इसके अलावा वो क्षेत्र जहां पे ये वृद्धि हो रही है जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो जाता है और ये अक्सर भारी वर्षा, बांध या तटबंध टूटने की वजह से होता है। इसके अलावा सुनामी हो गई, ऊंचे ज्वार हो गए, तूफानी लहरें हो गई, इनके द्वारा भी ये होता है। तो ये हुई बाढ़ से मुतल्लिक बात। जोड़ेंगे आपको हम कि भाई बाढ़ से पहले क्या करना है, दौरान क्या करना है और इसके बाद में क्या सावधानियां हमें लेनी है या तो, क्या आपके पास तैयारी है? तो राजवीर लगातार कॉल मिल रही है।
1: मैं कॉल ले रहा हूँ।
0: बिल्कुल।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हाँ जी, हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: ग्राम दत्तपुर रामनंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा हूँ जी।
1: जी आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
2: आज साहब आकाशवाणी नजीबाबाद की सदाबहार टीम जोड़ी मनोज वर्मा जी और राजदीप सिंह का साहब स्वागत है। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग।
0: धन्यवाद आपका।
1: जी शुक्रिया। तो आचार्य जैसे कि
2: एवरग्रीन जोड़ी है आपकी।
0: जी बिल्कुल, और ये तो आपका प्रेम है कि भाई आप हम लोगों को या हमारे जितने भी साथी हैं उनको इस माफिक समझते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। जी राजवीर।
1: हाँ, तो आचार्य जी आज का हमारा विषय है बाढ़ से पूर्व और बाढ़ के बाद की तैयारियां। तो इसी विषय पर हम जानना चाहेंगे कि आपसे सबसे पहला सवाल तो यही हम करना चाहेंगे कि बाढ़ से पहले हमें क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए।
2: हाँ देखिए राजवीर जी, बाढ़ वैसे तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है
1: जी,
2: इसका सामना किसी को ना करना पड़े।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: फिर भी आती है तो तैयारी तो पूर्व से ही करनी चाहिए जी। जैसे अपने पास कोई नदी नाले हैं तो उनको साफ कर लेने चाहिए
1: जी।
2: और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ विशेषकर खास तैयारी रखनी चाहिए कि अगर बाढ़ आ जाए तो भाई हमें अपने खाने पीने का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम कि ऐसे सुरक्षित स्थान पर कर लें कि जहाँ पानी जाए ही ना।
1: जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाढ़ से पहले हमें, है ना।
2: राजवीर जी मैं आपको बताऊं, ये कई वर्ष पहले मैं जब कालागढ़ में एक ड्यूटी करता था उस समय
1: जी,
2: तो वहाँ बांध टूट गया था कालागढ़ का, तो उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई 2011-12।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
2: और वो मंजर था, हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत बुरा मंजर था।
0: अच्छा सत्यवीर जी, हम आपको एक बात बता दें, इस वक्त लाइन पर हैं, जो आपने कहा कि भाई ये बाढ़ आ गई थी, वो तट टूट गया था, बाढ़ आ गई थी, तो इसके बाढ़ के प्रकार भी होते हैं, तो इसको अचानक आने वाली बाढ़ बोला जाता है जो, क्योंकि वो बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी को अलर्ट किए हुए वो आ जाएगी, तो ये एक प्रकार में एक होता है बाढ़ का, जो जितने भी प्रकार होते हैं।
2: तो मनोज जी बहुत बुरा मंजर था, चूंकि अचानक ही आई, वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ आ जाएगी, और कई कई दिन तक लोग छतों पर खड़े रहे, राशन पानी भी वहाँ क्या होता, पशु भी उसमें बाढ़ में बह गए, सामान बह गया था जी, बहुत बुरा मंजर था साहब
1: जी। हाँ,
2: और बस तैयारी तो ये करनी पड़ती है अगर वो नदी नाले उस समय साफ होते, क्योंकि हम लोगों ने क्या ना जो वो रामगंगा नदी थी
1: जी,
2: उसमें हमने खेती कर ली, वो पानी को रास्ता नहीं मिला
1: जी। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि
2: आबादी क्षेत्र में घुस गया पानी उधर,
1: कहीं ना कहीं ये हमारी इंसानों की ही कमी।

0: से गुजर जाएगा। लेकिन अगर वही चीजें अगर बाधित हो जाए, वहां पर पानी रुक जाए, तो जहां पर कभी पानी ना आया हो आपने सोचा भी नहीं होगा, तो वो उस जगहों पर भी पानी आ जाता है, भर जाता है, और उसी की वजह से जो बाढ़ है वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है हमारे लोगों को देती है।
1: आ गई, चलो ये तो पूर्व की तैयारी होगी, भी नदी नाले साफ रखे, दवाई रखे, राशन रखे, लेकिन बाढ़ के बाद तो और बड़ी चेतावनी होती है, वहाँ भयंकर बीमारियां भी फैलती है साहब।
0: हाँ,
1: महामारी फैलती है।
0: जी बिल्कुल, ये बात बहुत सही आपने कही आचार्य जी, क्योंकि बाढ़ के बाद की जो स्थिति होती है वो बाढ़ आने जैसी स्थिति से भी ज्यादा खतरनाक होती है।
2: बिल्कुल।
0: हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इस विषय पर हम किसी अन्य श्रोता से अपने बात करेंगे, आपने हमें कॉल किया, अपने विचार हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार,
2: धन्यवाद एक बार फिर आपका।
0: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें?
3: बोल रहा हूँ मैं।
2: आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मुरादाबाद से।
2: शुभ नाम आप एक बार और बताइएगा।
3: आसिफ अली।
0: आसिफ अली जी। आसिफ अली, आसिफ अली जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
3: आप सर, एक शिकायत है आपसे।
0: शिकायत?
3: हाँ
0: जी, चलिए पहले आप अपनी शिकायत कीजिए, उसके बाद अगली बात हम करेंगे।
3: तो मेरी बात सुनो सर, हमारा हेलो फ्रेंड ने फोन लगता ना, हेलो नजर इसमें लग जाता
0: है। तो इसमें हमसे शिकायत कैसी?
2: हमने तो देखिए,
0: हाँ भाई, आपका नंबर लगा है, हमने आपका फोन उठाया, आपसे बात हो रही है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कार्यक्रम में आपका फोन नहीं लगा तो इसमें शिकायत हमसे तो नहीं होनी चाहिए आपको आसिफ जी। खैर चलिए, आपकी शिकायत जी आसिफ जी, अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो आज का हमारा विषय बताएंगे आप?
2: क्या विषय वो है?
3: बाढ़ से सम्मानित।
0: चलिए, बाढ़ से संबंधित हमारा आज का विषय है मनोज जी, वो बाढ़ से संबंधित कहना चाह रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो हमारा जो आपसे सवाल है, हमारा सवाल ये है कि बाय द वे, कहीं बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद, यानी कि जब बाढ़ का पानी उतर जाए तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे जी? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए
3: और अपने आप को बचाना चाहिए साहब
0: जी। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपनी ओर से बाढ़ संबंधित? हाँ जी, जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा आसिफ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया। और एक और श्रोता हमसे जुड़ा। हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता,
0: लगता है मनोज जी किसी कारण से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक और श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
2: हेलो जागरूक श्रोता।
4: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं आप?
4: अरे सर जी, आपकी मीठी मीठी आवाज सुन के मैंने फोन लगानी पड़ा आपकी।
2: ऐसा है क्या?
4: ऐसा ही है सर जी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कानपुर के पास से बात कर रहा हूँ, जिला है तरफ फरुखाबाद पड़ता है।
2: फरुखाबाद से आप सचिन बात कर रहे हैं?
4: सतीश
2: बात।
0: सतीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत आपका
0: हमारा कार्यक्रम तो आप सुन ही रहे होंगे
4: आज न्यूज ऑन एयर
0: जी। रेडियो पे सुन रहे हैं कि मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं आप?
4: मैं रेडियो पे सुन लेता हूँ। अच्छा, तो
0: तो सतीश जी, हमारा आज का जो विषय है, देखिएगा समय हमारे कार्यक्रम का कमी होता है, इसलिए जो मुद्दे की बात है उन्हीं पर बात की जाए। आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको मालूम है?
4: हाँ, वो बाढ़ के ऊपर है।
0: बाढ़ के ऊपर है, तो हमारा जो विषय है वो है बाढ़ से पहले और बाढ़ की तैयारियां। तो बाढ़ से पहले की क्या तैयारियां होनी चाहिए, अभी एक श्रोता ने हमसे बहुत विस्तार से इसमें बात की, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाढ़ जब आ जाए या जब बाढ़ का पानी उतर जाए उसके बाद हमें क्या किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
4: जी, बाढ़ आने पे, जैसे बाढ़ आ रहा है आती है तो उसका अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। तो खेती बाड़ी में जब बाढ़ आ जाएगी तो खेती बाड़ी में तो मतलब मेरा कहना जाए खेती बाड़ी में जो फसल
0: जी हमारा सवाल है आपसे, बाढ़ उतरने के बाद, बाढ़ का पानी उतरने के बाद हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है? खैर शुक्रिया कि आपने हमें इस कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनोज जी, हम मोटी मोटी बातें दो चार अपने श्रोताओं को बता दें कि चलिए बाढ़ के बाद हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बाढ़ से पहले की बात करें, चलिए पहले ही हम बता देते हैं, सबसे पहले हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है कि बाढ़ आने की संभावना है

0: या बाढ़ आ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बहुत ही ज़रूरी सामानों की एक जो है ना आपको किट तैयार करनी है, जिसके अंदर क्या हो, एक टॉर्च होनी चाहिए, कुछ दवाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए साफ पीने का, और कुछ भोजन, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फूड आप उसके अंदर रख सकते हैं, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति में 2-4 दिन 5 दिन कहीं ना कहीं किस तरह से आप उनके द्वारा गुजार सकें। तो कुछ इस तरह से काम की सामानों की आपको व्यवस्था करनी चाहिए, और एक वाटरप्रूफ बैग आपको हर समय, जो कि बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं उन लोगों को चाहिए कि 1 या 2 या 3 वाटरप्रूफ बैग आप अपने पास रखें। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें वो ज़रूरत का सामान रख करके आप पहले से उसको सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि बुरे वक्त में या बाढ़ के समय में वो काम आ सके। इसके अलावा दूसरी किन बात का विशेष ध्यान होना चाहिए मनोज जी?
1: देखिए, उसमें ये होना चाहिए कि अपने इलाके में जिस वक्त बाढ़ आने की संभावना हो या अलर्ट हो, प्रशासन का अलर्ट हो सकता है उसके अंदर, है ना, सरकारी अलर्ट भी होते हैं, है ना, तो एक तो उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं, और जब वो लगे कि भाई बाढ़ आने की संभावना है और अलर्ट किया जा रहा है, तो अपने इलाके में, जिस भी इलाके में आप हो, उसको आप सुरक्षित स्थान पे आप पहुंच जाएं, और कोशिश करें कि अगर आप बिल्डिंग वाले हैं तो आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएं, या आपके 2 मंजिले 3 मंजिले हैं तो मतलब वहां तक आप पहुंचने की कोशिश करें जहां तक वो पानी ना
0: हो, या कुछ ऐसी जगह आपके आसपास है, कोई ऊंचा टापू है तो वहां पर भी आप सुरक्षित अगर महसूस कर रहे हैं तो वहां पर भी उन सामानों के साथ जा सकते हैं। लेकिन मनोज जी, कोई श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता,
2: हेलो
0: जी, जी कौन बात कर रहे हैं?
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: हाँ हाँ सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
2: जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप बाढ़ के बारे में बता रहे हैं कैसे सावधानियाँ रखनी चाहिए।
0: जी हाँ,
2: तो मैं बताना चाहूंगा अपने हिसाब से।
0: हाँ, लेकिन आपसे हमारा सवाल बाढ़ के बाद की तैयारी का है, अगर बाढ़ का पानी आकर के चला जाए, बाढ़ उतर जाए, उस समय में क्या सावधानियां रखने की जरूरत है?
2: जी जैसे कि उस समय पे क्या होता है कि पानी हर जगह जाने की वजह से ऐसे मतलब जहरीले जीव जंतु होते हैं ना, जो झाड़ियों में फंस जाते हैं
0: जी,
2: या ऐसे मतलब वो फिर जगह करके घरों तक घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको मतलब इस तरह ध्यान रखा जाए, अपने घर के आसपास जो झाड़ियाँ हो उनको साफ सफाई कर दी जाए, या इस तरह से कोई जीव जंतु जो जहरीले होते हैं या ऐसे काफी जो होते हैं जो जीव पानी में रहते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, तो वो बाढ़ की स्थिति में बाहर आने की वजह से फिर हमारे घरों की तरफ आते तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाके छोड़े और अपने आप को सुरक्षित रखें।
0: जी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा, कई बार क्या होता है कि जब बाढ़ का पानी भर जाता है आकर के घर या गाँव में, तो जो हमारा जो पीने का पानी का जो लेबल है, जो जमीन से निकल के जो नलों के द्वारा हमारे पास पानी आ रहा है जिसको हम पीते हैं, उस पानी में भी वो बाढ़ का जो पानी है वो मिक्स हो जाता है, तो वो जो पानी है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और उससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। तो हमें चाहिए ये कि चाहे आप अपने घर के नल से पानी भर रहे हैं, चाहे आपका समर्सिबल पंप है उससे पानी भर रहे हैं, तो उस पानी को बाहर निकालने के बाद उसको गर्म कर लें, उबाल लें, और जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उस पानी को पिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया उस वक्त आ जाते हैं।
1: बिल्कुल
2: जी, बिल्कुल सही है, ऐसा भी होता है, और पानी को जो प्रिजर्व करके रखते हैं ना घर में, वो भी पानी दूषित हो जाता है, तो उनको भी साफ करके पिया जाए।
1: बिल्कुल, और एक बात और इसी में जोड़ना चाह रहे थे हम कि अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सरकार या प्रशासन बताता है कि आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे आप रह सकते हैं, जब वापस आप अपने घर आए तो भाई जो बिजली के जो होते हैं ना स्विच, तो कोशिश करें कि उनको आप छुए ना, और छुए तो पहले जांच कर लें कि भाई कहीं करंट तो नहीं हो रहा, और बिना मतलब जो है ना सिक्योरिटी लिए हुए बिल्कुल आपको बिल्कुल जितना भी आप अलर्ट पे रहेंगे, कहीं ना कहीं अगर कोई स्विच गीला हो गया या कोई तार बिल्कुल नंगी अवस्था में है तो कहीं ना कहीं उसमें करंट आने की
0: संभावना होती
1: है। मनोज
0: जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर पानी आ जाता है बाढ़ का इस तरह से, तो अपने घर का जो मेन स्विच है सबसे पहले आप उसको बंद ही कर दें।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, मेन स्विच को बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेन स्विच को बंद करना। अगर आप मेन स्विच को बंद कर देते हैं तो आगे की जो बिजली है वो कट जाती है, और जो बिजली के आपके उपकरण है, इन्वर्टर है, बैटरा है, या घर के अंदर कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह जो भी सामान आपके ऐसे हैं जो पानी से खराब होने की जिनकी संभावना है, उनको वहां से हटा करके थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर आप रख दें, ताकि वो भी सुरक्षित रहे। कोई श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता,
3: हेलो
1: जी, कौन सा बात कर रहे हैं?
0: सबसे पहले तो आप जो भी हैं अपनी

0: रेडियो से थोड़ा दूर हो जाएं, उसके बाद आप बात करेंगे तो थोड़ी क्वालिटी अच्छी रहेगी। या तो इसको आप बंद कर दीजिए या फिर थोड़ा सा रेडियो से दूर हो जाइए। कौन बात कर रहे हैं? हेलो जागरूक श्रोता।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हाँ जी बिल्कुल, कौन साहब बात
1: हेलो।
2: कर, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: अच्छा, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: अजी पहले तो मेरे दोनों महारथियों को, राजवीर और मनोज वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए साहब, एक बार
1: बहुत ही हिट प्रोग्राम जा रहा है।
2: चलिए, शुक्रिया
0: थैंक
2: शुक्रिया।
0: यू
2: आपकी
0: थैंक यू।
2: आवाज तो, आपकी आवाज तो समझ में आ गई हमें।
0: लेकिन आप अपना परिचय स्वयं से दें तो जरा ज्यादा अच्छा
2: जी।
0: लगेगा।
2: बिल्कुल
1: मैं दे रहा हूँ,
2: हाँ
1: मैं
2: जी।
1: ग्राम का दरोना। देखिए उस चैलेंज मेरे गांव का सही नहीं दिया जाता।
0: हाँ
1: मैं बता दूं कि मेरा नाम, गांव का नाम है गाधा रोना।
0: गाधा रोना।
2: बिल्कुल
0: हाँ,
1: हाँ जी,
0: कभी
1: गाधा रोना।
0: गाधा रोना।
2: हाँ, तो हम तो
1: तो
2: हमेशा ये नाम लेते हैं,
1: मैं
2: गदवर्मा।
1: मेरे गांव का नाम सही उच्चारण क्या करें।
2: हाँ, हम तो
0: हाँ
2: सही नाम लेते हैं आपका।
0: चलिए, गाधा रोना,
1: जी
0: आपसे
1: अब
0: हमें ध्यान रहेगा।
1: विषय पर आ जाएं।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल विषय पर आ जाएं। अब जो है हमें जो है बाढ़ की स्थिति से जो है सबसे पहले तो जो है हमें पानी से पहले की स्थिति, क्योंकि
0: जी।
1: कुछ क्षेत्रों में तो पता लगता है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन
2: हाँ जी।
1: कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ जाती है। तो हमें जो है प्रशासन जो हमें निर्देश दे रहा है, बता रहा है कि भाई बाढ़ आने वाली है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें जो है बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जब बाढ़ की चेतावनी आए कि कुछ जो है अपना सामान जो है वो घर का सामान जो है वो अपने टांड पर रख दें, आवश्यक वस्तुएं और
0: जी
1: अपनी दवाइयां जो है और जो है जैसे टॉर्च हुई, दवाइयां हुई और एक छड़ी रखनी जरूर चाहिए। तो
2: बिल्कुल।
1: वो सामान रखकर हमें तैयार रहना चाहिए। तो
0: जी,
2: तो गिरी
1: सामने आई
2: साहब,
1: बाढ़।
2: हेलो।
1: हेलो।
2: हाँ जी गिरी साहब, बहुत अच्छी
1: हाँ
2: जानकारी
1: जी
2: आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या कहना चाहते हैं कि अगर इस
1: बस यही
2: कंडीशन
1: कि जब
2: में?
1: बाढ़ आ जाए तो स्थिति ऐसी होती है, भयंकर होती है, तो
2: जी
1: बाढ़ में अनावश्यक रूप से न जाएं
2: बिल्कुल, और
1: और
2: कोशिश
1: अगर
2: करें कि
1: जाएं तो
2: भाई,
1: छड़ी लेकर जाएं।
2: हाँ जी, और कोशिश करें, आपको निकलना ही पड़ता है तो भाई देखिए, बिल्कुल छड़ी लेके जाएं, एक डंडा लेके जाएं
1: छड़ी
2: आपको,
1: लेकर जाएं
2: ताकि
1: और
2: पानी
1: जो
0: का
1: है
0: स्तर पता चलता रहे
2: बिल्कुल।
1: एक
2: और एक तो कोशिश करें ही
0: जी
2: ना, और कोशिश करें कि भाई ऊंची जगह पे आप स्थान ले लें अपने घर के अंदर या कि जिस भी जगह आप हैं, और सुरक्षित
1: जी
2: रहें, है ना। इसके अलावा
1: हाँ
2: भी
1: जी हाँ
2: पानी में चलने की कोशिश ही ना करें, है ना। वाहन हो
1: ना
2: गए,
1: जी, जाना ही ना चाहिए।
2: है ना, वाहन हो गए, वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उनका भी हमें इस्तेमाल ऐसे मौसम में
1: जी जी
2: बिल्कुल
1: जी
2: नहीं करना चाहिए। और तैरने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कई बार तो
1: जी
2: ऐसे लोग
1: और
2: होते हैं
1: जो है
2: ना।
1: देखिए पानी
2: जी
1: में सर्प आ जाता है, बिच्छू आ जाते हैं, तो उनसे हमें बचाव रखना चाहिए,
2: हाँ
1: पानी में
2: जी,
1: नहीं
2: ये
1: जाना चाहिए।
2: सारी बातें हैं। और ये पानी से जो गंदा पानी होता है ना, बाढ़ का नाली भी मिलके आ जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ
1: जी
2: से
1: जी जी
2: पानी
1: जी
2: आता है,
1: हाँ जी
2: नदी
1: हाँ
2: नालों के पानी आते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा इन्फेक्शन होता है ना, जो हमारी जो चमड़ी का इन्फेक्शन, स्किन इस
1: जी जी
2: इन्फेक्शन, जो
1: जी
2: संक्रमण, वो बढ़ जाता है, वो है ना उसके
0: और
2: अंदर।
0: इसके अलावा बहुत तरह के संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है उस वक्त बढ़ जाता है मनोज जी।
1: हाँ जी
0: जी,
1: हाँ सही कह
0: तो
1: रहे हैं आप।
0: है ना, मैं बहुत कुछ विशेष ध्यान देने की उस वक्त जरूरत है, जब बाढ़ का पानी उतर जाए तो सबसे
1: जी
0: पहले
1: जी
0: आपको क्या करें कि जो चूना
1: जी
0: होता है, आप उस चूने का पाउडर जो है अपने घर आसपास, उसको जो है ना, सभी लोग अगर
1: हाँ जी
0: चूना
1: चूना
0: वो
1: करते
0: बखेर
1: हैं।
0: देते हैं तो काफी जो बैक्टीरिया है वो उससे मर भी जाते हैं। तो इन बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान जो है इसमें रखना होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने इस कार्यक्रम में हमें कॉल किया, और एक और श्रोता हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता।
0: लगता है मनोज जी इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।
2: बिल्कुल
0: फिर से एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जागरूक श्रोता।
3: हेलो जागरूक श्रोता
0: जी
3: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम ध्यानपुरा साबिर अली बात।
0: साबिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
2: साबिर
0: कार्यक्रम।
2: अली।
3: जी साबिर अली जी,
0: साबिर अली जी, कैसे हैं आप?
3: देखो मनोज भाई एकदम बता दिया।
0: जी हाँ बिल्कुल, कैसे हैं आप?
3: हाँ तो आप बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: जी हाँ, बहुत बढ़िया है। हमारा विषय आज का कि बाढ़ से पूर्व और बाढ़ के बाद हमें किन बातों का
3: हाँ
0: विशेष
3: वो
0: ध्यान
3: जो
0: रखना होता है।
3: मनोज जी हो स्टूडियो में पता ना चले तो हो ही नहीं सकता।
0: जी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे?
3: पहली बात तो हम तो रामगंगा के आसपास के रहने में रहते हैं, पहली बात
0: हाँ
3: है सूखा पड़ गया है,
2: जी।
3: बारिश नहीं हो रही,
2: अच्छा,
0: लेकिन
3: और
0: 2011 में इस रामगंगा में ही बहुत पानी आया था और बहुत जबरदस्त बाढ़ का सामना वहां के लोगों को करना पड़ा था।
3: हाँ

0: हमने भी किया था 10 में।
1: ना, 10 में। तो हम चाहते हैं कि उस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिपीट ना हो, लेकिन ये देखिए कुदरत का कहर है, कब कहाँ पर बरस जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें
0: हाँ
1: पहले से इन सब चीज़ों के लिए सतर्क होकर के चलना होता है। तो आप तो झेल चुके हैं इस दंश को भी, और आपके आसपास का जो एरिया है वो बाढ़ ग्रसित एरिया है, वहाँ जहाँ बाढ़ संभावित एरिया है, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें
0: हाँ
1: ऐसी भी
0: यहाँ
1: होंगी जिनके बारे में
0: यहाँ के
1: आपको,
0: लोगों को तो अनुभव भी बहुत है बाढ़
1: हाँ इसीलिए हम,
0: का, बाढ़ की वजह से झेलते हैं। और ये बाढ़ की जो बात होती है इसमें जरा दिक्कत आती है, एक तो पानी खराब हो जाता है, पानी
1: जी हाँ, क्या करना चाहिए उसको खराब
0: का
1: पानी के लिए?
0: खराब पानी के लिए अच्छा पानी देखें, उसको खोल के पीना चाहिए,
1: अच्छा, उबाल के पीना चाहिए।
0: उबाल
1: जी मतलब
0: के।
1: जैसे कि भी आपने बताया कि एक तो पानी खराब हो जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो खराब होती है, तो पहले उन पे बिंदुवार एक बार आप प्रकाश डालिएगा, क्या क्या स्थितियां बनती है, पानी खराब हो जाता है।
0: हाँ पानी खराब हो जाता है, कुछ बीमारियां भी ऐसी आ जाती हैं, कुछ ये चीजें सड़ी बड़ी भी आ जाती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। दवाई
1: जी
0: का हिसाब रखना चाहिए, मोटी
1: हाँ जी, क्योंकि जब
0: बहुत चीजें
1: पानी
0: ऐसी
1: में बह
0: हमारी
1: करके बहुत सारी चीज़ें, कुछ छोटे मोटे जीव जंतु की डेड बॉडीज
0: जीवाणु
1: आती
0: जैसा।
1: हैं, है ना, इसके
0: हाँ
1: अलावा भी कुछ सड़ी गली जो चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं, तो उससे क्या है कि आसपास बहुत सारी गंद फैल जाती है, और वो गंद
0: हाँ
1: फैलती है तो
0: उसके
1: उसी में
0: बाद का
1: बहुत
0: जो
1: सारे
0: कचरा
1: बैक्टीरिया पैदा होते
0: होता
1: हैं।
0: है, जरा थोड़ी सी जानकारी आप भी लें इस बारे में।
1: जी तो वही हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी होंगी, क्योंकि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां पर बाढ़ आती जाती रहती है।
0: हाँ,
1: तो कुछ और
0: तो सर तो हम
1: क्या?
0: तो सावधानी यही
1: हाँ
0: यही बरतते हैं कि देखो इसमें बीमारी का फैले खतरा रहता है, उससे बचाव करते हैं।
1: जी, और देखिएगा
0: देखो
1: जब
0: जो हमारी
1: बाढ़ बाढ़ आती है तो बहुत सारी जान माल की हानि भी होती है, तो हमें क्या चाहिए कि देखिएगा बाढ़ से पहले आप अपने घर, अपनी फसल, अपने सामान की कुछ फोटोज़ वगैरह, कुछ वीडियोस बना करके अपने पास सुरक्षित रख लें, और बाढ़ के जाने के बाद अगर आपका कुछ लॉस हुआ है उसमें तो उसकी भी फोटोज़ खींच करके आप अपने रख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी तरह से कोई शासनिक प्रशासन की ओर से कुछ इस तरह के एड मिलने की संभावना रहती है कि जो आपका नुकसान हुआ है, तो वो प्रूफ्स आपके पास हों कि जी
0: करने
1: हमारा ये नुकसान हुआ है, ताकि उसका क्लेम किसी तरह से
0: आपको
1: कुछ
0: मिल
1: आपको
0: सके।
1: मिल सके, तो इस बात का भी
0: राजेंद्र भाई ये
1: विशेष।
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई हमको, तो
1: जी
0: आप आगे को ये भी करे करेंगे, मगर
1: हाँ
0: आप मेरा हमारा नाम उसमें शामिल नहीं रहते, शिकायत है आपसे शीट आपके नाम में।
1: साबिर साहब, अगर किसी का मैसेज, किसी का खत हमारे पास आए तो हम निश्चित तौर पे उसको शामिल करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पत्र, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते जाते रहते हैं, तो कहीं नज़र ना पड़े तो उसके लिए हम मुआफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगर नज़र पड़े और आपका नाम शामिल ना हो ऐसा असंभव नहीं है।
0: चलो एक शेर और सुनाता हूँ मैं चलते चलते। क्या
1: जी
0: हुस्न है क्या जवानी है, फिर राह बना लेगा चलता हुआ पानी।
1: जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर शेर आपका है, तो पानी है इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने रास्ता खुद बना लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका, साबिर अली साहब।
0: धन्यवाद।
1: हेलो जागरूक श्रोता
0: हेलो
1: जी, हेलो जागरूक श्रोता, कौन बात कर रहे हैं?
0: जागरूक श्रोता, हेलो।
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं,
0: नगीना से अनिल विनोचा बात कर रहा हूँ।
1: क्या हाल है मिनूषा जी आपके?
0: बहुत चंगे हैं जी, आपसे फोन मिल गया। पहले
1: भाई मेहनत करेंगे
0: से
1: जी, देखिएगा जो
0: बहुत
1: लोग दिल
0: चंगे
1: से
0: हो
1: हमारे
0: गए।
1: साथ
0: आप
1: जुड़े हैं
0: कैसे हैं? आप दोनों को पहले तो सादर नमस्कार।
1: जी,
0: आपको भी नमस्कार
1: नमस्कार
0: हमारा। और मैं समझता हूं कि विषय तो आपको बिल्कुल,
1: क्लियर होगा।
0: हाँ कि आज का क्या विषय लिया हुआ है हमने।
1: देखिएगा अनिल जी, विनोचा जी हमारे ऐसे श्रोता हैं जो लगातार आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े रहते हैं और सभी कार्यक्रमों में लगभग लगभग शिरकत भी करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो विनोचा साहब आपसे हमारा विषय तो आपको मालूम ही होगा कि बाढ़ से
0: अभी
1: पूर्व और बाद की
0: विनोद जी तो
1: तैयारियां
0: ऐसे
1: हैं
0: ही बता रहे
1: जी।
0: हैं, सूरज के साथ साथ से ही बता रहे
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: हैं।
1: मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब आप जी
0: लगातार।
1: तो क्या कहना चाहेंगे इस
0: सुन
1: विषय पर,
0: रहा
1: आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना
0: मैं ये
1: चाहेंगे?
0: कहूंगा, जैसे बाढ़ आने से पहले जब हमें सूचना मिलती है
1: जी
0: तो उससे पहले ही हमें एक ऊंचे स्थान का जो है चुनाव कर
1: कर
0: लेना
1: लेना
0: चाहिए,
1: चाहिए
0: उसमें
1: जी।
0: पानी है, खाने के बिस्कुट हैं, और जरूरी जो घर के दस्तावेज है, मतलब ऑल टाइप ऑफ
1: जी,
0: डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें बहुत संभाल करके उस पर वहां चले जाना चाहिए।
1: जी हाँ
0: घर की लाइटें हैं, गैस है, ये चीजें हमें बंद कर दी।

0: जी बिल्कुल
1: और जैसे वो बात मतलब जैसे अचानक हम गिर जाते हैं, उस समय भी हमें घर की जो छत है ऊंची उस पर चले जाना चाहिए और नीचे जो है लाइट वगैरह बंद कर देनी चाहिए।
0: चाहते का सबसे पहला काम है कि आप घर का जो मेन स्विच है लाइट का, उसको आप बिल्कुल
1: लाइट
0: बंद कर
1: स्विच जो
0: दें।
1: है वो बहुत मस्ट है, इसमें बंद करना भी और पानी से बचाव जैसे ऊंचा स्थान इसमें चुनना जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: दवाइयां हैं वो भी हमें पहले से लेके रख लेनी चाहिए या जैसे भी जो चीजें हैं वो करना चाहिए।
0: बिल्कुल, जो इमरजेंसी किट हम बोलेंगे उसके लिए, कि भोजन हो गया, साफ पानी हो गया, जरूरी दवाएं हो गए, नगद रुपया हो गया, दस्तावेज हो गए, ये जो जितनी भी हमारी सारी
1: बहुत
0: चीजें हैं इनको हम एक वाटर प्रूफ बैग में रख सकते हैं, है ना, और कोशिश करें कि हम ऊंचे स्थान पे चले जाएं। इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं मिनोचा साहब क्या?
1: आज जैसे पानी उतर जाता मतलब बीच में जो है पानी के बीच में ना जाएं कभी भी, जैसे कभी सोचते हैं हमारा घोड़े तक पानी है हम चले जाते हैं उसमें हम बह सकते हैं, इवन
0: बिल्कुल,
1: आपकी कार भी आपका टू व्हीलर भी जो है ये बह सकते हैं
0: हाँ जी मेरे साहब, ये बिल्कुल
1: तो।
0: आप उस पे बात कर रहे हैं कि बाढ़ के दौरान, यानी कि बाढ़ आई हुई है, पानी इकट्ठा है,
1: हाँ
0: उस
1: जैसे
0: दौरान
1: शहरों
0: क्या
1: में भी
0: हमें नहीं
1: होता है,
0: करना
1: जैसे
0: चाहिए, उस पे आप हमसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे कुछ
1: शहर
0: और
1: में
0: कहना
1: जो
0: चाहते हैं?
1: है
0: जी
1: पानी छोड़ा जाता है ना जब ज्यादा डैम में नदियों में बांधों में हो तो शहर में भी आ जाता है
0: जी
1: छोड़ा
0: जी
1: जाता है।
0: जी
1: और दूसरा जो है बाढ़ के बाद जैसे हैजा हो जाता है, इस तरह की कई बीमारियां हैं, बुखार है, डेंगू है,
0: जी
1: मच्छर है,
0: जी
1: तो इसके लिए कोई छिड़काव और कोई दवाई मतलब तुरंत जो है इसके लिए एक अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क में भी रहना चाहिए
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: रहते
0: देखिए, अगर
1: रहते।
0: ऐसी स्थिति बनती है जब पानी उतर जाता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एंटी लार्वा का एक छिड़काव वहाँ पर हो जाए, ताकि जो भी जो लार्वा पानी में है, जो पनपने वाले हैं, जो पनप रहे हैं, वो रुक जाएं, ताकि आगे बीमारियां ना फैल सकें। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अनिल विनोचा जी, कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपने अमूल्य विचार हमारे तमाम श्रोताओं के साथ में साझा किए। और समय भी अब कार्यक्रम का बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, तो एक और कॉल यहाँ पर हम ले सकते हैं। चलिए ले लीजिएगा। जी हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो नमस्कार,
0: जी
2: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: क्या बात,
2: शिमला
0: आप हमें सुन रहे हैं शिमला में?
2: जी।
0: कैसे सुन रहे हैं आप?
2: ये तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के
0: मोबाइल
2: माध्यम
0: ऐप
2: से
0: के
1: जो
0: माध्यम
1: है,
0: से आप सुन
1: तो
0: रहे हैं
1: अभी
0: कार्यक्रम को।
1: हमारा विषय है कि भाई बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की क्या तैयारियां हैं, वो हम बात कर ही चुके हैं और लगभग 1.5 मिनट हमारे पास बाकी है, तो संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये बाढ़ से पहले बाढ़ से बाद हमें तैयारी इसलिए करनी चाहिए कि हमें सुरक्षित स्थानों पे जाना चाहिए और जैसे कि बाढ़ का स्थिति आती तो हमें सुरक्षित अगर अगर मौसम जो है चेतावनी देता तो हमें पहले से जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए और सुरक्षित स्थान पे जो हमें जाना चाहिए पहले से। जी
0: बिल्कुल, यानी कि भाई देखिए, इमरजेंसी किट भी आपके पास होनी चाहिए, ऊंचे स्थान की पहचान भी आप करें, चेतावनी पर नजर रखें, जो रेडियो, टीवी, मोबाइल पे और मौसम के पूर्वानुमान हैं, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी आप करना चाहिए, और आपातकालीन
1: जी
0: स्थिति में घर से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता और परिवार से संपर्क प्लान भी तैयार करना चाहिए। इसके बाद
1: जी
0: भाई देखिए, कोई भी जल्दबाजी ना करें अगर आप बाढ़ के बाद की पोजीशन पे हैं तो। और बिजली जो होती है घर के अंदर, हमारे गैस होती है जिस पर हम खाना बनाते हैं, उसकी अच्छी तरीके से जांच करें, साफ पानी और भोजन का इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन के बचाव के
1: जी
0: लिए आप पूरा काम कर सकते हैं, और ठहरे हुए पानी से दूर रहें। इसके अलावा भाई देखिए, कीटनाशक से अपने घरों की दीवारों को और फर्श को आप जरूर धोएं, ताकि इसका यानी बाढ़ का कोई प्रभाव ना पड़े। और ये हमारी आपसे कॉल सिर्फ और सिर्फ अंतिम थी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी जागरूक श्रोता संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा और मेरे साथ ही राजवीर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: और धन्यवाद राजवीर।
0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर। इस समय पूर्वाहन के 11 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

दिल का रिश्ता, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ अलका याग्निक की थी, समीर का लिखा यह गीत और धुन नदीम शर्वण की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं मैं राजवीर। बंटी और बबली, इस फिल्म में आइए अब सुनते हैं अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद को। गीत गुलजार का है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: बंटी और बबली, इस फिल्म में भी आपने सुना अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद को। गुलजार का लिखा एक गीत था और धुन शंकर एहसान लोय की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो

0: घंटी और बबली। इस फिल्म में भी आपने सुना अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद को। गुलजार का लिखा एक गीत था और धुन शंकर एहसान लॉय की।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि मारूफ शायर महेंद्र अश्क के जन्म दिवस पर विशेष रूपक कितने हसास थे अश्क, आप सुनेंगे आज शाम 7:32 पर। लेखक हैं अमन कुमार त्यागी, प्रस्तुति एवं परिकल्पना होगी शोभित शर्मा की, प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल और धीरेन्द्र धारीवाल का रहेगा, सूत्रधार होंगे सचिन शर्मा और श्वेता भट्ट और प्रतिभागी कलाकार होंगे

सुनिधि चौहान और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म धूम में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। श्रोताओं, हम आपको एक बात और याद दिला दें कि आज दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कृषि निर्यात लाइव चौपाल, और ये चौपाल आज होगी तहसील और ब्लॉक मेरठ के गांव फफूंदा में, जहां पर इस लाइव चौपाल का संचालन करेंगे सुवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह। समय याद रखिएगा, दिन में 1:15 से 1:55 के बीच। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म नो एंट्री से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की, समीर का गीत है और धुन अनु मलिक की है।

फिल्म नो एंट्री में भी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलीशा चिनॉय को। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया अनु मलिक ने। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि कृषि निर्यात लाइव चौपाल आज आप सुनेंगे दिन में 1:15 पर, और इसके अंतर्गत आज हम आपको लिए चलेंगे ब्लॉक और तहसील मेरठ की ग्राम पंचायत फफूंदा में। इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल का जो है संचालन करेंगे हमारे कृषि जगत के प्रस्तोता सुरेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और जितेंद्र कुमार। इसी के साथ हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे महेंद्र अश्क के जन्मदिवस पर आधारित रूपक, जिसका नाम होगा कितने हसास थे अश्क। लेखक अमन कुमार त्यागी, प्रस्तुति एवं परिकल्पना होगी शोभित शर्मा की, प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल और धीरेन्द्र धारीवाल का रहेगा, सूत्रधार होंगे सचिन शर्मा और श्वेता भट्ट, प्रतिभागी कलाकार होंगे लोकेंद्र विश्वकर्मा, प्रमोद सिंह, अंजना टॉक, नंदिनी माहेश्वरी, यशोधर डबराल और जितेंद्र कुमार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू

0: ही नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800-440-5599 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
3: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा हो।

0: करने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
1: हैं? वो कैसे?
0: अरे भाई मैं समझाता, आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
1: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
1: ये तो है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
1: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे, उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर, संभल कर।
1: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे।
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है, नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या।
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगी क्या, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है।
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी,

0: बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ।

0: गुड़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ, ठीक है।
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: मन चेक कराइए।
1: लो जनाब देख लो जनाब, हो गया जनाब जाए।
0: हाँ ठीक है
1: ठीक है जी, खुदा।
0: अभी इधर आइए, आइए सामान
2: साहब। मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
2: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
2: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
2: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
2: जी?
4: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
2: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
2: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
2: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि आज दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कृषि निर्यात लाइव चौपाल, जो कि आज आयोजित की जाएगी ग्राम पंचायत फफूंदा में, ब्लॉक और तहसील मेरठ के अंतर्गत, जहां पर इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे कृषिगत के प्रस्तोता सुरेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और जितेंद्र कुमार। समय याद रखिएगा, दिन में 1:15 पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए एक और प्रायोजित कार्यक्रम, हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
2: जी हाँ दोस्तों, भारत में हजारों लड़कियां हर वर्ष गायब हो जाती हैं और उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। गरीबी के कारण कई लड़कियों को मंडी में सब्जी की तरह बेच दिया जाता है। इन लड़कियों की कहीं पूछ परख करने वाला नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 13 वर्षीय ख्वाहिश, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में होशियार, अपने माँ बाप की अकेली संतान जो अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहती है। एक दिन ख्वाहिश अपने माता पिता से एक मेले में जाने की जिद करती है, पर उसके माता पिता को अपने मालिकों से छुट्टी नहीं मिल पाती। बेटी को उदास देख उसकी माँ भी उदास होती है और ये बात अपने साथ काम करने वाली सुधा से बांटती है।
3: सुधा बहन, आज मन बहुत उदास है।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ख्वाहिश कितनी समझदार बच्ची है, और हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति को समझते हुए आज तक उसने कभी हमसे कोई जिद नहीं की, और आज जब पहली बार उसने मेले में जाने की बात की तो हम उसे ले जा नहीं सकते। बस यही सोचकर परेशान हूँ।
2: सुधा कुछ सोचती है और एकदम से बोल पड़ती है,
4: अरे कोई बात नहीं बहन, तुम नहीं तो उसकी सुधा मासी है ना, मैं उसे ले जाती हूँ।
3: अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे अगली बार ले जाएंगे।
4: अरे बहन कैसी बातें करती हो, मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है, मैं अभी छुट्टी लेकर निकल जाती हूँ और ख्वाहिश को स्कूल से ले लूंगी और वहीं से उसे मेले भी ले जाऊंगी।
2: ममता कुछ सोच

0: वाले झूले पर जाना है। मैंने उसे बहुत बहुत समझाया कि मुझे डर लगता है और मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, पर वो नहीं मानी। ममता बहन मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश का ख्याल नहीं रख सकती मैं।
1: बच्ची
0: बहन मुझे माफ कर दो।
2: ख्वाहिश के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन ख्वाहिश का कुछ पता ना चला। और दूसरी ओर उस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले ख्वाहिश का सामना वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी से होता है, जो उसके साथ क्रूरता पूर्वक दुष्कर्म करता है। इसके बाद ख्वाहिश को उस मंडी में भेज दिया जाता है जहाँ जिस्म का सौदा होता है। ख्वाहिश की वहां पर राधिका नामक लड़की और ज्योति नामक मैडम से मुलाकात होती है।

इसके बाद ख्वाहिश को उस मंडी में भेज दिया जाता है जहाँ जिस्म का सौदा होता है। ख्वाहिश की वहाँ पर राधिका नामक लड़की और ज्योति नामक मैडम से मुलाकात होती है।

0: उषा नामक एक सोशल वर्कर अक्सर इस धंधे में लगी लड़कियों से मिलने आती है। वह उन्हें प्यार, मिठाइयाँ और सहानुभूति देती है। धीरे धीरे ख्वाहिश और उषा का रिश्ता गहरा हो जाता है और ख्वाहिश रो रो कर उषा से अपनी सारी कहानी सुनाती है।
1: उषा दीदी, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, वापस अपने परिवार के पास। आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता के हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ।
2: ख्वाहिश बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकूं।
0: कुछ वक्त बीतने के बाद उषा ख्वाहिश को बताती है कि उसने ख्वाहिश का परिवार ढूंढ निकाला है। ख्वाहिश एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोठे पर काम करने वाला एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है।

एक दिन ख्वाहिश के पास रोहन नामक कस्टमर आता है, जो कि उषा का दोस्त था। रोहन एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और लड़कियों को छुड़ाता है। उन्हें सिर्फ एक गवाह की जरूरत होती है, जो उन व्यापारियों के खिलाफ अदालत में गवाही दे सके। लेकिन उन्हें एक भी गवाह नहीं मिलता। तब ख्वाहिश बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उन देह व्यापारियों के खिलाफ गवाही देती है, एक ऐसे हीरो की तरह जो डरपोकों की दुनिया में बहादुरी दिखाती है और बुराई पर अंत में विजय पाती है।

आयश अब अपने परिवार से मिली और उसने सब बताया कि कैसे सुधा ने उस शाम धोखे से उसे देह व्यापारियों के हाथ बेच दिया था। पुलिस ने ख्वाहिश का पूरा बयान दर्ज कर सुधा और उससे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और अब मानव अधिकारों का हनन करने के जुर्म में उन पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ख्वाहिश ने सब कुछ सहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जिंदगी के हर गम भुलाकर अपने जीवन का फिर से एक नया अध्याय वो लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने समाज और अपने ही गांव के लोगों ने उसका जीना उतना ही मुश्किल किया जितना कि पहले था। वो नजरें उठाती तो लोग उसे घूर रहे होते, कहीं से गुजरती तो अपनी ही कहानी लोगों की जुबानी सुनती। उसका अपना परिवार भी इन हालातों से जूझने लगा था, पर उसने अपनी नजरें लोगों की तरफ नहीं पर अपने ईश्वर की ओर लगाई। उसने हियाव बांधा और दृढ़ रही। वो लोगों की बातों से ना डरी और ना भयभीत हुई। वो जानती थी जो ईश्वर उन बुरे हालातों से उसे निकाल कर ला सकता है, वो इन हालातों में भी उसे ना छोड़ेगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस फिर क्या था, ख्वाहिश की लगन और मेहनत ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया।

और आज वो एक सामाजिक संगठन में अफसर है जो अपने जैसे हालातों से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करती है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। अब ना ही केवल उसका परिवार उस पर गर्व करता है

0: पर पूरे गांव ने उससे माफी मांगी और उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
1: दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है क्योंकि आजकल मानव ही मानव का व्यापार करने लगा है। क्या विडंबना है ना श्रोताओं, आज मानव ही

0: ही गांव के लोगों ने उसका जीना उतना ही मुश्किल किया जितना कि पहले था। वो नजरे उठाती तो लोग उसे घूर रहे होते, कहीं से गुजरती तो अपनी ही कहानी लोगों की जुबानी सुनती। उसका अपना परिवार भी इन हालातों से जूझने लगा था, पर उसने अपनी नजरें लोगों की तरफ नहीं पर अपने ईश्वर की ओर लगाई। उसने हियाव बांधा और दृढ़ रही। वो लोगों की बातों से ना डरी और ना भयभीत हुई। वो जानती थी जो ईश्वर उन बुरे हालातों से उसे निकाल कर ला सकता है, वो इन हालातों में भी उसे ना छोड़ेगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस फिर क्या था, ख्वाहिश की लगन और मेहनत ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज वो एक सामाजिक संगठन में अफसर है जो अपने जैसे हालातों से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करती है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। अब ना ही केवल उसका परिवार उस पर गर्व करता है, पर पूरे गांव ने उससे माफी मांगी और उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
1: दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है क्योंकि आजकल मानव ही मानव का व्यापार करने लगा है। क्या विडंबना है ना श्रोताओं, आज मानव ही।
0: चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को राम राम। मैं नीतू, अपनी सभी बहनों का थारे पसंदीदा कार्यक्रम, भाई कौन सा कार्यक्रम? घर संसार। बिल्कुल सही पहचाना, घर संसार में खूब स्वागत करूं। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताया दो, मेरी बहनें सब कैसी हैं? घर परिवार में सब राजी खुशी? भाई बहनों गर्मी भी हो रही और देखो भागा दौड़ी की जिंदगी हो गई आजकल तो। भाई पूरा दिन मेरी बहनें घर के बाहर के काम में ही जुटी रहे हैं, समय ना मिला है। भाई काम इतना हो जा, और ये सवेरे का काम तो बहुत ज्यादा हो जा, और अपने वास्ते टाइम ही ना मिला है। पर जब बात हो रेडियो में प्रसारित होने वाले बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम की, घर संसार की, तो भाई मेरी बहनें समय निकाल ही लेवे। अभी कार्यक्रम जो है अपने बहनों के लिए तो तैयार किया, तो मेरी बहनें सुनेंगी नहीं तो भाई कैसे होगा? और मेरी बहनें तो बहुत पसंद कर रहे हैं ना इस कार्यक्रम को। भाई कार्यक्रम सुनते हुए बहनों जानकारी भी मिला है, मनोरंजन भी हो गया, और सबसे बड़ी बात कोई काम ना है रुकता। भाई घर उसे रसोई घर में काम कर रहे तो रेडियो सुन लो, छत पे पापड़ तोड़ रहे तो सुन लो, कहीं भाड़े को जा रहे तो सुन लो, भाई सफर में सुन लो, हैं तो काम तो रुकता ही ना है, तो हो गया ना समय का सदुपयोग भी। बहनों समय की बात हो रही तो भाई समय तो बड़ा कीमती हो गया, इसको तो कतई बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। समय को देखते हुए सभी काम उचित प्रकार करने चाहिए। भाई एक कहावत सुनी मेरी बहनों ने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय से हर काम होना बहुत जरूरी हो गए, और वो तभी होगा जब हम समय की कीमत जानेंगे, जब हम जाग

रुकोगे तो मैं हर चीज की कीमत पता चलेगी, चाहे वो समय हो या वो हमारा जीवन ही हो। बहनों, हर चीज में संतुलन ना बहुत जरूरी हो बे। एक जीवन मिला है और यो जीवन सुचारू रूप से तो बहनों तभी चलेगा जब हम अपने जीवन को संतुलित बनाएं, खुशहाल बनाएं, स्वस्थ बनाएं। और स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान रखना होवे स्वस्थ आहार का, खाने पीने का। भाई जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। बहनों, अच्छा यानी पौष्टिक खाना खाएंगे तो स्वस्थ जीवन, संतुलित जीवन भी जी पावेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। और बहनों, संतुलित जीवन जीने के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त ना होवे बल्कि नियमित दिनचर्या, व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच सभी उतनी ही जरूरी होवे। स्वस्थ आहार और संतुलित जीवन एक स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की बहनों आधारशिला होवे। और भाई मेरी बहनें बहुत समझदार है और अभी हम अपनी बहनों से ढेर सारी बातें करेंगे। भाई आज का क्रम भी तो हो गया चिट्ठी थारे नाम की, तो मेरे हाथ में बहुत सारी चिट्ठियां भी हैं भाई, वो भी मैं पढ़ूंगी। पर पहले सुनेंगे ये जरूरी संदेश।

तो बहनों, संदेश के बाद चले हैं हम आज के क्रम की ओर। और आज का क्रम हो गया चिट्ठी थारे नाम की। अभी मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं और मेरी बहन इंतजार कर रही है पहले किसकी चिट्ठी आएगी मेरे हाथ में। तो चलो देर नहीं करते हुए अब मैं उठाऊं भाई। तो ये पहली चिट्ठी है, ये लिखी है गुड्डी, पिंकी, शशि, मृदुला, अमन ने, और ये आई है गांव दरियापुर नजीबाबाद से। और ये हमें नमस्ते बोले और बोलती हैं हमें घर संसार कार्यक्रम बहुत पसंद हो गए और आपके द्वारा दी गई जानकारी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हो गए। तो सबसे पहले तो गुड्डी, पिंकी, शशि, मृदुला और अमन भाई नमस्ते, और आपको हमारा कार्यक्रम पसंद है इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने चिट्ठी लिखी इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी भाई पसंद है, बहुत उपयोगी होती है हमारी बहनों के लिए। तो बिल्कुल हम कार्यक्रम में सब चीजें ऐसे ही देते हैं, सारी जानकारी सब की हमारी बहनों के लिए वो उपयोगी ही होवे। आगे ये लिखे हैं थारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा आप हमारी बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारी देवे और उस बचाव और इलाज भी बतावे। ये लिखे हैं गांव में इनके आसपास भी कितनी महिलाएं अपनी समस्या घर में बताने से शर्माती हैं, हिचकती हैं, पर जब हम कार्यक्रम द्वारा जो कार्यक्रम में हम डॉक्टर बुलाते हैं वो इन्हें समझाती हैं थारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो उसका असर इन बहनों पर, महिलाओं पे होता है और वो अपना इलाज करवाती हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने कहा कि जो हम कार्यक्रम में हमारी डॉक्टर जानकारी देवे और हमारी बहनों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं उसका असर बहनों पर होता है। ये बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होता है स्वास्थ्य। हर किसी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखना होवे, और हमारी जो बहनें होती हैं वो घर के काम में और सब कुछ देखेंगी पर अपने स्वास्थ्य पर कतई ध्यान ना देवे। तो बहनों स्वास्थ्य पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तबीयत खराब हो जावे एक बार, अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, तो फिर आगे को और ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो अपनी कोई भी शारीरिक समस्या हो, कुछ भी परेशानी है, बीमारी है, उसको अपने घर में अपने बड़ों के आगे जरूर जिक्र करना चाहिए और डॉक्टर को समय से दिखाना चाहिए। और गुड्डी, पिंकी, शशि, मृदुला, अमन, आपने हमें चिट्ठी लिखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहना और हमें चिट्ठी लिखकर बताते रहना कि आपको कार्यक्रम कैसा लगता है।

अब चलिए मैं दूसरी चिट्ठी खोलती हूँ। तो ये दूसरी चिट्ठी आई है हमारे पास अजूपुरा जट थाना दी हीमपुर दीपा बिजनौर से, और इसे लिखने वाली बहनें हैं फरीना, बुलबुल, कुसुम, मीना और गजाला। ये हमें नमस्कार बोलती हैं और कहती हैं कि इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद है। तो फरीना, बुलबुल, कुसुम, मीना, गजाला, सबसे पहले आप सबको नमस्ते, नमस्कार, और आपने हमें चिट्ठी लिखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये लिखती है कि लघु नाटिका द्वारा जो आप समाज को मनोरंजन के साथ साथ जागरूक करने का भी काम कर रही हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया, और आप इसी प्रकार लघु नाटिका प्रसारित करते रहना। और आगे ये लिखती है कि घर में सभी लघु नाटिका को सुनना तो भूलते ही नहीं, और उसके अलावा इन्हें लोकगीत भी बहुत पसंद है। छोटी मोटी नोक झोंक, परंपराएं, प्यार, सभी कुछ लोकगीतों में देखने को मिले। तो फरीना, बुलबुल, कुसुम, मीना, गजाला, भाई जो लघु नाटिका हम देते हैं, बिल्कुल हमारी बहनें इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, और जो उद्देश्य है वो यही है कि मनोरंजन के साथ साथ जो हमारी बहनें हैं उनको हम समाज को सबको जागरूक भी करें, ताकि समाज में फैली हुई बुराई को मिट

बात कही है, बिल्कुल लोकगीतों की बात तो अलग ही है, निराली है। आप कितने भी गाने सुन लें टीवी में और आजकल फोन में, कुछ भी फिल्मों के सुन लें, पर जो लोकगीत की बात है वो कहीं देखने को ना ही मिला है। और हम अपनी बहनों को निराश ना आए करेंगे, तो सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

तो हमारी बहनें आनंद ले रही थी, सुन रही थी हेमंत देवी चौहान द्वारा प्रस्तुत लोकगीत रेल बैरन पिया को लिए जाए रे। सच में हमारी बहनों ने इसका बहुत आनंद लिया होगा भाई, हमें तो बहुत मजा आया। और बहनों अभी चिट्ठियां तो हमारे हाथ में बहुत सारी हैं, पर का करें, बखत जो है वो अनुमति नाए दे रिया, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि भाई अब जो बहुत सारी बातें हम अगले कार्यक्रम में करेंगे अपनी बहनों से। और बहनों हमें चिट्ठी लिख के बताना कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन 2467 63। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, 9457078288। भाई फोन सबके पास रहते हैं, ठीक है? तो हमारी बहनें हमें ना कम से कम अगर चिट्ठी भी ना लिख पाए तो संदेश था तो ये जरूर भेज दियो।

और हमारा ईमेल एड्रेस है akashvaninajibabad@gmail.com। और बहनों, इसी के साथ अपनी बहन नीतू को दो अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। श्रोताओं, आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस चमकते सितारे को जिसने पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि हर भारतीय के दिल में राष्ट्रवाद की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने भारत कुमार यानी मनोज कुमार की। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मनोज जी ने अपनी फिल्मों से देश प्रेम की एक ऐसी परिभाषा लिखी जो आज भी अमर है। और आज है उनका जन्मदिवस, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार पर। आइए उनके शानदार सफर की शुरुआत करते हैं उनके एक बेहद ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। श्रोताओं, साल 1965 में आई थी फिल्म शहीद, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का किरदार निभाया था। और इस फिल्म का ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देता है।

0: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 1:15 से किसान भाई सुनेंगे हमारा सजीव प्रसारण कृषि निर्यात लाइव चौपाल, जिसे आज हम प्रसारित कर रहे हैं जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत फसपुरा से। तो समय याद रखिएगा, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 1:15।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे,

0: वो अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से

अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय

क्या बात है प्रीत जहाँ की रीत सदा। श्रोताओं, वाकई इस गीत को सुनकर जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, मनोज कुमार जी की फिल्मों में सिर्फ गंभीर देशभक्ति ही नहीं थी, बल्कि मौसम का मिजाज और इंसानी जज्बात भी बखूबी नज़र आते थे। अब ज़रा सोचिए, बाहर झमाझम सावन बरस रहा हो, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही हों, दिल अपने साथी से मिलने के लिए मचल रहा हो, लेकिन तभी ऑफिस का कोई काम या फिर कोई ज़रूरी मजबूरी आ जाए, तब दिल से क्या आवाज़ निकलती है। साल 1974 में मनोज कुमार जी ने एक फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म में सावन की इसी बेबसी और खूबसूरती को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और लता जी की मखमली आवाज़ में परोया गया था। पर्दे पर थीं जीनत अमान और हमारे मनोज साहब। तो आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर को। वर्मा मलिक का लिखा ये गीत और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और अब कार्यक्रम के अंत में हम मनोज कुमार की देशभक्ति से थोड़ा अलग हटकर उनके उस रूप को याद कर रहे हैं जिसने जिंदगी और मोहब्बत को बेहद करीब से महसूस किया। साल 1972 में आई उनकी फिल्म शोर का ये गीत सिर्फ एक रोमांटिक ट्रैक नहीं है श्रोताओं, बल्कि जिंदगी का फलसफा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, संतोष आनंद के बोल और लता मंगेशकर और मुकेश जी की जादुई आवाज़।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है। कुछ क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।

0: करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
0: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय

0: एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: इससे कबल वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को कौम के फैसला को नावाज करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में नौजवानों के मफादात सबसे अहम हैं और कानून उनके मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ करने वालों को तेजी से और सख्त सजा देगा। दरी अस्ना मरकजी हुकूमत ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि मजाकरात के बगैर कोई हल नहीं निकलेगा।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक अपने रोजमर्रा के मामूलात पर अमल करें और जल्द अज जल्द अपना मामूल का वजन बहाल करें। एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने सोनम वांगचुक की मुसलसल अच्छी सेहत के लिए खुदा से दुआ की। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वुजरा जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना 22 रोजा अनशन खत्म किया। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए रियासत के कई अजला में तैयारियां तेजी से मुकम्मल की जा रही। हापुड़ में यात्रा के बाहिफाजत तकमील को यकीनी बनाने के लिए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिस एहलकार एक्टिव रहेंगे और कांवड़ के रास्ते बड़े चौराहों और भीड़ वाले हसास मकाम पर मुसलसल गश्त करते रहेंगे। वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों के मुतवक्के भीड़ के पेश नजर कैंट रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी, सफाई, मुसाफिर की सहूलियात और भीड़ के इंतजाम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। भदोही के जिला मजिस्ट्रेट कुमार ने बताया कि इंतजामिया ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली कावड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीन बनाने के लिए ड्यूटी लगा दी है। कांवड़ रूट्स लालगंज नगर टोल प्लाजा पर वाकई ढाबों, रेस्टोरेंट, रिफ्रेशमेंट शॉप पर खाने पीने की अशिया के मियार हिफ्जानियत का मुआयना करते हुए खाना और मशरूबात सिर्फ मुकर्रर कीमत पर फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक़िदा जनता दर्शन के दौरान तकरीबन 150 लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन को उनके मसाइल पर मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत और मसाइल को फौरी हल करें। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुनसिफाना और बरवक्त होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस अफसरान को जराइम और जमीनों पर कब्जे से मुतालिक शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। जिला इंचार्ज उत्तर प्रदेश के वजीर ज़रात सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या जिला अस्पताल और श्रीराम अस्पताल का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने सफाई, इलाज, मुआवजे के इंतजामात और मरीजों से बातचीत करते हुए सेहत की खिदमात का जायजा लिया। मुआयने के बाद वजीर ने योगी हुकूमत की सेहत खिदमात की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत रियासत में बुजुर्गों और बीमारों के बेहतर और मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई हसासियत के साथ काम कर रही है। बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब बढ़ रही है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी और बदायूं में गंगा भी खतरे के निशान पर पहुंच गई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी और मशरकी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: आप सुन रहे हैं।

0: आकाशवाणी मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कृषि निर्यात लाइव चौपाल। इसके अंतर्गत आज हम आपको लिए चलते हैं जनपद मेरठ की तहसील और ब्लॉक मेरठ की ग्राम पंचायत फफूंदा में, जहां पर आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम अधिशाषी अंकित सैनी के साथ मौजूद हैं हमारे कृषि जगत के प्रस्तोता सुवेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह और जितेंद्र कुमार, जो संचालन कर रहे हैं इस कृषि निर्यात लाइव चौपाल का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
1: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थापित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ।
3: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीद कर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: अब नहीं रहेगा कोई भी सवाल
3: जब किसान भाई सुनेंगे
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से
5: लाइव चौपाल।
6: किसान भाइयों नमस्कार। इस समय हम आप पहुंचे हैं कृषि निर्यात लाइव चौपाल के अंतर्गत जनपद मेरठ की ग्राम पंचायत फफूंदा में और आकाशवाणी टीम के साथ कार्यक्रम अधिकारी अंकित सैनी जी और मेरे साथ जितेंद्र कुमार और प्रमोद सिंह के साथ मैं सुरेंद्र सिंह आपको उनका स्वागत करता हूँ। और इस समय हम यहाँ पर आए हैं और मंदिर प्रांगण में चौपाल लगी हुई है और बहुत ही खुशनुमा माहौल है। क्यों प्रमोद भाई?
7: बिल्कुल, मेरी भी सभी हमारे सुनने वालों को राम राम। और देखो सुरेंद्र भैया, जैसे भी आपने बताया कि आज हम जनपद मेरठ की ग्राम पंचायत फफूंदा में यहाँ पर है और ये जो आज चौपाल लगी हुई है कृषि निर्यात लाइव चौपाल, ये एक ऐसी जगह पर लगी हुई है जो कि एक बहुत ही पुराना, लगभग 900 वर्ष पुराना ये मंदिर है, उसके प्रांगण में यहाँ पर ये चौपाल लगाई गई है। और इस चौपाल पर बहुत सारे हमारे किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं और देखिए बहुत सारे हमारे जो कृषि के अधिकारी हैं और बासमती चाहे हुए हैं वो सब उपस्थित हैं। तो चलो इस चौपाल की शुरुआत करते हैं।
6: बिल्कुल, देखिए चौपाल बिल्कुल सजी हुई है और यहाँ पर जो किसान भाई मौजूद है उनका भी स्वागत करने के लिए और जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उन सभी का स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं कार्यक्रम अधिकारी अंकित सैनी।
8: धन्यवाद सुरेंद्र जी। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि निर्यात लाइव चौपाल जो कि बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ एपीडा भारत सरकार कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से हम लोग ये आयोजन करते हैं इनका, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी जो कृषि उपज उनकी है उनको निर्यात कर सके, उनको विदेशों में भेज सके। उससे कई फायदे हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि किसानों की आय को बढ़ाना है और मोदी जी ना कहे कि सभी, लेकिन सभी कृषकों को भी लगता है कि भाई हमारी सबकी आय बढ़े जब बहुत दूसरों की भी आय बढ़ रही है, तो ये भी उसका एक तरीका है अपनी आय को बढ़ाने का। और इस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं भारत के विकास में भी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के जो भी जैसे ये वॉर चल रही है US और ईरान के बीच में, तो आजकल सुनने में आ रहा है कि क्रूड ऑयल इतने डॉलर पे हो गया या रुपया इतने डॉलर पे पहुंच गया, इतने रुपए का एक डॉलर हो गया। तो जब हम अपना कृषि उत्पाद बाहर भेजेंगे तो हमें डॉलर प्राप्त होगा जिससे कि हम दूसरी अन्य चीजें खरीद सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार से अपने उत्पाद को बाहर भेजें, आपके उत्पाद में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करें, मार्केट से रिलेटेड आपके जो भी कोई सवाल है उन सब बातों का जवाब देने के लिए ही एपीडा BEDF से हमारे साथ मौजूद है प्रमोद तोमर जी और सहायक कृषि विपणन अधिकारी मेरठ मंडल है श्री राहुल यादव जी और सहायक एग्रीकल्चर सीनियर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर VP सिंह जी और नाबार्ड मेरठ से DDM मेरठ भावना जैन जी हमारे साथ है, जो कि आप अक्सर लोग सुनते ही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य संस्था है फाइनेंस के तौर पे या अर्थव्यवस्था के तौर पे किसानों को सहायता देने के लिए। तो उससे भी जुड़ी हुई आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो आप भावना जी से पूछ सकते हैं। और साथ ही जो भी जैसे कि मैंने पॉइंट की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BEDF के पास एक ऐसी लैब अब शुरू हो गई है मेरठ में आपके जनपद में ही, कि आप जैसे हम सुनते हैं कि

0: हमारा जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक है, जैविक है, तो आप कर तो रहे हैं जैविक, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप दूसरे को तभी ये प्रमाणित दिखा सकते हैं कि मेरा जो उत्पाद है वो जैविक है, ऑर्गेनिक है, जब आपके पास किसी संस्था द्वारा प्रदत्त एक सर्टिफिकेट होगा, एक कागज होगा, तो वो भी आपको बीडीएफ के द्वारा ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो सब बताने के लिए ही ये पूरी टीम आज लोगों के बीच में है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी क्वेरी है वो डॉक्टर साहब के साथ, जो हमारे मार्केटिंग के एक्सपर्ट यहाँ पे लोग बैठे हैं, या नाबार्ड से हमारे साथ डीएम भावना जैन भी है, उनसे पूछे, बेझिझक आप लोगों को सारी सुविधाएं सारी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। जी सुरेंद्र जी,
1: धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत आपका।
2: और देखिए हम सब खेती करते हैं, चाहते हैं कि हमें उत्पादन अच्छा मिले, साथ ही उत्पादन के साथ साथ हमें लाभ भी अच्छा मिले, और लाभ तभी अच्छा मिल सकता है जब हम अच्छी मार्केटिंग करें, यानी कि जो हमारे उत्पाद है, जो भी हम अनाज फल सब्जियां उगा रहे हैं अपने खेत में, उनका अच्छा मूल्य हमें मिले। तो ये हमें किस तरीके से मिल सकता है, ये हो सकता है एफपीओ के माध्यम से, यानी कि हमें एकत्र होना होगा, इकट्ठा होना होगा, संगठित होना होगा, हमें संगठन तैयार करना होगा, और हम किस तरीके से एफपीओ में जा सकते हैं, कैसे ये तैयार कर सकते हैं, तो इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सुवेंद्र जी, आपने एकदम सही कहा है, और देखिए एफपीओ की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। साथ ही हम अपने सभी सुनने वालों को ये भी बता दें कि आज की चौपाल पर प्रथम पंक्ति पॉलीफ्लावर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से एक यहाँ पर एफपीओ बना हुआ है, जिसके सीईओ पवन भडाना जी भी इस चौपाल पर उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, और वो एक क्लस्टर में भी शामिल किए गए हैं, जो कि अपने उत्पाद को हम किस तरीके से यहाँ से बेच सकते हैं, बाहर उसका निर्यात कर सकते हैं, वो जानकारी होगी। और एफपीओ की जानकारी लेने के लिए अब हम चलते हैं प्रमोद तोमर जी के पास। डॉक्टर साहब
3: नमस्कार सभी किसान भाइयों, अपने देश में लगभग 10,000 एफपीओ को खड़ा करने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, उसमें तो काफी एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ एफपीओ रनिंग में है, लेकिन अभी वो सीमा तक नहीं पहुंचे कि उनको लोग पहचान बना सकते। आप सब जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, था है और रहेगा, और हमारा 2047 का सपना है कि पूरी दुनिया को भारत के कृषि उत्पाद हम एक बास्केट टोकरी बनाकर भारत को सारे कृषि उत्पाद अलग अलग कंट्री में हम भेज सकते। आप सब जानते हैं हमारे पास मसाले हमारे पास है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, और खाद्यान्न हर तरह का हमारे पास है, दलहन तिलहन और चावल बहुत कुछ हमारे पास है, और है नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा है कि गुणवत्ता उनकी अच्छी है। उस गुणवत्ता को लेकर भी हमने जो एफपीओ बनाने का जो कॉन्सेप्ट किया था, उसमें कम से कम 300 किसानों को जोड़ के या 50 हेक्टेयर जमीन इकट्ठी हो जाए किसानों की, तो एक एफपीओ बनता। एफपीओ को आप छोटा सा ऐसे समझे, किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनाए गए समूह को हम एफपीओ, वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और वे उसको संचालित भी करेंगे और आगे बढ़ने का मैं अपने आप, जैसे नहीं होता शिकारी पिंजरे डालता है उसमें बहुत सारी बक्सी बढ़ता है, अकेला जोड़ेगा तो नहीं बाकी सारे ताकत लगाएंगे तो डिजाइन पिंजरे को, वही एफपीओ का काम है। जब आप इकट्ठे होके किसी एक मकसद के लिए काम करोगे तो अपने मकसद में सफल होगे, और हमारा जो एफपीओ है, कारण क्या है कि हमारे किसान पैदावार करने के लिए बहुत सारी दवाइयां लगा, और उस दवाइयों को हम सब किसानों को बताने जाएंगे तो वो महंगी है, लेकिन एफपीओ की जो मेन दर है, सपोज करो आज हमारे सामने 30 लोग रहते हैं, ये 30 लोग हमारे तो वो 300 लोगों को बताएंगे कि आज हमने वहां से वो जानकारी दी है, इस फसल में इस पेस्टिसाइड को लगाने के लिए बताया है, इसको यदि इतना मैसेज भी एफपीओ के द्वारा पहुंच रहा है, आपके द्वारा जो पैदा होगा कलेक्टर के द्वारा वो निर्यात किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग में यदि हम साफ सफल हुए, यानी कि उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू नहीं आया, यानी कि हमारा जो एफपीओ बनाने का उद्देश्य था वो पूरा, उससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा, और इंटरनेशनल मार्केट में अपने देश की जो पेस्टिसाइड को लेकर थोड़ी खराब है वो भी सुधरेगी, हम किसी भी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में अभी ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे उत्पाद में पेस्टिसाइड नहीं निकले, इसीलिए एफपीओ को तो एक इकाई बनाया है। आपको उदाहरण लेके फिर हम पूरे जिले में ये बात फैला सकते हैं कि भाई इस तरह से आप पैदावार करोगे तो पैदावार भी बनेगी और क्वालिटी का उत्पाद भी आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि एफपीओ से आप आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि एफपीओ से आमदनी भी बढ़ेगी, उसका भी आप कर सकते हैं। कारण क्या है, आपके हाथ से कोई चीज मंडी में दी तो छूट गई, 300 रुपए की आपने दे दी और वापसी उसको खरीदने जाओ तो वो 400 रुपए से हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। आप एफपीओ बनकर मार्केटिंग कर सकते हैं, एक कंपनी चला सकते हैं, अपने उत्पाद को सीधे कस्टमर को बेच सकते हैं और वो कस्टमर आपका अपने जिले में हो सकता है, अपने स्टेट में हो सकता है और विदेश में भी हो सकता है। यही एफपीओ का कॉन्सेप्ट है। और जो एफपीडीसी टीम थी कृषि निर्यात लाइव चौपाल चलाने की, ये हमारे 12 एपिसोड 12 महीनों में एक एक जिले में करने थे और आपके यहाँ ये 9वां एपिसोड मेरठ में दूसरा एपिसोड है। तो ऐसे ही आप एफपीओ को सफल बनाए, एफपीओ को सफल बनाने का मतलब है किसान अपने आप को सफल बना, यही हमारे एफपीओ का उद्देश्य।
1: जी धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद तोमर जी। देखिए बहुत अच्छी जानकारी सुभेंद्र भैया उन्होंने दी है कि एफपीओ क्या है, कैसे बन सकता है और हमारे किसान भाई कैसे लाभ उठा सकते हैं। और चौपाल पर बहुत सारे किसान भाई उपस्थित हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी एफपीओ बनाकर अपने कृषि के उत्पाद को अगर बाहर बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा।
4: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है कि एफपीओ कितना हमारे काम आ सकता है, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि भाई देखो इस गांव में भी एक एफपीओ चल रहा है,
1: बिल्कुल,
4: और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है।
1: और देखिए जैसे हम बता चुके हैं कि ये एफपीओ बाहर अपने कृषि के उत्पाद को बेचने के लिए भी अच्छी भूमिका निभा रहा है और किसानों को जोड़कर यहाँ अपना अच्छा उनका सहयोग हो रहा है। तो भैया किसानों के बीच में चलना भी तो जरूरी है ना।
4: बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों के बीच में चलते हैं और जो यहाँ पर एफपीओ चल रहा है भाई वो किसान भाइयों के बीच में बैठे हैं, तो आइए सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात करते हैं क्योंकि बाकी जो गांव वाले हैं वो उसी से उन्हें जानकारी मिलेगी कि हम कैसे ऐसे जुड़ सकते हैं।
1: जी जी आपका परिचय आप बता दीजिए।
4: देखिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो आप एफपीओ, पहले तो आप इसका परिचय दीजिए हमें एफपीओ का।
5: ये एफपीओ गठित हुआ था 2021 में।
4: अच्छा,
5: ये लगभग 5 साल हो गए हैं और ये अब इसका अब इनपुट सेंटर है भी उसका कार्य कर रहा और अब इसका जो है धान बासमती धान का एक कलेक्टर घोषित हुआ है तो इसी साल निर्यात करने के लिए।
4: देखिए निर्यात करने के लिए आपको कलस्टर में शामिल किया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब तक आप क्या प्रतिक्रिया इसमें करते रहे हैं, क्या गतिविधि रही है आपकी? अभी
5: इनपुट सेंटर है, किसानों से संपर्क रहा है अपने उत्पाद अच्छे रेट।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग कितने किसान इसमें शामिल है आपके?
5: 750
4: किसान है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए 750 किसान इस एक्ट में जुड़े हुए हैं और लगभग अगर हमारे सभी किसान भाई इसमें जुड़े और संगठित होकर हम काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोद भाई
1: बिल्कुल आपने एकदम सही कहा है। देखिए जैसे कि पवन भटाना जी ने बताया कि उनका ये कई साल पुराना एफपीओ बना हुआ है और बहुत सारे किसान यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी आपका परिचय? आप किस तरह की खेती करते हैं?
5: हम आलू की करते हैं।
1: अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो आलू को बाहर बेच रहे हो आप?
5: आलू को बाहर निर्यात का उन्होंने रखा है।
1: जी जी निर्यात से किस तरीके से कर सकते हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं चौपाल के माध्यम से? आप
5: जानकारी लेना चाह रहे हैं जिसका निर्यात हो गए किसान को लाभ हो गए, निर्यात से लाभ हो गए तो लाभ नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। देखिए
4: तो देखिए प्रमोद भाई निर्यात करने के लिए हमें पहले एफपीओ तैयार करना पड़ेगा और बाकी उसके क्या हमारे प्रोसेस हैं ये जानकारी के लिए हम चलते हैं तब तक प्रमोद तोमर जी के पास।
3: जी डॉक्टर जी धन भाइयों, आप आलू का भी निर्यात कर सकते हैं, एफपीओ में भी हेल्प कर रहा है। अभी उत्तराखंड से आलू के फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि आप आलू को सीधा निर्यात ना करें उसके उसमें बोलते हैं वैल्यू एडिटिंग करना।
4: जी
3: वैल्यू एडिटिंग आप ऐसी बन दो जैसे शादी ब्याह में लीजिए दूध की तरह से जाती है ना, बिल्कुल ऐसे आप अपने उत्पाद को थोड़ा सा प्रोसेस करके जब प्रोडक्ट बना दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाए और उसी प्रोडक्ट को अधिका निर्यात करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप आलू आलू के लिए भी एफपीओ बना सकते हैं। अभी आगरा में भी एक बहुत बड़ा सेंटर आलू के लिए खोला गया है ताकि आलू के निर्यात को हम

0: धन्यवाद डॉक्टर। देखिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम किस तरीके से अपने आलू को बाहर बेच सकते हैं, और देखिए मार्केट की व्यवस्था क्या हो सकती है, तो बिंदु भाई ये जानना भी जरूरी है ना।
1: और देखिए मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो देखिए मार्केटिंग ही सारी बात है, क्योंकि अगर मार्केटिंग हम अच्छे तरीके से जान जाए, अच्छे तरीके से सीख जाए, तो फिर हम अपने उत्पाद को बहुत ही अच्छे तरीके से बेच सकते हैं और बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। और जो हमारा मार्केटिंग विभाग है वो भी इस निर्यात में काफी योगदान कर रहा है और काफी उसमें उत्साहवर्धन काम किए जा रहे हैं।
0: जी जी जी
1: और यहाँ पर राहुल यादव भी उपस्थित हैं।
0: बिल्कुल, राहुल यादव जी सहायक कृषि विपणन अधिकारी हैं और जो कि मंडलीय अधिकारी हैं मेरठ के, तो आओ उनसे बातचीत करें।
1: बिल्कुल जी यादव जी,
2: धन्यवाद सुरेंद्र जी। प्रमोद जी, पहले तो आपके माध्यम से हमारे किसान भाई जो आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं अपना परिचय थोड़ा देना चाहूंगा अपने विभाग का। मैं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के माध्यम से आ बैठा हूँ, और हमारे विभाग के माध्यम से जो मार्केटिंग की जो विपणन की बात हम कर रहे हैं उसकी व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत समस्त जनपदों में मंडी परिषद के माध्यम से मंडियां स्थापित की गई। अगर कोई किसान अपना उत्पाद स्थानीय तौर पर अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए मंडी जो है उनसे व्यवस्था चल रही है, वो एक पुरानी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। वहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत अभी मंडी अधिनियम के अंतर्गत एक सीधा उपक्रय और मंडी उपस्थल के अभी इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर किसान या एक्सपी चाहे या कोई व्यापारी चाहे तो वो अपनी मंडी भी स्थापित कर सकते हैं। तो जैसा अभी होता क्या है कि पुरानी मंडियां हैं वहाँ किसानों के थोड़ा दूर पड़ती हैं, किसानों के खेतों से थोड़ा दूर पड़ती हैं, तो उस दूरी को कम करने के लिए किसानों के खेतों पर ही अपनी चाहे तो अपनी मंडी स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए सीधा थोक कर एक लाइसेंस ले सकते हैं या मंडी उपस्थल का लाइसेंस ले सकते हैं। दोनों में उनको छूट भी दी जाती है, जैसे विकास कर की छूट मिलती है इसमें, और मंडी जो शुल्क जमा करते हैं उसमें भी 25% की उसमें छूट भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुरानी व्यवस्था में मंडियां किसान लेके जाते हैं अपना उत्पाद और उन्हें बेच कर ही आना पड़ता है चाहे जो भी ना मिले, तो उसके लिए अगर वो चाहे तो अपने गाँव में ही अपने खेतों के नजदीक अगर मंडी स्थापित करना चाहें तो वो उसको अब कर सकते हैं, और उसमें हमारे विभाग के माध्यम से काफी सहयोग भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये तो हमने स्थानीय बाजार की बात करी, अब हम बात करेंगे निर्यात के लिए, जो कि हम निर्यात का तात्पर्य है किसी दूसरे देश में अपने माल को भेजा जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही 2019 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई थी, और बहुत ही गर्व की बात है कि प्रत्येक पहले किसी राज्य के द्वारा जो नीति लाई गई उत्तर प्रदेश की था। तो उसके क्रम में जब 2019 में नीति लाई गई उसमें किसानों निर्यातकों स्वतंत्र जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट में सबको ध्यान में रखते हुए कि इंटीग्रेटेड इसमें सहयोग से प्रोत्साहन रखे गए कि किसान भाइयों के लिए अलग तरह के प्रोत्साहन है, हमारे जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके लिए अलग तरह के प्रोत्साहन है, हमारे निर्यातक भाई हैं उनके लिए अलग तरह के प्रोत्साहन है। तो हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा आज जिला ब्लॉक में यहाँ पे हम उपस्थित है, तो आज हमारे एसपीओ यहाँ पे उपस्थित है, उनका 17 जून को इनके एसपीओ को हमारे उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत क्लस्टर घोषित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि क्लस्टर का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत अगर एक विकास खंड में न्यूनतम 50 हेक्टेयर का किसी एक विशिष्ट फसल का अगर ये किसान रहते हो या अपना ग्रुप बनाते हैं समूह बनाते हैं तो इसको हम एक क्लस्टर का नाम देते हैं, शासन से घोषित किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने पहला चरण था, उसके बाद हमारे विभाग के माध्यम से अभी 13 जुलाई को कुछ एसपीओ जो प्रथम पंक्ति कॉलेज लेवल एसपीओ है उनका हमने अभी निर्यातक के साथ एमओयू भी कराया है, जो अध्ययन चल रहा है इसके जो उत्पाद अभी होगा नवंबर दिसंबर में जो उसका फसल निकलेगी उसको धान के प्रोसेसिंग के साथ एक्सपोर्ट कराया गया है। हमने एक निर्यातक है उनके साथ उनका एमओयू भी कराया है। तो इस बार मैं आशा करता हूँ कि इस बार हमारे जो किसान भाई हैं वो ऐसा उत्पाद तैयार करें जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो मानक है उसको पूरा करें, ताकि इस बार पसंदा का चावल जो हमारे जो चावल है वो दूसरे देशों के लोग भी चखें और हमारे भारत का नाम और गौरव से ऊंचा हो। तो इसी के अंतर्गत एक चीज और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई एफपीओ चाहे तो स्वयं निर्यात करे या किसी निर्यातक के माध्यम से अगर निर्यात करते हैं तो इसमें एक परिवहन अनुदान की भी व्यवस्था रखी गई है, जिसमें अगर कोई निर्यात कर रहे हैं तो उसमें आप सीधे सीधे परिवहन के जो आपका भाड़ा लग रहा है उसका 25% सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी के तौर पर आपको रिइंबर्स किया जाता है। वापस किया जाता है। तो जितना भी आपका आपके खेत से आपकी प्रोसेसिंग यूनिट से जिस भी देश में आप निर्यात कर रहे हैं वहां पर जो भी आपका खर्चा लगा रहा है उसका सीधा सीधा 25% आपको निर्यात के उपरांत दे दिया जाता है, चाहे आप श्रम करें चाहे आपके निर्यात के माध्यम से करें। तो ऐसी दशा में बहुत समझ की नीति लाई गई है। क्लस्टर में भी 5 वर्षों में 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इसमें प्रथम वर्ष में 4 लाख रुपए की इसमें एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है और अगले 4 वर्षों में 1.5 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए तक का इसमें प्रोत्साहन का व्यवस्था की गई
0: जी। तो सुभेंद्र भैया देखिए, राहुल यादव जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि हम किस तरीके से मार्केट की व्यवस्था कर सकते हैं और कैसे मंडी बना सकते हैं। अब किसान भाई बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं इस बात को।
1: और देखिए डॉक्टर हमारे प्रमोद तोमर जी ने जानकारी दी है कि एफपीओ हमें कैसे बनाना है, उसका क्या महत्व है।

0: लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए सुभेंद्र भैया हमारे किसान भाइयों की जो कृषि की उत्पाद हैं वो उनको तैयार कर रहे हैं और बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी एक बात यहाँ पर ये आई चौपाल में कि हम अपने गांव के आसपास मंडी बना सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और मंडी बनाने के लिए कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। वो पैसा कहाँ से किसान भाइयों को मिलेगा ये जानकारी लेने के लिए आइए चल लेते हैं, क्योंकि चौपाल पर उपस्थित है डीडीएम नाबार्ड सुश्री भावना जैन, उनसे भी बातें कर रहे हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी एक्सपोर्ट की बात करी, पर एक्सपोर्ट हमारा आखिरी चरण है ना। एक्सपोर्ट से पहले डॉक्टर साहब ने भी और ग्यारह जी ने भी बताया कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, पर एक्सपोर्ट के लिए अगर हमें तैयार रहना है तो हम कैसे हो सकते हैं? जैसे अभी इनका नाम ने बताया आलू की खेती कर रहे हैं, कभी आपने सोचा कि आलू का कोई ग्रेडिंग प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, आलू के चिप्स बनाए, आलू के लच्छे बनाए? खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। सरकार ने ये सब देखते हुए अपनी दो तीन काफी अच्छी स्कीम्स बनाई है, जिसके अंतर्गत अगर आप बैंकों से जुड़ते हैं, नाबार्ड का काम है बैंकों को फाइनेंस करना ताकि वो आपको फाइनेंस कर पाए। हम इनडायरेक्टली आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो क्योंकि बेटा में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम प्रोसेस फूड को करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सर ने कहा आलू, ठीक है, आलू के चिप्स बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज सर ने कहा उसे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करता है? घर पे तो जो हम मजे में खाते हैं वो तो चलेगा नहीं, उसके लिए हमें थोड़ी यूनिट लगानी पड़ेगी, थोड़ी मशीनरी लगानी पड़ेगी, थोड़ी जमीन चाहिए होगी, उसके ऊपर वो शेड बनाना पड़ेगा। तो उसमें सरकार की स्कीम है जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, पीएमएसएमई के नाम से होता है। इसके अंतर्गत आप किसी भी खाद्य प्रकार की अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, कोई भी हो, जैसे आपने आलू कहा, आपने धान कहा, यहाँ पे गन्ना बहुत होता है, दालें होती हैं, मसाले होते हैं, दूध बहुत होता है, तो इन सब चीजों में अगर आप कुछ भी खाद्य प्रसंस्करण करना चाहते हैं छोटे स्तर से, उसमें आपको 35% तक सब्सिडी सरकार देता है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। तो जैसे अगर मैं पवन जी का अभी एग्जाम्पल दूंगी, वो बताना भूल गए कि उन्होंने अभी नया कोल्ड रूम लगाया है जहाँ पे आपके टमाटर हो गए, केले हो गए, वो रखे जा सकते हैं। उन्होंने एफपीओ के नाम से ये लिया ताकि आप जितने भी किसान भाई हैं उन सबको इसका फायदा हो। तो उसमें एफपीओ को भी फायदा हुआ, ये फायदा एफपीओ को भी है अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो उसमें भी है। सरकार आपको 35% सब्सिडी देगी, वो जो बनाए उन्होंने 15 लाख से बनाया, 15 लाख का 35% सरकार के अनुदान आया, 10% आपने दिया अपना लगाया, बाकी जो 20% का 55% बचा उससे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर कहोगे यार मैडम आप क्या बात कर रहे हो, बैंक लोन वो तो 13-14-15% लगा देगा, हम तो ब्याज में परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सरकार ने सारे बैंकों के साथ एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि अगर कोई भी पोस्ट हार्वेस्ट कटाई के बाद फूड प्रोसेसिंग हो गया या कोल्ड कोल्ड स्टोर हो गया, वेयर हाउस हो गया, या फिर अगर आप नई तरह की खेती कर रहे हो जैसे मशरूम की खेती हो गई या पॉली हाउस में कोई खेती कर रहे हो, उसमें बैंक आपसे 9% से ज्यादा ब्याज नहीं लगा सकते, उसके ऊपर सरकार उसके ऊपर आपको 3% का ब्याज अनुदान भी देगी। तो जो लोन आपको डर लग रहा था कि 14-15 का होगा, पहले तो वो 9% पे लग गया, उसके बाद आपके पास ब्याज अनुदान भी आया, तो इफेक्टिवली 6% पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं आप सबसे कहूंगी, जब आपको एक्सपोर्ट करना है वो आपकी आखिरी सीढ़ी है, उससे पहले आपको अपना जो भी आप फसल ले रहे हैं उसमें गुणवत्ता देखनी है, उसे प्रोसेसिंग करनी है थोड़ा सा, उसके बाद आपको उसे पैकेजिंग भी करनी है, उसके बाद आपको ट्रक वर्क भी चाहिए पहुंचाने के लिए, वहां तक पोर्ट तक तो जाना पड़ेगा ना, मंडी तक तो जाना पड़ेगा ना, इन सब चीजों के लिए।

उसमें गुणवत्ता देखनी है, उसे प्रोसेसिंग करनी है थोड़ा सा, उसके बाद आपको उसे पैकेजिंग भी करनी है, उसके बाद आपको ट्रक वर्क भी चाहिए पहुंचाने के लिए वहां तक, पोर्ट तक तो जाना पड़ेगा ना, मंडी तक तो जाना पड़ेगा ना, यही सब चीजों के लिए ये AIF करके जो योजना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग फंड है।

0: और गुजरात में क्या क्या बन सकते हैं इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का और आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे मंडलीय अधिकारी ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के विषय में आपको विस्तृत रूप से बताया है, तो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी चाहते हैं कि भाई हम अपनी फसल का निर्यात करें, तो निर्यात जो शब्द है सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन उत्पादन हमें उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। हम भाई जो भी हम कुछ अपना उत्पाद तैयार करेंगे वो लोकल मार्केट की तरह 10-20 किलो तक का होता नहीं है कि 10-20 किलो भेजते हैं, तो उसमें हमें टनों में अपने बात करनी होती है, तो उसमें भी हमारा थोड़ा मुनाफा भी कम होता है। तो जो पूरा टोटल करके देखें तो बहुत ज्यादा मुनाफा हमारा हो जाता है क्योंकि हमारे पास मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों के निर्यात के लिए जैसे कि हमारी भारत सरकार का विजन था कि हम कृषकों की आय को दोगुना करें, तो आय दोगुना करने के दो ही तरीके होते हैं। तो हमें जो चीज हम तैयार कर रहे हैं उसका हमें प्रॉफिट ज्यादा दी, और दूसरा ये होता है कि हमारा खर्चा कम हो। तो ये जो आपका निर्यात वाली जो सोच है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 लाई गई थी, इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले ये था कि हम क्योंकि हमारी जोत जो है निरंतर छोटी होती जा रही है, हमारे पास हेक्टेयर में होते थे, अब हमारे पास बीघे में होने लगी चीजें, तो एक किसान तो इस चीज को पास मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत किसानों के लिए क्लस्टर वाली योजना लाई गई कि भाई हम एक कंपनी बनाए और कंपनी में क्लस्टर रखते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उनकी जोत को भी इकट्ठा कर लें। वो मालिक तो अपनी अपनी जोत के रहेंगे, लेकिन यदि वो इकट्ठा होकर अपने उत्पाद को इकट्ठा करते हैं तो वो तो टनों में उसकी मात्रा हो जाती है, तो उस टन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें जो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत हमने अपने मेरठ जिले में अभी तक 5 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें हमारे पास 3 क्लस्टर तो बासमती धान के हैं, 1 क्लस्टर आम का है और 1 क्लस्टर हमारे पास ताजी सब्जी का है जो कि निर्यात के उद्देश्य से ही बनाए गए। उस क्लस्टर के अंतर्गत जो हमारी सब्जियां हैं कि वो 50 हेक्टेयर कम से कम जमीन होनी चाहिए। अभी हमारे पास 50 हेक्टेयर जमीन होगी तो हम उसको उत्पादन करेंगे तो हमारे टनों में पहुंचेगा तो हम उसमें हम अपने उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने जो हमने अपना क्लस्टर बनाया तो क्लस्टर को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये भी था कि हम बहुत सारे हैं, यदि हमें कोई चीज अपना एक इनपुट जैसे कि हमें उसमें दवाई डालनी है, खाद डालना है, जो भी चीजें डालनी है, यदि हम अकेले मार्केट में जाते हैं तो हम कितना लेते हैं, 1 कट्टा 2 कट्टा 1 क्विंटल 2 क्विंटल लेते हैं तो खुद का रेट में मिलता है। यदि हम एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं, क्लस्टर के साथ जुड़े हैं, तो हमें टनों में ही उस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम दूसरी कंपनी से दूसरे व्यापारी से बार्गेनिंग कर सकते हैं। बताइए ये दवाई जो है आप हमें दे रहे हैं ये 200 रुपए की चीज ही है, लेकिन हमें 10,000 पीस चाहिए तो आप कितने का दोगे? तो वो कहेगा कि ठीक है जी, आप तो थोक में दे रहे हो तो 200 भी देगा, आपको 150 रुपए देगा। तो हमारे जो खाद का है, पेस्टिसाइड का है, जो भी हम चीज में जुताई है, क्योंकि जुताई के लिए अपने अपने यंत्र एफपीओ को दे दिए गए हैं, ये भी आप कम से कम रेट पे किसानों की जुताई करें, लेकिन हम उसको भी जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमने उत्पाद पैदा किया तो उसमें कई 1000 रुपए लगभग 1,00,000 रुपए तक तो हम अपने खर्चे को कम कर सकते हैं, तो वो भी हमारा प्रॉफिट में जुड़ा। फिर जो हमने पैदा किया उसके रेट भी हमें मांगे मिलेंगे, क्योंकि हम इकट्ठा है, कोई भी अभी जो हम माल बेचते हैं लोकल को बेचते हैं मतलब क्विंटल आप चावल दे दीजिए, लेकिन यदि हम इसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करेंगे तो फिर 10 क्विंटल की 1 क्विंटल की कीमत भी तो ज्यादा होगी ना लोकल मार्केट से, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने जो क्लस्टर बनवाए हैं, और इस क्लस्टर के माध्यम से ही हमने अभी पिछले 2 साल पहले ही हमने जो हमारा प्रथम सॉरी मीरादत ऑर्गेनिक सदाना में हमारा क्लस्टर था धान का, उससे हमने एक्सपोर्ट कराया है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आपका खर्चा कम हुआ, रेट ज्यादा मिले, और उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत आप यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 5 साल में 10 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गई।
1: बिल्कुल जी, धन्यवाद वीके सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को सुभेंद्र भैया दी गई है कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। और देखिए बात ये आती है कि हमारे किसान भाई अपने उत्पाद को बेचे तो उसके लिए हमारा जो कृषि का उत्पाद है उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और गुणवत्ता के लिए और उसको अच्छे उत्पाद को बाहर बेचने के लिए भाई ये जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है ना।
2: बिल्कुल, देखिए हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि जो हमारे कृषि निर्यात लाइफ तो किसान जो आम किसान अपने खेती बाड़ी में काम करता है, खेतों में काम करता है, वो निर्यात कैसे कर सकता है, निर्यात तक कैसे बन सकता है, तो

0: के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और तब तक प्रमोद तोमर जी विस्तार से बताएंगे कि एक किसान निर्यातक कैसे बनता है।
1: किसान भाइयों, यदि आपको निर्यात के क्षेत्र में जाना है तो पहले तो आप एक एफपीओ से कनेक्टेड हो जाए। एफपीओ जब बन जाता है या तो 300 किसान हो या 50 हेक्टेयर उसके पास जमीन हो, तो फिर उसके पास सारी डॉक्यूमेंट का मतलब एक कंपनी का अच्छा सा नाम हो, उसका एक अच्छा सा लोगो हो, ठीक है, और किसी विशेष उत्पाद के लेके वो काम करें, और जितने भी कृषि विभाग के और मार्केटिंग के और ऐसे एसएसआई के लाइसेंस है वो आपके पास हो, कंपनी का पैन कार्ड आपके पास हो, और लीज डीड हो, लोकेशन हो, एड्रेस हो, साथ में जब आप जाएंगे निर्यात करने तो वहां पे भी आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी तभी आप निर्यातक बन सकते हैं या आपका एफपीओ निर्यातक बन सकते हैं। एक पहली है आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आप डीजीएफटी की साइट पर जाकर ऑनलाइन नेटवर्क के द्वारा भी अपने ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 500 रुपये उसकी फीस होती है और डीजीएफटी से आपको वो लाइसेंस दिया जाएगा। उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन भरे वो थोड़ा सावधानी पूर्वक भरे, जो आपके डायरेक्टर उनके सबके पैन कार्ड होते हैं, उनके नाम होते हैं, वो क्या, क्योंकि जो डाटा आपने उसमें फीड किया है आईसी के फॉर्मेशन करते हुए, जब आप आरसीएमसी कराएंगे ज्यादातर डाटा वो वहां से लिख करेंगे, यदि वो मैच नहीं करेगा गलत होगा तो आपका आरसीएमसी आईसी का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आप किसी क्षेत्र में निर्यात करने के लिए एफिडेट पर जाकर आरसीएमसी करा सकते हैं। आरसीएमसी का मतलब है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप, ये 5 साल के लिए होती है मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए। मर्चेंट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर भी कई तरह के होते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो है जिसका अपना कुछ नहीं, समझे, आप सेलियर उनको देखिए, तो उनको 5 साल तक के लिए वो आरसीएमसी का यदि आप बनते हैं प्रोसेसर तो वो 1 ईयर के लिए होगा, फिर आपको उससे रिन्यूअल कराना। आरसीएमसी की जो फीस है वो 5,000 रुपए है, 18% उसका जीएसटी चार्ज है, 5,900 रुपए के करीब आपका पहला हुआ लगेगा मार्केट एक्सपोर्टर के लिए, वो 5 साल के लिए आपका हो जाएगा, फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर आप ये जब आप करा लेंगे अब आप एक्सपोर्ट की चैन में आते। अब आप सोचोगे कि हमने एक्सपोर्टर को बना दिए, हम करेंगे क्या, हमें ग्राहक कहाँ से मिलेंगे, हम देखेंगे कि इसको, ये भी एपिटर बहुत अच्छे से हैंडल करता है। जैसे ही आपके पास आरसीएमसी आ जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन एपिटर की साइट पर हो गया, और जैसे आजकल एक विवरण चलता है शादी ब्याह के लिए लड़के लड़की वाला लगता है ना, तो ऐसे ही आपका ब्यौरा भी इसमें रहेगा कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये नंबर है, ये इसका नाम है। ऐसे विदेश वाले बायर जब खरीदेंगे वो भी ढूंढेंगे कि भैया मुझे तो आग चाहिए, जैसे आगे की बात अभी चल रही थी, तो क्लिक करते ही फोटो डाल लेंगे तो 50 लोगों के नाम नंबर आएगा। अब आलू में भी वो कहने लगे हमें तो चिप्स चाहिए, तो चिप्स का भी आ जाएगा कि भैया इतने हमारे ये चिप्स भी दे रहे हैं, 5 एक्सपोर्टर हमारे जो है वो फ्रेंच फ्राई दे रहे हैं। अब उनको स्टेज का भी यदि कहीं कोई था भी मैं तो उतना खर्चा लेना चाह रहा हूँ वो भी निकल जाएगा। एक ये होगा सिस्टम। दूसरा क्या होगा, हम अपने डोमेस्टिक में भी बायर सेलर मीट करते हैं, यदि आप विदेश जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि किसी वजह से आप शुरुआत कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं तो एपिडा डीएसएम करता है, बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज कराता है। हर एक चलता है दिल्ली में, हर लगता है प्रगति मैदान में, भारत मंडल उसमें आप जा सकते हैं, और यदि आपने आरसीएमसी ले लिया तो आपको इनविटेशन भी आ जाएगा और आपको एपिडा के फ्लैग के नीचे अपना स्टॉल लगाने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है यदि उसकी फीस टूट जाए तो कोई जो 10,000 रुपये फीस है तो उसमें जो छूट दे रहा होगा एपिडा का 30% वो भी मिल जाएगा, वो समय समय पर डीएसएम होगी बायर सेलर भी। और यदि आप चाहते हैं सपोज करो आपको मोबाइल नहीं छोड़ा जाते, आपके स्टॉल पर कोई आए नहीं बायर, आप चाहते हैं मैं पे कर लू, तो एपिडा पे भी बायर सेलर मीट करा देता है, उसका बहुत मिनिमम चार्ज होता है, उसे आप कराते आप बायर और अपने उत्पाद को देख सकते हैं। आजकल खिलाने के बाद भी ग्राहक

0: दो बातें होती है, वो पहले टेस्ट करते हैं बायर जो आती है दो ही दूध में, तो अमुक क्वांटिटी आपके पास कितनी क्वांटिटी है और क्या रेट है, वो क्वालिटी देखते हैं क्या रेट और क्वांटिटी भी आपको, क्योंकि कई बार उनके पास इतना बड़ा ऑर्डर होता है एक व्यक्ति उसको पूरा ही नहीं कर सकता, इसलिए आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे कई व्यक्ति, और वो एक ऑर्डर आपका यदि अच्छा निकल गया तो रिपीट ऑर्डर आने शुरू हो गए, और ये तो एक कंपनी की बात हुई, आप क्या कंपनी में काम कर सकते हो, आप जैसे तो आप आगे बढ़ा सकते हो अपने, तो एपिटा आपकी हेल्प जल्दी करेगा जब आपके पास आई यूसी होगा तो आरसीएम।
1: आपने पहले एक बात करें, जो किसान की बात है, जब तक किसान के यहाँ आलू की खरीदारी की मंडी नहीं बने गवर्नमेंट की, किसान कामयाब नहीं होगा। और दूसरा, कोई कंपनी यहाँ अपनी फैक्ट्री बना रहे जब आलू का उधार होगा, ये किसान कितनों से तुम बात कर रहे हो, पिछले कोई आदमी इस काम को कोई नहीं कर लेगा, बेकार मगर किसान होंगे। जो सही बात है वो ये है कि निर्यात करें और फैक्ट्री लगावे, ठीक है, हर चीज
0: जी
1: की। और चावल की फैक्ट्री लगाओगे, बताया यहाँ यहाँ दाल की फैक्ट्री कहाँ, कितना रहता होता है,
0: बहुत अच्छा आपका आया सवाल,
1: तो ये
0: गवर्नमेंट ने आपको
1: काम
0: नहीं
1: है, तो वो ख्याल से यू कहो इस चीज को जो इसका पैदा हो तो हम खरीदेंगे। अच्छे
0: गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो एफसीओ को चांस दिया है ये छोटा मोटा चांस नहीं है, यदि आप
1: अरे एक बात बताऊं, मोदी ने ही कहा था किसान की आय दुगनी करोगे, मोदी की सरकार से आज तक किसान का कर्जा दुगना हो गया है, आज रियली
0: चलो मैं बता रहा हूँ, आय दुगनी करने की बात पहले से पहले का सवाल, एफसीओ जो बनाया है वो एज ए मंडी भी ठीक हो सकता है, वो अपना लाइसेंस ले सकता है, गोदाम बना सकता है, प्रैक्टिकल आपके मेरठ में ही है हमारा नील, अगर ऑर्गेनिक करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है किसावली में, उनके यहाँ बियर हाउस बनवाया है, महाला जंग यहीं करते हैं नाबार्ड के द्वारा, लेकिन कदम आपको रखना है, माँ बच्चे को दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है वो खेलता खेलने उसे कोई निकला, ऐसी गवर्नमेंट आपकी हेल्प जब करती है जब उसके पास जाती है, आपको लोन चाहिए नाबार्ड के पास जाइए, आपको मंडी लाइसेंस चाहिए राहुल जी के पास जाइए, आपको एक्ट बासमती के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो बीजे
1: किसान को मानने का केवल गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है, या केवल फैक्ट्री लगा और दूसरे किसान की जीन को उसे बता दें कि भाई इधर बहुत व्यायाम से निकल है,
0: वो ही तो एक्टिव का मतलब है ना,
1: तो किसान से किसान फैक्ट्री नहीं लगा सकता, तो जीन का सकता
0: एक्टिव जो है आप समझो यही तो मकसद ही कर रहे हैं, अभी इन्होंने बहुत छोटा सा यूनिट लगाया है कोल्ड स्टोरेज, फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट को रखने के लिए, आपके यहाँ से कोल्ड ग्रेन का कुछ 10 टन का है और आपके यहाँ 100 टन की कैपेसिटी है पैदा करने की, तो आपके नाबार्ड बैंक आपको 100 टन कैपेसिटी का भी लगा के दे सकता है, आप गरीबी सही, यही तो आज भी जो चौपाल होती है कृषि लाइव निर्यात चौपाल, इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों के अंदर जज्बाए, आप आपसे तो हम उम्मीद सिर्फ ये करते हैं कि आप क्वालिटी को पैदा करते हैं, और
1: क्वालिटी
0: कई
1: पैदा
0: बार
1: करो ना, क्वालिटी पैदा करो,
0: हाँ
1: हमारा
0: हमारे
1: पैदा करने को ये सब चीज है, किसान का
0: है कोई ना
1: आज
0: कोई
1: आज
0: ना,
1: आज नॉलेज तो हो रहा
0: अब सुनिए हेल्प क्यों मांगता है मैं आपको बताऊं, हम बासमती का पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 152 कंट्री में पिछले साल हमने 65 लाख मैट्रिक टन बासमती का निर्यात करा, जिससे 50,137 करोड़ रुपया हमारे देश को विदेशी मुद्रा के रूप में, और ये बढ़ सकता था लेकिन बहुत जगह पेस्टिसाइड का ऐसे ही इशू इतना बड़ा आया कि हमारा कंटेनमेंट रिजेक्ट भी हुआ, ठीक है, तो वो ही समझाने के लिए आपके बीच में हम आए हैं कि आप उत्पाद जो लगाए अपनी फसलों में वो वैज्ञानिकों की सलाह से लगाए, कृषि विभाग की सलाह से लगाए, और आजकल तो आपके पास में फोन इतना अच्छा माध्यम है इसका इस्तेमाल करें,
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की चौपाल पर बहुत सारी बातें अपने कृषि के निर्यात को निकल कर आई हैं कि हमें किस तरीके से अपने कृषि के उत्पाद को बेचना है, और आज इस चौपाल पर उपस्थित हमारे जितने भी कृषि के अधिकारी हैं, किसान चाहे वो मार्केटिंग से संबंधित है, नाबार्ड से संबंधित है, हमारे किसान भाई हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबका धन्यवाद देने के लिए आइए चलते हैं अपने कार्यक्रम अधिकार जी अंकित सैनी जी के पास।
1: धन्यवाद सर मोदी। देखिए जैसे कि किसान भाइयों के सामने समस्या आई है, किसी ने कहा कि मैं आलू बोता हूँ तो मुझे आलू को बाहर भेजना है, ठीक है, उसके लिए दो चीजें निकल कर आई है, तो आप अकेले नहीं बाहर भेज सकते, आपको समूह बनाकर खेती करनी होगी। दूसरा वो डायरेक्ट बाहर नहीं जाएगा, उसके लिए आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। तो जो भी एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके बारे में बात की। दूसरा नाबार्ड के थ्रू आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, जैसे आपके मेरठ में ही यही होंडा में ही एक कोल्ड स्टोरेज भी खुला है, वो भी नाबार्ड के थ्रू खुला है, तो नाबार्ड की क्या रोल है, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की जैसे अभी बात चल रही है उसके बारे में प्रमोद तोमर जी ने बताया, और यूपी गवर्नमेंट की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसके बारे में राहुल यादव जी और बीपी सिंह जी ने बताया, और आप लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं डॉक्टर साहब के सामने के सामने रखी। आप हमारा देते ही यही होता है कि आप लोगों की जिज्ञासाएं बाहर निकल के आए, जब आप एक बिजनेसमैन के तौर पर सोचेंगे तब आप किसान से ज्यादा बढ़ करके कुछ लाभ कमा सकते हैं। यही हमारी तरीके चौपाल लगाने का एकदम उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आपको पुनः अपने आकाशवाणी स्टूडियो वापस ले करता हूँ, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
3: किसान भाइयों को फसल उत्पादन के साथ साथ संगठित होकर किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO बनाना है और अपनी फसल को स्वयं खरीदकर दूसरे देशों को निर्यात करना है। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान BEDF मेरठ द्वारा जनहित में जारी।
4: अब नहीं रहेगा कोई भी सवाल
3: जब किसान भाई सुनेंगे
5: आकाशवाणी नजीबाबाद से
6: लाइव चौपाल।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
5: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा,
4: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा।
7: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. And India's Anahat Singh enters the semi-finals of World Junior Squash Championships. Prime Minister Narendra Modi has said that he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get the bill passed by the House at the earliest.
8: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
7: The Prime Minister said over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said the government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
8: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
7: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the 5th consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed.
9: The government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one, but due to the behavior of the Congress, the discussion has not been able to proceed. It is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. Prime Minister Narendra Modi has assured the nation that a stringent law will be brought on this matter.
7: The minister said today in the cabinet meeting decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address the paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. As the ruckus continued, the upper house was adjourned till 2 p.m. Earlier, when the Rajya Sabha began its proceedings at 11 a.m., the house paid homage to the martyrs of the Kargil War.
10: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces whose indomitable courage, steadfast determination and selfless dedication in the face of extraordinary challenges continue to inspire the nation and reaffirm our collective resolve to uphold the unity, sovereignty and integrity of the country.
7: Leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, today said the opposition will not participate in any discussion on the NEET paper leak issue until the education minister is removed from his post. Talking to reporters at Parliament premises, Mr. Gandhi said students have 3 demands, including the resignation of the education minister. Samajwadi Party MP Dimple Yadav has demanded that accountability be fixed in the NEET paper leak case. On the government's proposal to bring in a stringent law to prevent examination paper leaks, she said that support for the bill would depend on the provisions the government incorporates in it. The second round of talks between leaders of the Cockroach Janata Party, CJP, and Bharatiya Janata Party, BJP, including Union Health Minister JP Nadda and Union Minister Jitendra Singh, is currently underway at the Constitution Club in the National Capital. The meeting follows significant developments in the ongoing youth-led protests over alleged irregularities in national-level examinations. The Supreme Court today directed the Centre and the National Testing Agency, NTA, to file detailed affidavits on the progress made in implementing reforms after the NEET UG paper leak. A bench of Justice P.S. Narasimha and Justice Alok Aradhe, while hearing the NEET paper leak case, said the affidavit must explain the steps taken to institutionalize the reforms instead of relying on ad hoc measures. The bench said they would be monitoring the issue very closely and would follow it up regularly. The top court further questioned the centre what it is doing to shift completely to an online mode, after which the court has listed the matter for July the 27th. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India has expressed disappointment with the UN for ignoring the repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK. India's permanent representative Harish Parvathaneni said, while similar developments in other countries are excoriated by the United Nations, such repression and developments in Pakistan do not receive the attention they deserve. He was speaking at the Security Council open debate on strengthening the mechanisms for peaceful settlement of disputes. Responding to Islamabad raising the Kashmir issue at the Security Council debate, he accused Pakistan of systematically crushing the rights of the people.
11: The ongoing developments in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir fully expose the true nature of the Pakistani state. The world is witness to the continued suppression of basic rights, freedom of expression and association, and stifling of fundamental freedoms of Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir. These are not isolated instances, but part of a larger design by the Pakistani establishment in Pakistan-occupied Kashmir for close to 8 decades.
7: His remarks came after Pakistan once again sought to raise the Kashmir issue at the Security Council, prompting a firm rebuttal from India. President Draupadi Murmu today called for expanding economic and investment ties between India and Romania, saying the two countries have immense untapped potential for deeper commercial cooperation. Addressing the India-Romania Business Forum in Bucharest, the president said Romania's strategic location, skilled workforce and strong integration with the European Union make it a valuable partner for India and a gateway to the wider European market. President Murmu said the proposed India-European Union Free Trade Agreement will be a landmark in strengthening economic ties by promoting trade, investment and resilient supply chains.
12: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world and aims to deepening trade integration, strengthening investment flows, and building resilient and diversified supply chains.
7: Brent crude oil prices rose above $100 a barrel for the first time since May as tensions escalate in West Asia over concerns over global energy supplies. Brent crude, the global benchmark, gained more than 6% yesterday after U.S. strikes on Iran intensified and Yemen's Houthi rebels attacked oil tankers in the Red Sea, threatening a key shipping route. Income tax day is being observed across the country today, marking another milestone in India's evolving taxation system. The occasion commemorates the establishment and growth of the Income Tax Department while highlighting the country's journey towards a transparent, technology-driven and taxpayer-friendly tax administration. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra for the day. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Similar weather conditions will continue over northeast India during the next 2 days. IMD said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahi and Telangana till tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a spell of very light rain accompanied by strong surface winds for the day. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete

0: with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
5: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरण उत्सव है।
6: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
7: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी मां मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
8: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले तीन दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
9: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले छह घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां।

0: लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ों में भी आपने सुनी फिल्म मुगले आजम से ये कव्वाली। शब्द रचना शकील बदायूनी की थी और संगीत नौशाद का।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

फिल्मी कमालियाँ, यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में साहिर लुधियानवी की लिखी एक कव्वाली, जिसे संगीत दिया है रोशन ने। फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: दिल ही तो है। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों को। साहिर लुधियानवी की रचना और संगीत रोशन का था। श्रोताओं, यहाँ पर ले लेते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ में। और अब जो कव्वाली हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म हंसते जख्म से। कैफी आज़मी की रचना है और संगीत है मदन मोहन का।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

हंसते जख्म। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। कैफ़ी आज़मी की शब्द रचना और संगीत मदन मोहन का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्मी कव्वालियां। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना है और संगीत है आर डी बर्मन का।

हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म की मोहम्मद रफ़ी और साथियों की गाई इस कव्वाली के साथ ही आज का ये कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कव्वालियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न हो रहे हैं। हमारी अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा में के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास, जिसके अंतर्गत हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वाधार घर योजना और वन स्टॉप सेंटर योजना के विषय में। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY योजना के संबंध में। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग के परिवारों को लकड़ी, कोयले या उपले जैसे पारंपरिक दूषित ईंधन से मुक्ति दिलाना है, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और पर्यावरण सुधारना है। इस योजना में गरीब परिवारों की महिलाओं को जमा मुक्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला कनेक्शन, रिफिल सिलेंडर और चूल्हा भी मुफ्त मिलता है। इस योजना में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर कनेक्शन के लिए सुरक्षा राशि और फिटिंग शुल्क का खर्च सरकार उठाती है। इस योजना के लाभार्थियों को प्रति रिफिल निर्धारित सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता है, आवेदक केवल महिला होनी चाहिए, परिवार BPL श्रेणी, SC ST अंत्योदय या अन्य गरीब वर्ग से संबंधित होना चाहिए, आवेदक के घर में पहले से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस योजना में पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड या पारिवारिक स्वघोषणा पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो है। आइए अब आपको जानकारी दे दें स्वाधार घर योजना के विषय में। यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं के पुनर्वास और सहायता के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कठिन और विपरीत परिस्थितियों में जूझ रही महिलाओं को संस्थागत सहायता जैसे आश्रय, भोजन और कपड़े और मानसिक और कानूनी सहायता प्रदान करके समाज में उन्हें पुनः स्थापित और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना की पात्र महिलाएं हैं घरेलू हिंसा, शोषण या पारिवारिक कलह के कारण बेघर हुई महिलाएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर या अनाथ हुई महिलाएं, जेल से रिहा हुई ऐसी महिला कैदी जिनका कोई सामाजिक पारिवारिक सहारा ना हो, वेश्यावृत्ति या मानव तस्करी के चंगुल से बचाई गई महिलाएं और पति द्वारा छोड़ी गई या बेसहारा विधवा महिलाएं। स्वाधार योजना में दी जाने वाली सुविधाएं हैं आवास की निशुल्क व्यवस्था, निशुल्क भोजन व वस्त्र यानी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, संकट से उबारने हेतु कानूनी अधिकार दिलाने के लिए काउंसलिंग और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग। इस योजना में संकटग्रस्त महिलाएं आमतौर पर अधिकतम 3 वर्ष तक स्वाधार गृह में रह सकती हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 1 वर्ष और 55 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के लिए यह सीमा 5 वर्ष तक हो सकती है। कार्यक्रम में अब आइए जानते हैं वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना के संबंध में। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2015 से शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता प्रदान करना है। यह हिंसा पीड़ित महिलाओं को
आपातकालीन सहायता, चिकित्सा सहायता, FIR दर्ज कराने में मदद, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अधिकतम 5 दिन का अस्थायी आश्रय प्रदान करती है। किसी भी उम्र, जाति, वर्ग, शिक्षा या वैवाहिक स्थिति की महिला, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका सहित जो कि घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न या अन्य किसी अपराध से पीड़ित हैं, इसकी मदद ले सकती हैं। यह सुविधा 24/7 उपलब्ध है और इसे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 से जोड़ा गया है। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं गीत।

इस गीत के साथ ही मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात

954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:10 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: को घर से बाहर निकलने के लिए, तो बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूँ क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
0: जी।
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोल कीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोल कीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
0: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग

0: ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था, तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है जी।
1: अच्छा
0: फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरी फिजिकल टेस्ट हुए थे, क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट, तो वहां पे मैं सेकंड आई थी। गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: डिसिप्लिन
0: गवर्नमेंट
1: होती है ना।
0: जी डिसिप्लिन्ड, एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया वो माइंड में था, तो काफी रोती थी। हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर
1: क्या
0: से।
1: उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी
1: अच्छा, तो
0: जी।
1: 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया
0: टू
1: हैंडल
0: मच, टू
1: करना।
0: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस
1: अच्छा,
0: वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूं और घर वापस चली जाऊं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है,
1: ओहो
0: आप लेके जाओ।
1: अच्छा,
0: तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापिस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी, उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। बोल, तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे 2 गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में 2 ही किट आती है, या तो आपको एक
1: लेकिन
0: साल
1: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना किट
0: जी।
1: के?
0: मेरे पापा जॉब करते थे बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी, और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज
1: और
0: किया
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी। तो वहाँ जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है, तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है
1: लेकिन
0: मुझे।
1: आपने जो शुरुआत की जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद
0: जी
1: नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी मतलब, है ना?
0: जी
1: उस पर आपने एशिया कप खेला, ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सभ्यता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया, तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा।
1: अच्छा?
0: मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है बट वो चीज सच हुई, एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या

0: महसूस कर रही थी।
1: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे। मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था, बट वो एक इनविटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बींग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई, अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है। तो मैं डायरी लिखती नॉर्मली, तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है, और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड की और कोचेस से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। अच्छा। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करेंगे। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था, और लास्ट क्वार्टर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद हम
2: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
1: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले, और मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
2: आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
1: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बीइंग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफ कोर्स कैप्टन इज
2: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
1: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद है, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है,
2: ज्यादा पसंद करती है। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती है, उनके बाहर निकलकर जो सविता

0: सामने आती है वो सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है।
1: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है। बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
0: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप कि प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था करना होता था तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
1: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे। मेरा गला भराया था, मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी और मैंने कहा नहीं 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर छत पे रख दो, मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहां पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
0: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
1: जी
0: लगी। ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
1: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
0: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
1: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहां। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
0: आपके मम्मा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हो। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती हैं आप?
1: पब्लिक स्पीकिंग।
0: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
1: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, यीवी जेनसन।
0: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
1: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
0: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
1: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
0: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
1: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
0: अच्छा
1: जी,
0: मुझे खाने को ना करना आसान है।
1: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
0: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
1: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
0: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
1: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
0: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर की हटकर तो क्या होगी?
1: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
0: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ

0: हार्ड वर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं, उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पे उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज की खूबसूरत शाम के साथ एक बार फिर आपसे जुड़ चुकी हूँ मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त शुमायला अब्बासी।
1: दोस्तों, शुमायला के साथ प्रोग्राम में मौजूद हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर मदीहा रहमान।
0: तो दोस्तों, आगाज हो चुका है आज के युववाणी प्रोग्राम का, और प्रोग्राम में है सेगमेंट्स का पिटारा, जिसमें शामिल है बूझो तो जाने। कुछ खास है आज यंग अचीवर्स, जिसमें आज आप सुनेंगे वंशिका सोती से हिमांशु अग्रवाल की बातचीत।
1: दोस्तों, और इतना ही नहीं, आज आप सुनेंगे लव स्टोरी का एपिसोड 5th, जिसका टाइटल है अनकहा रिश्ता, और साथ ही शामिल होंगे बूस्टर्स।
0: दोस्तों चलिए आपको बता देते हैं आज का बूझो तो जाने का सवाल। सवाल है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी?
1: जिसका जवाब आपको देना होगा हमारे फेसबुक अकाउंट AIR नजबात पर। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में आगे, हमारे सेगमेंट यंग अचीवर्स के साथ, जिसमें
0: मदीहा, मैं बताती हूँ हमारे लिसनर्स
1: बता
0: को,
1: दो बता दो,
0: जिसमें आज आप सुनेंगे स्टूडियो में आमंत्रित युवा हिमांशु अग्रवाल से वंशिका सोती की विशेष उपलब्धियों पर बातचीत।
2: छोटी उम्र, बड़ी सोच और असीमित मेहनत, यही तो है हमारे यंग अचीवर्स की पहचान। हाजिर हूं मैं लेकर आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट यंग अचीवर्स। जी हाँ, मैं आपकी अपनी साथी और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती। दोस्तों, हर बड़ा सपना पहले एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और आज हमारे बीच ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने कदमों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। तो बिना देरी किए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे आज के यंग अचीवर से। तो सबसे पहले हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे।
3: नमस्ते मैम, मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है।
2: हिमांशु जी, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: जी मैं नजीबाबाद शहर, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में लोकेटेड रहता है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: और आप हमारे यंग अचीवर हैं हम तो जानते हैं, लेकिन आपने क्या अचीव किया है हम पहले अपने दोस्तों को बताते हैं। तो हम नहीं, आप अपने मुंह से ये बात अगर हमारे दोस्तों को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे लिसनर्स को सुन के। तो प्लीज शेयर कीजिए।
3: मैम मैंने नीट 2024 एग्जाम को निकाला है और मैं LLRM मेरठ में अपना एडमिशन लिया है।
2: सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने नीट एग्जाम क्लियर किया, जो कि एक बहुत टफ एग्जाम माना जाता है हमारे उसमें।
3: थैंक यू मैम।
2: और हिमांशु, हम यही चाहेंगे कि आप इस फील्ड में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अभी आपने एक ऊंचाई को हासिल किया है, आप इसी तरह आगे भी अचीव करते जाएं। और आप हमारे यंग अचीवर्स में आए हैं, तो आज हम आपसे काफी सारी बातें करने वाले हैं, ताकि हमारे जो युवा साथी आपको सुन रहे हैं वो भी आपसे कुछ अचीव कर सकें, आपकी बातों को ग्रहण कर सकें, और वो भी शायद अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकें, आगे बढ़ सकें, आपसे मोटिवेट हो सकें। तो शुरुआत करते हैं आपकी स्टडीज से, आपके फोकस पॉइंट जहाँ पे है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप शुरू से ही, मतलब जैसे देखते हैं कि तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं, एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज, हम जानना चाहेंगे आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं?
3: जी मैम, मैं शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में।
2: अच्छा।
3: जैसे मैं फर्स्ट सेकंड तक तो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज बच्चों में गिनती कर सकते हो आप मेरी।
2: ओके।
3: उसके बाद थर्ड क्लास से मैं थोड़ा सा पढ़ने में मन लगने लगा था मेरा, क्योंकि मैं सबसे पहली बार टॉप 10 में आया था क्लास में। तो
2: आपको वहां से मोटिवेशन मिला, ये कह सकते हैं कि जब आप टॉप 10 में आ गए, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, हम उसे बार बार उसको ये कहते रहते हैं ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, एक इस तरह का माहौल अगर हम उसके आसपास बना देते हैं तो वो खुद ब खुद उसमें फीलिंग आने लगती है, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
3: नहीं मैम, ऐसा मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि अच्छा? मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं। तो फिर अगर मेरे कभी कम भी नंबर आए हैं एग्जाम्स में, तो फिर उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि तुम नहीं कर सकता है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की है कि बेटा कोई बात नहीं है।
2: हाँ, वही चीज तो मैं वही बता रही थी कि देखिए जब फैमिली हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें सपोर्ट करती है, हमारी हेल्प करती है ना, वो मोटिवेट करती रहती है, तो हम फिर उस चीज को गेन कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं।
3: जी मैम,
2: जब आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया तो देखिए आपका खुद का भी माइंडसेट चेंज हो गया और आपने खुद टॉप 10 रैंक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे आते हैं, आपकी आगे की क्या, जो मतलब थर्ड का तो आपने बता दिया कि आप आगे फिर तो आप मतलब टॉप 10 लिस्ट में आते ही रहे होंगे, फिर आगे बढ़ती रही है लिस्ट?
3: नहीं मैम, ऐसा है कि जैसे मैं जिस स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी पढ़ते थे।
2: अच्छा, तो कौन सा स्कूल है हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे?
3: मैम सेंट मैरीज स्कूल नजीबाबाद से पढ़ा हुआ हूँ मैं।
2: ओके, आईसीएसई बोर्ड?
3: यस मैम।
2: ओके,
3: तो वहाँ पे मतलब बच्चे काफी अच्छे हैं, तो मतलब शुरू से ही काफी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था हम पे, तो फिर वो पढ़ने में काफी अच्छे थे, तो फिर आगे चल के मैं फिर से कमजोर हो गया था थोड़ा सा।
2: अच्छा, फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला?
3: हाँ जी मैम, फिर मतलब धीरे धीरे करके ऐसा ही चलता रहा। फिर मैं अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देता रहा, ज्यादा मैंने इन सब चीजों पे बातों पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे कैसे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी मन नहीं मारा।
2: हाँ,
3: कि मेरा पढ़ाई से कभी मन नहीं हटा, क्योंकि फिर मुझे इंटरेस्ट बन चुका था
2: कि पढ़ना है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक पड़ाव आता है 9th-10th का, जहाँ पे शायद हम उसके पहले या तो डिसाइड करते हैं कि हाँ शायद बोर्ड हो जाए, बोर्ड के बाद हमें ये करना ही है, या जब बोर्ड एग्जाम हो जाता है फिर तो हमारे पास होता ही है कि हमें अब तो डिसाइड करना ही है, अब तो हमारे पास टाइम बचा ही नहीं, अब तो हमें सोचना है कि हमें हमारी लाइफ को कहाँ लेके जाना है। तो आप बताइए, आपने कब सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, नीट करना है, MBBS के साइड जाना है?
3: देखिए मैम, जैसे आप जानती हैं कि 8th तक हमारी जो पढ़ाई होती है वो ज्यादातर रटन विद्या पे होती है,
2: रोट मेमोराइजेशन बेस्ड होती है।
3: तो जैसे 9th में आते हैं हम, ज्यादातर चीजें समझने वाली हो जाती हैं। तो फिर 9th में आके एक और फेज आया था मेरा, जब मुझे पढ़ाई और ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मुझे ज्यादा रटना नहीं पड़ रहा था अब और मुझे ज्यादा समझने की जरूरत थी, तो फिर मतलब मुझे पढ़ाई से और ज्यादा वो हो गया था, अटैचमेंट हो गया था। तो जैसे मैं 10th में आया, आपने बोला कि हमने डिसाइड कर लिया होता है, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया था अभी तक कि मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है।
2: अच्छा, तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, मतलब जब आपने सोचा भी नहीं था फिर भी आप इसके लिए प्रेरित हुए?
3: देखिए मैम, जो मेरे फादर हैं उनका सपना था कि उनका एक जो लड़का हो वो डॉक्टर हो, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा के सपने पे भी खड़ा उतरना था, और मेरा खुद का भी मन था कि मुझे अपने फैमिली मेंबर्स में कोई भी मेरे डॉक्टर नहीं है।
2: अच्छा,
3: तो फिर मुझे कुछ अलग करने की भी चाह थी।
2: बहुत अच्छी बात है, देखिए पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है, पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं और उनके लिए सोचना तो हमें ही पड़ेगा। तो आपने 10th के बाद उस फील्ड के बारे में आगे जाने के लिए?
3: हाँ मैम, जैसे 10th था, 10th में हमें ये बताया जाता है कि बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर मेरा जो सारा कॉन्सेंट्रेशन था वो बोर्ड पे ही था, तो मैं उस टाइम अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा था, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं था कि मुझे यही दिख रहा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है।
2: अच्छा,
3: तो उस टाइम
2: तो जो आपकी स्ट्रेटेजीज रही हैं वो आपने कब से बनानी स्टार्ट कर दी फिर, जब आपका बोर्ड हो गया? बोर्ड तक तो देखिए क्योंकि अलग स्ट्रेटेजीज लेके चले होंगे आप, नीट के लिए तो अलग ही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही और आपने कैसे उनको अपनाया, कैसे फेस किया, वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए।
3: जैसे मेरा 10th हुआ था तो कोरोना आ गया था।
2: अच्छा,
3: कोरोना की वजह से हमारा लॉकडाउन लग चुका था, तो 11th में जब मैं आया तो बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा था।
2: हाँ, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया उस टाइम।
3: तो उस टाइम लेकिन मैं

0: क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर में भी था,
1: अच्छा
0: तो दो फेजेस में हमारे पेपर हुए थे 12th के टाइम पे। तो मेरा जो फर्स्ट कंप्यूटर का पेपर था उसमें मेरा 17 नंबर का पेपर मेरी गलती की वजह से छूट गया था।
1: बहुत अच्छी बात है। तो जब आप उसके बाद आपने कोचिंग वगैरह ली या क्या किया 12th के बाद?
0: मैम 12th के बाद ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की। 12th तक मैं सिर्फ बोर्ड पे ही पूरी तरह से, अपने जो पढ़ाई का ओरिएंटेशन था वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड
1: अच्छा,
0: की तरफ ही
1: तो
0: था।
1: 12th तक आप सेल्फ स्टडी पर फोकस थे या वहां पर भी कोई आपने अदर हेल्प ली थी?
0: मैम मैं ट्यूटर से पढ़ता था,
1: अच्छा,
0: जो पर्सनल ट्यूटर्स होते हैं।
1: फिर उसके बाद फिर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली।
0: जी मैम, उसके बाद मैं आकाश देहरादून से मैंने ज्वाइन कर लिया था।
1: हमने सुना है बहुत बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कई कई घंटे पढ़ना पड़ता है नीट के लिए। आपने कितने घंटे पढ़ाई की?
0: मैम मैं सच बताऊं तो जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर हमारे दिमाग पे प्रेशर बन जाता है एक, तो फिर मैंने वो प्रेशर अपने दिमाग उसे ओवरकम करने के लिए मैंने एक चीज़ सीखी थी
1: क्या?
0: कि जब भी मैं पढ़ रहा हूँ मैं तब तक पढ़ूँ जब तक मुझे समझ में आ रहा है।
1: अच्छा,
0: जब मुझे पर समझ में आना बंद हो जाता था कि मेरा मुझे पता था कि
1: एग्जॉस्ट हो
0: मेरा
1: गए जब
0: एग्जॉस्ट
1: आप।
0: हो गया हूँ, तो फिर मैं उस टाइम अपनी किताबें बंद करता था। और जैसे मुझे एनीमे देखना पसंद है तो मैं वो देखता था। ऐसा नहीं
1: आप
0: है
1: थोड़ा सा
0: कि
1: ब्रेक लेके मतलब अपना माइंड डाइवर्ट
0: हाँ,
1: करते थे।
0: ये नहीं मैटर करता है कि आप कितने लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है कि आपने क्या पढ़ा है उस टाइम में।
1: तो सेकेंड अटेम्प्ट में अब आपका ये क्लियर हो चुका है एग्जाम,
0: हाँ
1: तो अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पे आपने कितना मार्क्स स्कोर किए
0: मैम, मेरे 678 थे
1: और तो आपकी क्या रैंक बनी?
0: मैम, मेरी ऑल इंडिया रैंक 8207 थी।
1: 8207 रैंक के साथ आपने ये वाला नीट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया
0: यस
1: है।
0: मैम।
1: बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और अब आगे का क्या प्लान है हमें और हमारे लिसनर्स को, आप वो भी शेयर की।
0: मैम आगे तो मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो
1: हाँ,
0: मुझे अलग अलग सब्जेक्ट, हमारे जैसे MBBS में होते हैं 19 सब्जेक्ट्स होते हैं,
1: अच्छा
0: तो हर एक ईयर में हर एक अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
1: अच्छा
0: तो धीरे धीरे करके आपको पता लगता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे आप MBBS में जब भी घुसोगे आपको लगेगा मुझे यही करना है। अच्छी बात है आपको सोच के चल रहे हैं कि कुछ बच्चों का चेंज नहीं होता है, लेकिन
1: हाँ
0: कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ते पढ़ते उनका पर्सपेक्टिव चेंज होता है
1: हाँ कि मुझे ये
0: मुझे,
1: नहीं करना
0: हाँ
1: है
0: कि मुझे
1: या
0: कुछ और करना
1: कुछ और
0: है।
1: करना है।
0: तो फिर मैं अभी अपने आप को एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ।
1: तो चलते चलते हम अब आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे यंग लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, युवा साथी, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने अचीव कर लिया है, लेकिन आप उनको किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे?
0: सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, बच्चा जो होता है वो डीमोटिवेट हो जाता है कभी कभी। जैसे अगर उसका 12th के बाद एकदम ही पेपर नहीं निकलता है, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है वो मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना समय लगा, ये फ़र्क पड़ता है कि आपने वो हासिल किया जो आपको करना था या नहीं। तो फिर मेरे हिसाब से कितना वक्त लगे उस पर बच्चे को चिंता नहीं करनी
1: नहीं करनी
0: चाहिए,
1: चाहिए, बस अपनी
0: अपनी
1: मेहनत
0: मेहनत
1: को।
0: पे ध्यान देना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा हिमांशु आपसे बात करके, और हमारे यंग अचीवर जिन्होंने नीट क्लियर किया है और अच्छी रैंक के साथ अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है और अपने शहर नजीबाबाद का भी। हिमांशु, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। आप स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा सेगमेंट यंग अचीवर्स, जिसमें बातचीत चल रही थी वंशिका सोती की हमारे स्टूडियो में आए हुए हमारे गेस्ट हिमांशु अग्रवाल से उनकी विशेष उपलब्धियों के बारे में।
3: और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट लव स्टोरीज की। और तो एक दो लाइंस मुझे यहाँ पर याद आ रही है मदिया, मैं
1: हाँ
3: तुम्हारे साथ
1: हाँ
3: शेयर करना चाहूंगी
1: बिल्कुल।
3: कि इश्क वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, इश्क वो नहीं जो हर किसी से हो जाए, इश्क वो है जो एक ही शख्स से उम्र भर निभ जाए।
1: वाह,
3: और दोस्तों, इसी कहानी को, ऐसी ही एक कहानी को प्रेजेंट करने के लिए हम लेके आए हैं लव स्टोरी आपके लिए, एपिसोड 5, अनकहा रिश्ता।
4: नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है अनकहा रिश्ता। दोस्तों, कल तक हम एक ऐसे अनकहे रिश्ते की बात कर रहे थे जो सिर्फ मैसेज से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ मैसेज नहीं रहा, वो किसी की रातों का सहारा बन गया था और किसी की आवाज़ किसी और की सबसे बड़ी आदत। लेकिन आज कुछ अलग हुआ था दोस्तों। आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले आरजे आर्यन को एक लिफाफा मिला बिना नाम का। आरजे आर्यन ने उसे खोला और उसमें लिखा था, आप मुझे

0: नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाएंगे। लेकिन आपकी आवाज़ ने मुझे वो दिन दिए जब मुझे खुद से लड़ने की ताकत नहीं थी। मैं हर रात टूटकर आपकी आवाज़ में खुद को जोड़ लेती थी। इस रिश्ते का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन शायद ये सबसे सच्चा रिश्ता था। आज आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ श्रोता की चिट्ठी है या किसी ऐसे इंसान की कहानी जो बहुत गहराई तक जुड़ चुकी है। और दोस्तों, ये चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि नैना की ही थी। वो सामने नहीं आई क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो सामने आ गई तो शायद ये अनकहा रिश्ता कभी अनकहा नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम मिलने से नहीं अनकहा रहने से खूबसूरत होते हैं। हर रात की तरह प्रोग्राम शुरू हुआ और आरजे आर्यन ने माइक ऑन किया और कहा, आज मुझे एक चिट्ठी मिली है दोस्तों, और जो भी ये चिट्ठी लिखकर गया है, मैं तुम्हें जानता तो नहीं और शायद कभी जान भी ना पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर जान गया हूँ कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं किसी की दुनिया का हिस्सा बन गई है। और अगर किसी की खामोशी को मैंने थोड़ी भी आवाज़ दी है तो यही मेरे काम की सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते मिलने से नहीं बस महसूस होने से बन जाते हैं, और जब वो महसूस हो जाए तो उसका नाम ज़रूरी नहीं होता। शायद इसी को तो कहा जाता है अनकहा रिश्ता। एक रिश्ता जिसका कोई नाम ही नहीं था लेकिन एहसास हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर कभी आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी आवाज़ में सुकून ढूंढ ले तो उसे खोना मत, क्योंकि कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं होते बस महसूस करने के लिए होते हैं। और ऐसी ही थी हमारी कहानी अनकहा रिश्ता।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
6: ओए संता, मुझे जरा एक बात बता।
7: हाँ हाँ पूछ।
6: तू कितने केले खा सकता है एक बारी में?
7: मैं 6 केले खा लूंगा।
6: और अगर खाली पेट दिए जाए तो?
7: हाँ हाँ खाली पेट भी मैं 6 ही खा लूंगा केले।
6: गलत जवाब दोस्तों। पहला केला खा लेने के बाद इसका पेट कहाँ से खाली होगा? इसलिए बेटा खाली पेट होने पर तुम केवल 1 ही केला खा सकते हो।
5: जी हाँ मजा आ गया।
6: दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गर्मी ना होती तो क्या होता? मदीहा तुम बताओ क्या होता?
8: तो शुमाइला ये होता कि सुबह की चाय ठंडी रहती, खाना नहीं पकता, सर्दियों में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता और बिजली बनाने के कई प्लांट भी काम नहीं कर पाते।
6: बिल्कुल ठीक। तो फिर चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज है 24 जुलाई और आज हम मनाते हैं विश्व थर्मल दिवस यानी कि नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे।
8: लेकिन शुमाइला एक सवाल है कि थर्मल का मतलब होता क्या है आखिर?

0: मदिया थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि हीट, गर्मी।
1: ओ अच्छा, जैसे जब किसी चीज में गर्मी पैदा होती है या गर्मी का यूज करके कोई काम किया जाता है तो उसे थर्मल ऊर्जा से जुड़ा हुआ बोलते हैं,
0: हाँ,
1: मतलब ऐसा
0: मान
1: कुछ।
0: सकते हैं, माना ही जाता है। बल्कि दोस्तों सोचिए, रसोई में आग जलती है, खाना बनता है, फैक्ट्रियों में मशीनें चलती है, गीजर पानी गर्म करता है, कहीं बिजली घर, कोयला, गैस, ये सब दूसरे ईंधन जलाकर बिजली बना सकते हैं, तो इन सभी में थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है।
1: दोस्तों, ये दिन थर्मल इंजीनियर्स के काम और उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है।
0: दोस्तों ये दिन 24 जुलाई को ही इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये टाइम साल के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है।
1: और तो और, इस दिन की शुरुआत जुलाई 2014 में ATS यानी कि एडवांस थर्मल सॉल्यूशन ने की, और इस दिन का मेजर पर्पस इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के नए नए इनोवेशंस को पहचानना था।
0: दोस्तों जहां थर्मल ऊर्जा फायदेमंद है, वहीं इसका सही उपयोग भी जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा कोयला और पेट्रोलियम जलाया जाए तो प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में बढ़ती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है।
1: तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि मतलब हमारे जो ये ऊर्जा बचाई जा सके। तो हम कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा योगदान कर सकते हैं, और वो छोटे कदम कुछ ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करना, सोलर एनर्जी ज्यादा यूज करना, और बिना जरूरत के बिजली या फिर गैस का ना यूज करना।
0: तो दोस्तों ये तो थी जानकारी थर्मल इंजीनियर्स डे के बारे में। अब चलिए आपको लेके चलते हैं म्यूजिक की दुनिया की ओर और सुनवाते हैं ये गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: अरे यार देख, उसने मेरी फिर से बुराई करी है।
3: फिर तो उससे बात करी क्यों रहा है?
2: अरे क्या करूँ यार, बात तो करनी पड़ती है।
3: भाई कहते हैं जहाँ एक बार धोखा मिल जाए वहाँ दोबारा जाओ ही मत।
2: क्या करे यार, अब ससुराल तो जाना ही पड़ता है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: तो दोस्तों, वक्त आ चला है अब आपके दिए हुए जवाब का। जी हाँ, कौन से हमारे लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, जिन्होंने हमें सही जवाब पहुंचाए हैं। हमारा सेगमेंट बूझो तो जाने के अंतर्गत आपसे सवाल था, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी, जिसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं कौन से हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने सही जवाब हम तक पहुंचाया है।
3: तो हमारे लिसनर्स हैं बीपी गौतम, सदाशिव थौराज, देवशंकर तामूरिया, मोहम्मद सईद अब्बासी, बी कमाल, शाहरुन नूर अंसारी, रामकुमार रेवार, दीपेश वर्मा, खिलाश फुलमानी, फागुराम यादव, उत्तरा दिवाकर, विनोद बरासा, आसिफ चौधरी, शाहजी भोटके, मोहम्मद यासीन अंजन, नंद कुमार ठाकुर, उत्तम कुमार भगत, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद जाहिद अली, पुंजाजी नावकर, संजय ढींगिया, राधेश्याम पांडे, दिग्दर्शन गौर, आकाश रस्तोगी, उत्तम कुमार गौर, सुदर्शन शाह, मिसबा शमसी, मुकेश कश्यप, अनिल विनोचार, जॉन डी कैस्ट्रो, राम शरण, जाकिर मंसूरी, ताज अंसारी, रविंद्र दास, लाल मोहम्मद अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, हीरामणि वर्मा, नदीम बाकी, राघव बघेल, राजेश वर्मा।
2: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी, अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, नजीबाबाद, पिन कोड 2467663। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद तो हमें यही है कि अब तक आप कर चुके होंगे। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही हमारे पुराने प्लेस, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं शुमाइला और मेरे साथ है
3: मदीहा रहमान।
2: नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अपने श्रोताओं को बता दें, आज शाम 7:32 पर आपको सुनवाएंगे रूपक कितने हसास थे अश्क। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन
1: और आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम की राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: और हिमांशु भैया क्या हो रहा है?
0: बस भैया सब ठीक ठाक है। और बताओ आपके कैसे हाल चाल हैं
1: भाई मुझे तो तुम थोड़े भिग्गे से नजर आ रहे हो। बारिश हुई क्या आपके यहाँ थोड़ी
0: भैया?
1: बहुत?
0: भाई थोड़ी थोड़ी क्या, हमारी तरफ को तो भैया एक तेज झल्लासा पड़ गया था।
1: अच्छा, भाई
0: हाँ
1: देखो ज्यादातर जगह भाई सुनने में आ रहा है कि भाई बारिश कम हो रही है, और इस टाइम भैया बारिश की जरूरत है, क्यों
0: बिल्कुल
1: कह दें भैया जाड़ों में जाड़ा ना होने का, गर्मी हो गर्मी ना होने की, बरसात हो बरसात ना होने की, तो क्या होगा? तो
0: बिल्कुल
1: भाई बरसात का मौसम चल गया, बारिश भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया, हमारे लिए भी जरूरी है, हमारी फसलों के लिए भी जरूरी।
1: बिल्कुल। देखो भाई बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमारे किसान भाई अभी भी धान की फसल लगाने से रह गए, क्योंकि भाई देखो वहां पर जो है वो अभी भी भैया बारिश की फसल पर आधारित हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो देखो वहाँ पानी की जहाँ सुविधा नहीं है, जहाँ नहरें नहीं हैं, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, तो भैया उनके लिए दिक्कत तो है ही है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: ज़्यादा बारिश जब होगा तो भैया उनके खेत डूबने में तैयार हो जाएं, और जब नहीं होती तो मुंजी नहीं लगती।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी समस्या आज भी है जगह जगह।
0: बिल्कुल। तो इस समय हमारे किसान भाई अपनी जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं भैया, है ना, यानी कि जो जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं देर से लगा रहे हैं, तो भैया उसकी रोपाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: देखो वैसे तो अब जो है टाइम निकल सा ही लिया,
0: हाँ
1: तो लेकिन जो भी हमारे किसान भाई रह रहे हैं अभी मुंजी लगाने से, धान
0: बिल्कुल
1: लगाने से, तो भैया वो तुरंत लगा दें, ठीक है? तो ये तो भाई कुछ हुई मुंजी धान की बात। अब हम आज एक अहम बात पर बात करेंगे, है ना?
0: अच्छा भैया,
1: हाँ
0: भैया वो क्या है
1: भाई
0: ये भी
1: वो
0: बता
1: है
0: दो।
1: देखो जो हमारी बेल वाली फसलें होती हैं,
0: हाँ हाँ
1: जैसे भैया खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, आपके ये हो गए लौकी हो गई, और तोरी हो गई, टिंडा हो गया, इनकी देखभाल की बहुत जरूरत है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: भैया इन दिनों में सब्जी इनसे ही
0: बिल्कुल
1: मिले।
0: भैया, देखो यो समय ऐसा हो रहा है
1: हाँ
0: कि इन दिनों में भैया जो बेल वाली फसलें हैं ना
1: हाँ
0: भैया, उसमें हमें जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती।
1: भाई बिल्कुल। अगर आप बाजार में जाओ सब्जी को देखने, तो इनके अलावा सब्जी ना दिखाई देने
0: ना
1: की,
0: ना भैया ना।
1: थोड़ी बहुत तो भिंडी दिखाई दे जाएंगे आपको।
0: हाँ
1: हाँ, और भैया बाकी तो एक दो दिखाई देंगे नहीं, ज्यादातर ये वही है।
0: बिल्कुल, क्योंकि भैया देखो ये बरसात का टाइम चल रहा है, और इस समय भैया जो तेज बढ़वार वाली फसल है भैया, और चाहे भैया जो उन पे फूल आते हैं भैया, वो तेजी से बढ़ते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना। और जैसे कि आप बता रहे थे बरसात हो रही कम, तो कहीं तो भैया पानी ज्यादा भर जा और कहीं कम भर है,
1: बिल्कुल।
0: तो इस समय भैया हमें अपने रोगों से और कीटों से भैया अपनी फसल को बचा के रखना।
1: देखो रोग और कीट से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि बेल वाली फसल में ज्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया तुम।
1: ज्यादा जल भराव हो गया तो भैया पूरी बेल सूख जाएगी और एक भी चीज हाथ नहीं लगने की।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे पहले तो भैया यो ध्यान देना हमें कि भैया जल निकास की व्यवस्था करें।
0: बिल्कुल
1: और भैया क्या क्या ध्यान रखें बताओ आप जरा।
0: भैया, दूसरी बात हमें जो ध्यान देनी है कि भैया निराई गुड़ाई अपनी फसल की, यानी कि जो बेल वाली फसल है, उसकी करते रहे मैं समय समय
1: बिल्कुल
0: पर,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और 20 या 15 20 दिन के अंतर पर भैया उसकी निराई गुड़ाई हमेशा करते रहना चाहिए।
1: भाई आजकल होता जो है कि घास या जो खरपतवार हैं ज्यादा उग जाए, क्योंकि बूंद बूंद करके बारिश गिर रहा है, तो ऐसे में मुफीद रहे बारिश उनके लिए। तो भैया ज्यादा खरपतवार होने की वजह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए, और भैया हम तो यूँ कह रहे हैं कि यो निराई गुड़ाई जो है आदमी खुरपी से अपने आप ही करे,
0: बिल्कुल
1: यो नहीं कि उसका भी छिड़काव कर
0: ना
1: दिया।
0: ना ना
1: तो भैया कभी भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि देखिए जो सब्जी होती है इन पर छिड़काव करना कई बार हानिकारक हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जितना भी हो सके खुरपी का इस्तेमाल करो और भैया निराई गुड़ाई कर दो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। और भैया इस समय जो बेल वाली फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो उनका प्रबंधन हमारे किसान भाइयों को ठीक तरीके से करना।
1: बिल्कुल।
0: जैसे भैया जो हमारी बेल वाली फसल है उसके लिए मचान, या भैया जो जाल है उस पर चढ़ाने के लिए भैया पर्याप्त व्यवस्था करनी है हमें,
1: हाँ
0: है ना। और यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारी बेल है वो जमीन पर अगर फैल रही हो, तो उसको भैया ठीक तरह से हम प्रबंधित कर दें।
1: बिल्कुल। देखो भैया ऐसा बताया जा है, कहने का मतलब यो है कि बेल वाली सब्जी जितनी हो, चाहे भैया तोरी हो आपकी, चाहे आपकी लौकी हो, चाहे करेला हो या और कोई हो, ये अगर लटकेंगे नीचे को तो इनकी बढ़वार भी अच्छी होगी
0: बिल्कुल
1: और भैया इनमें टेस्ट भी बढ़िया होगा। तो
0: हाँ
1: कुल मिलाकर यो है कि हमें स्वाद की दृष्टि से देखना है, हमें भैया सुरक्षा की दृष्टि से देखना है, या भैया हमें और अच्छी कई दृष्टि से देखना है, तो हमें मचान या जाल बनाना बहुत जरूरी है। और भैया चाहिए यो कि हम जैसी जरा सा रवासा नीचे को निक अब उसे फौरन लटका दें,
0: बिल्कुल
1: वो कहीं भी टिकना नहीं चाहिए जाल पर या दूसरी जगह पर, तो भैया और बढ़िया फसल होगी, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि भैया देखो अगर बेल वाली फसल आप बता रहे हो कि मचान हम सहारा दे देते हैं, तो भैया उससे ये होता है हमारा जो फल है या सब्जी है भैया वो जमीन के संपर्क में नहीं आता, तो उससे भैया जो फल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है
1: बिल्कुल।
0: और बाजार में उसका मूल्य भी अच्छा मिलता है।
1: और एक बात का और ख्याल करना चाहिए भैया, आजकल हमारे सारे गांव में ये समस्या देखने को आ रही है कि भैया जो इस तरह के जानवर हैं जैसे बंदर है और या भैया और ये पशु हैं हमारे जो जंगल में जो है घूमते रहते हैं,
0: हाँ।
1: इनसे भी भैया सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो भैया उसका सबसे बढ़िया उपाय तो निगरानी करना।
0: बिल्कुल, निगरानी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया उसी के आधार पर हमारी जो फसल में कोई रोग लग गया है या भैया कीड़ा लग गया है उसकी पहचान करेंगे और उसके बाद भैया उसका निवारण करेंगे।
1: तो भाई देखो, बेल वाली फसलों के बारे में तो काफी बात हो गई, हमारे किसान भाई कहेंगे भाई एक ही चीज का पीछा डाल दिया तो भैया अब क्या कर रहे हो आप?
0: भैया देखो, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए जो कार्यक्रम में लेकर आए हैं भैया आज, वो है चिट्ठी पत्री कार्यक्रम।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि भैया चौथा शुक्रवार है और किसान भाइयों की खेती व पशुपालन से संबंधित समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित भैया ये कार्यक्रम
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो भैया जो किसान भाई अपने पत्र भेजने से रह गए, तो उनके लिए एक खुशखबरी यो है कि भैया वो हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकें।
1: बिल्कुल
0: तो व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए भैया नंबर बता दो आप किसान भाइयों को।
1: भाई देखो, व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 9457-07-82-88।
0: ठीक है
1: तो इस
0: भैया।
1: नंबर पर भैया हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भाई अब जो है कहो तो सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
0: बिल्कुल भैया।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो भैया स्वागत है हमारे किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम कृषि जगत में।
3: बिल्कुल।
2: और भैया देखो, जैसा हमारे भैया हिमांशु रंजन ने बताया था कि आज भैया माह का चौथा शुक्रवार है, और भैया चौथे शुक्रवार को हम भैया आपके जो खत आप लिख के भेजते हैं उनके खतों के जवाब देने का दिन है
3: जी,
2: चिट्ठी पत्री।
3: बिल्कुल।
2: तो आइए शुरू करते हैं भैया आज का चिट्ठी पत्री।
3: ठीक है भैया।
2: तो भैया हिमांशु रंजन, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, तो एक एक करके पढ़ने शुरू कर दो भैया।
3: बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो देखो हमारे पास जो भैया ये पत्र है, पहले तो भैया हम इसे पढ़ लेते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और ये पत्र हमें मिला है ग्राम मुंडाखेड़ी, पोस्ट कोला सागर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर से।
2: बिल्कुल।
3: और लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं सीताराम, बबलू, महेंद्र सिंह, परवेन सिंह और उनके परिवार के समस्त सदस्य।
2: बिल्कुल।
3: तो

0: सबसे पहले भैया ये हमें राम राम लिख रहे हैं।
1: राम राम भैया, राम राम।
0: और भैया इनका जो प्रश्न है वो गन्ने से संबंधित है, और भैया लिख रहे हैं
1: हाँ
0: कि ऐसा लग रहा है कि हमारे गन्ने के खेत में पोका बोइंग रोग लग रहा है, कृपया इसकी पहचान और इसका नियंत्रण बताइए।
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल हमारे इन किसान भाइयों ने किया है। और भाई देखो, जहाँ तक हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं,
0: जी
1: तो यो भैया गन्ने की बेल्ट कहलाती है, और बहुत सारे किसान भाई भैया गन्ना बोते हैं। अब जैसे बात इन्होंने कही है कि पोका बोइंग रोग लग रहा है, तो भैया ये रोग और एक जल सड़न रोग, ये एक दूसरे के रिश्तेदार समझो।
0: बिल्कुल।
1: होता ये है, जल सड़न में तो भैया जड़ गल जाती है, सड़ जाती है, और जो पोका बोइंग होता है इसमें ऊपरी हिस्सा जो है वो सड़ जाता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो भैया इनकी पहचान तो ये है कि ऊपरी भाग जो है वो सड़ने लगता है, और ऊपर के हिस्से में जो है चाकू से काट दिया हो, कट जैसे निशान लगते हैं। तो अगर ये दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हों तो भैया समझ लो कि आपके यहाँ पोका बोइंग आ गया। और भाई देखो, हम तो ये कहेंगे कि आपके खेत में जो आवई ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया ये दोनों जो हैं बड़े खतरनाक रोग हैं, जल सड़न और भैया पोका बोइंग।
0: जी
1: तो अब बात यह है कि भाई अगर आ गया तो क्या करें। तो भैया देखो, इसकी दवाई है भैया बहुत अच्छी, इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है।
0: जी
1: तो हमारे किसान भाई पहली बात तो घबरा में ना, और भाई कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब 63%, भैया इनका यो नापा है दोनों का, है ना।
0: जी
1: शुरुआती बचाव के लिए जो है 500 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें,
0: बिल्कुल भैया।
1: ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा भैया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 50% WP रोग ज़्यादा होने पर 500 ग्राम से 1 किलोग्राम मात्रा को 200 से 300 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो भैया इससे बचा जा सकता है।
0: ठीक है भैया।
1: हमारे किसान भाई बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, छिड़काव में सावधानी रखें कि दवा का असर बारिश बचाने से के लिए जो है घोल में सिलिकॉन आधारित जो है स्टिकर या शैम्पू उसमें जरूर मिला लें,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कई बार ये भैया रोगग्रस्त हिस्से जो होते हैं
0: हाँ
1: उन्हें आप जो है हटा दें। जैसे जिस गन्ने में भैया रोग दिखाई दे रहा है, तो ऊपरी भाग को जो है कट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उस गन्ने को भैया खेत से बाहर निकाल दें। और दूसरी बात यह है कि जब अगले साल आप गन्ना बोएं, तो इस खेत में से आपको बिल्कुल नहीं बोना है
0: बिल्कुल।
1: भैया। बात यह है कि जब हम इस रोग से ग्रसित बीज का इस्तेमाल करते हैं, तो अगले साल आने की संभावना रहती है,
0: बिल्कुल।
1: न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हम आगे को इसका इस्तेमाल ही ना करने के, तो भैया और दूसरे खेत होंगे आपके, वहां से बोलो, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो भाई
0: बिल्कुल
1: हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को जो है अपनी बात का जवाब मिल गया होगा,
0: बिल्कुल।
1: और भाई ऐसे आप खत लिखते रहो, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: और भैया
0: बिल्कुल
1: एक और खत आपके पास है।
0: बिल्कुल भैया। ये पत्र हमें मिला है ग्राम सिजोली पोस्ट हरगनपुर जिला बिजनौर से,
1: जी
0: और भेजने वाले हमारे जो किसान भाई हैं वो हैं तेजवीर सिंह, ब्रजवीर सिंह और इनके परिवार के समस्त सदस्य हैं।
1: जी
0: भैया ये भी हमें राम राम लिखते हैं और ये आगे लिख रहे हैं, इन्हें कृषिगत कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमें लगा कि भाई हमारा कार्यक्रम सफल हो
0: बिल्कुल
1: गया।
0: बिल्कुल। और भैया इनकी जो समस्या है वो पशुओं से संबंधित है, तो भैया ये लिख रहे हैं कि हम इस समय अपने पशु में कौन कौन सी बीमारी का टीकाकरण करा सकते हैं, कृपया हमें बताइए।
1: देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमारे जो सजग और जो भैया बढ़िया श्रोता होते हैं या
0: जी
1: बढ़िया किसान होते हैं, वो भैया इस बात का ध्यान नहीं करते कि भैया रोग आवागा जब देखी जाएगी, वे इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे पशुओं को कोई बीमारी लगे ही ना,
0: बिल्कुल।
1: हमारे पशु स्वस्थ रहें। और भैया अच्छे पशुपालक की पहचान होती है, तो भैया आप अच्छे पशुपालक हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल।
1: अब बात जहाँ तक आपने टीकाकरण की कही है, तो भैया इस समय की अगर बात करें, तो बहुत सारे जो भैया संक्रामक बीमारियां इस समय लगती हैं, जैसे भैया खुरपका मुंहपका है और गलघोटू है, ये दोनों ही बीमारी ऐसी हैं जो भैया जानलेवा हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इनमें भैया विशेष रूप से गलघोटू रोग जो है इन दिनों में काफ़ी फैलता है, इससे बचाव करना बहुत ही जरूरी है। देखो, इसकी पहचान यह है कि पशु का जो है गले में सूजन आ जाती है, बुखार भैया 160 डिग्री तक पहुंच जाता है।
0: जी।
1: तो इससे बचने का तरीका यही है कि भैया पशुओं का टीकाकरण करा दो।
0: बिल्कुल सही
1: अब
0: कह रहे हो।
1: प्रश्न ये आया कि टीकाकरण करामा कब, तो भैया देखिए दो टाइम होते हैं, एक तो जब बरसात खत्म होने को हो और एक बरसात शुरू होने को हो।
0: अच्छा
1: तो लगभग कोशिश ये करो कि 6 महीने के अंतराल में करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है,
0: बिल्कुल।
1: तो उस समय आप टीकाकरण करा दें। तो भैया अपने जो निकट के कुशल पशु चिकित्सक हो उन्हें बुला लिया जाए और टीकाकरण करा लें।
0: बिल्कुल।
1: एक बात का ध्यान रखना चाहिए मांझी भैया,
0: वो क्या भैया?
1: वो ये है कि भैया जब पशु का टीकाकरण कराओ तो केवल अपने अपने यहाँ करा दो, इससे कहा बात नहीं बनने की। अपने गांव के जो पशु पालक हैं, अपने जो पाल रहे पशु,
0: जी
1: उन कई सारों से बात करो, वे और से बात करेंगे। अगर हो जाओ तो पूरे गांव का एक साथ करो,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे फायदा ये होगा। देखिए ये बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, तो जब पशु जो है टीकाकरण हो जाएगा और फिर वो जब गोबर करेगा या मूत्र करेगा तो उसके जो एंटी बैक्टीरिया जो तत्व हैं वो निकलेंगे और एक साथ वातावरण में जाएंगे, तो वातावरण में भी जितने बैक्टीरिया होंगे सारे मर जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: यानी कि आपके गांव में फिर ये दो रोग नहीं आने के, बाकी कुछ भी हो जाए।
0: बिल्कुल सही कह
1: तो
0: रहे हो,
1: भैया हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को खत्म करना है तो जड़ से करो,
0: बिल्कुल
1: तो हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई ऐसे ही करेंगे। और भाई खत आपने लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बिल्कुल
1: भविष्य में उम्मीद करेंगे कि आप इसी प्रकार से जो है हमें खत लिखते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कहो तो भैया एक पत्र और ले लें।
1: अरे बिल्कुल साहब,
0: बिल्कुल, तो भैया ये पत्र हमें मिला है ग्राम गधरोना पोस्ट लंडोरा जिला हरिद्वार से, और लिखने वाले भैया हमारे नियमित श्रोता हैं मदन गिरी जी और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
1: हाँ
0: और भैया ये देखो, ये लिखते हैं कि इन्होंने धान की फसल लगा रखी है और ये जानना चाहते हैं कि इस समय कौन कौन से ऐसे सामयिक कार्य किए जा सकते हैं अपनी धान की फसल में, जिससे हमें अपनी धान की फसल को अच्छे से हम घर ले जा सकें।
1: बिल्कुल, देखो भाई धान की बात यो है, यो धान का टाइम चल गया, बहुत बढ़िया। तो दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा।
0: जी
1: देखो अगर आपको रोपाई करे हुए 10 से 15 दिन हुए, हालांकि जो पीछे बारिश हुई थी उसके बाद करी होगी आपने, तो सबसे पहला काम आपका यो है कि भाई आप एक क्या लें, यूकेलिप्टस का एक डंडा सा ले लें,
0: जी
1: मतलब बल्ली सी छोटी हल्की सी, और या बांस ले लें एक,
0: बिल्कुल
1: और उस पर दोनों तरफ बांध लें काठी लंबी सी,
0: अच्छा
1: और उसे घुमा दें खेत में। यानी कि ऐसे घुमाना है कि पहले तो खेत में पानी भरो
0: अच्छा
1: और पूरे पेड़ को डुबो दो, और भैया पूरे जब है इधर से उधर जाके एक किसान या दो किसान भाई कर लो या बीच में जगह छोड़ के उसमें निकल जाओ, आपका जो पौधा है वो पूरा पानी में डूब जाना चाहिए।
0: ठीक
1: तो उससे होगा यो कि भाई जो पौधे की जड़ होती है वो इसमें गांठ सी होती है,
0: अच्छा
1: एक तो जब लिटाओगे तो गांठ सी फूट जाएगी, तो गांठ फूटने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके कल्ले बढ़िया फूटेंगे,
0: बिल्कुल
1: बहुत बढ़िया करके कल्ले फूटेंगे, तो यो काम आपका हो गया। दूसरी बात यह है कि जो धान की ऊपर का हिस्सा होता है उस पर भैया हानिकारक कीट के अंडे बैठे रहे हैं,
0: जी
1: हानिकारक कीट जितने भी हो उनके अंडे अपने ऊपर ही रहे, तो वे सारे अंडे पानी में डूब जाएंगे
0: बिल्कुल
1: और बस आगे वो कीड़ा बनने का ही नहीं,
0: ठीक
1: तो फ्री में आपका कीट नियंत्रण हो गया, दो काम हो गए। और तीसरी बात यह है कि भैया आपको सही समय हो गया है तो यूरिया की जो है टॉप ड्रेसिंग आप कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और भाई अगर आपके खेत में कोई खरपतवार हो रही है तो उस खरपतवार का नियंत्रण करो, और अगर आपने भैया बुआई से ठीक पहले जिंक सल्फेट की मात्रा खेत में नहीं डाली थी तो भैया वो मात्रा देने का भी अब समय आ गया है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो।
1: तो ये कुछ कार्य हैं जो भैया इन दिनों में किए जा सकते हैं, तो हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो है बढ़िया से काम करेंगे
0: हाँ
1: और भैया अपने खेतों में जो है ये समय कार्य करके फायदा उठावेंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो
1: हाँ
0: भैया,
1: और मैं कह रहा हूं आप भी कुछ फायदा उठा लो।
0: बिल्कुल भैया। फायदे की बात तो भैया देखो यो है कि
1: हाँ
0: मारा तो जी भैया कुछ गीत संगीत का कर रहा।
1: अच्छा, तो भाई जब जी कर रहे हो तो फिर शुरू करो,
0: ठीक है
1: और
0: भैया,
1: क्या सुनवा रहे हो आज?
0: तो भैया आज किसान भाइयों को भीम सिंह की गाई ये प्यारी सी भैया रागनी सुना रहे हैं।
1: ठीक है भैया।

0: तो किसान भाइयों ने भैया अभी भीम सिंह और साथियों की आवाज़ में ये प्यारी सी रागनी सुनी, और भैया हिमांशु हमें तो उम्मीद है कि मनोरंजन बढ़िया हुआ होगा किसान भाइयों का।
1: बिल्कुल, किसान भाइयों का मनोरंजन हो गया होगा।
0: हाँ
1: और भैया अब आप कहो तो भैया चिट्ठियों का सिलसिला भैया जारी रखें।
0: बिल्कुल भैया, एक खत और दिखाई दे रहा है मुझे,
1: बिल्कुल भैया,
0: किस
1: देखो
0: भैया का बताओ भैया।
1: बिल्कुल, ये पत्र हमें मिला है ग्राम लालूवाला धनोरा, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर से,
0: जी
1: और भेजने वाले हमारे भाई हैं रामचरण सिंह और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
0: बिल्कुल
1: और ये भी भैया हमें राम राम लिख रहे हैं।
0: जी
1: और इन्होंने भैया बाग से संबंधित समस्या अपनी बताई है, यानी कि बागों में इस समय क्या क्या कार्य ये कर सकते हैं जिससे ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें।
0: बिल्कुल। तो भैया रामचरण जी, आपने ये खत लिखा, और भैया रामचरण जी
1: जी
0: आपने एक खत लिखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी
0: अब देखिए, जहाँ तक आपने बाग की बात करी है, तो अगर आप ये लिखते हैं आपने कहाँ का बाग लगाया
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: आम का बाग है, लीची का है, सेब का है, या आड़ू का है, नाशपाती का है, तो अलग अलग बात होती। लेकिन अगर हम संयुक्त रूप से सभी बागों की बात करें,
1: जी
0: तो इस समय भैया बात अगर चल रही है, तो एक तो जल निकास की बात करनी चाहिए। बाग में भैया बारिश का पानी न रुकने दें, क्योंकि बारिश का पानी जमा होने से जो है भैया जड़े जड़ों के सड़ने की दिक्कत रहती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसी उम्मीद हो जाती है कि जड़ सड़ जाती है ना। तो कोशिश ये करें कि बारिश का पानी अपने खेतों में ना रुकने दें, या जो आपका बाग है उसमें ना रुकने दें। दूसरे भैया निराई और सफाई का ध्यान रखें, घास फूस और खरपतवार को हटाते रहें, ताकि जो भैया पौधों को पूरी खुराक मिल सके।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि खरपतवार जो होती है ना, जो अभी आपने भैया उसमें मात्रा डाली होगी ना, खाद की मात्रा डाली होगी, चाहे आपने गोबरी खाद डाली हो या दूसरी हो। और दूसरे भैया कीट नियंत्रण का ध्यान रखें, क्योंकि नमी में जो है कीटों का खतरा ज़्यादा बना रहता है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर भैया उचित दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो अपने किसान भाइयों को हम यही सलाह देंगे। और दूसरे भैया देखो, अगर आम के बाग हैं और उनकी अभी भी भैया फलत है रुकी हुई, तो भैया आप जो है तोड़ लें, क्योंकि अब जो है नुकसान होने का भी भय रहता है, क्योंकि ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: कीड़े लगते हैं तो उससे जो है फल सड़ने का डर रहता है। तो ये बात ध्यान रखें। और भैया अन्य हमारे जो बागवान हैं, वो भैया अपने खेतों की देखभाल रखें, अपने बागों की देखभाल रखें, मेणबंदी का ध्यान रखें। तो इस तरह के सामायिक कार्य इस समय किए जा सकते हैं, और हमें भैया इन्होंने खत लिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल भैया। और एक पत्र और भैया हम शामिल कर रहे हैं, ये हमें प्राप्त हुआ है ग्राम धोलागढ़, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर से, और भेजने वाले हमारे भाई हैं राजेश सिंह, सोनू, मनीष, शिवानी और इनके परिवार के समस्त सदस्य। और भैया ये हमें लिखते हैं कि हमारी गन्ने की फसल वैसे तो ठीक खड़ी है, लेकिन गन्ने में कौन कौन से सामायिक कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारी गन्ने की फसल उत्तम हो जाए।
0: देखिए, गन्ने की बात जो कही है इन्होंने, बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भैया गन्ने की जो है प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है।
1: जी
0: और हमारे किसान भाई भाई अगर उसके पास 50 बीघे जमीन है, तो 49 बीघे में भैया गन्ना बोगा,
1: बिल्कुल
0: ये वाली बात रहती है। तो भैया गन्ने के बारे में भैया हमारे किसान भाई वैसे तो बहुत सजग हैं, लेकिन इन दिनों में बाकी सामायिक कार्य तो हैं ही हैं। उन्होंने मिट्टी चढ़ा दी होगी, और भैया खाद की मात्रा डाल रहे होंगे।
1: बिल्कुल
0: एक तो भैया निगरानी रखें, अगर आपके खेत में कोई रोग आ रहा है, या भैया ऐसी बीमारी आ रही है, तो रोग और बीमारी का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
0: कोई कीट लग रहा है तो उसका ध्यान रखें। तो ये तो भैया आपके खेत में जाकर देखने से पता चलेगा कि कोई कीट या बीमारी तो नहीं लग रही।
1: बिल्कुल
0: तो अगर लग रही हो तो उसका ख्याल रखें भैया, तुरंत उसका जो है निदान करें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, अगर एक आपने 1-2 दिन भी लेट कर दिया, तो बस खेत चौपट हो जाए,
1: बिल्कुल
0: पुरानी वाली खेती नहीं रही है।
1: बिल्कुल
0: दूसरे सबसे महत्वपूर्ण काम की अगर बात करें इस टाइम, तो भैया गन्ने की बंधाई का काम है।
1: बिल्कुल
0: अगर आपकी फसल जो है काफ़ी ऊंची हो गई है, और भैया आपने मिट्टी विट्टी चढ़ाकर फिट कर रखी है, तो भैया आप गन्ने की बंधाई कर दें। देखो भैया, गन्ने की बंधाई के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये हो कि गन्ना गिरता ही नहीं,
1: ठीक
0: और गन्ना आपका गिरेगा नहीं तो गन्ने का वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि गन्ना जब गिर जाता है तो खेत में चूहे लग जाते हैं, चूहे जो हैं वो काटते हैं, और गिद्दड़ है और बहुत सारे जानवर हैं जो नुकसान कर देते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: साथ में जब गन्ने की छिलाई का टाइम आता है, तो गन्ना छीलने में भी सहायता मिलती है, सीधा सच्चा गन्ना जो आराम से छिल जाता है, और टेढ़ा मेढ़ा जो गन्ना होता है वो भैया छिलने में दिक्कत करता है, और जब आप मिल पर ले जाते हैं गन्ना, तो ट्रॉली में भरने में दिक्कत आती है। तो कुल मिला के कई कारणों से गन्ने की बंधाई बहुत ज़रूरी है। इसमें भैया ध्यान ये रखें कि सूखी जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं, उनसे जो है उचित दूरी पर जो है पहली बंधाई करें, और कैंची से बंधाई जो है करनी ज़्यादा बढ़िया रहती है,
1: बिल्कुल
0: यानी कि एक जड़ इधर को कर दी, दूसरी इधर को कैंची से करने से मजबूत हो गया, तो भैया सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि एक तो हवा दूर तक पास हो जाएगी,
1: ठीक,
0: हवा पास हो गई तो भैया गन्ना फूल लगा बढ़िया। तो भैया गन्ने के फूलने की वजह से, गन्ने के छीलने की मदद से, गन्ने को ट्रॉलियों भरने की मदद से, भैया चूहों से बचाने के लिए, गिद्दड़ से बचाने के लिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचाने के लिए या करने के लिए गन्ने की मदाई बहुत ज़रूरी है। तो भैया देखो ये ऐसे ही हो गया काम इसका, जैसे भैया हम ना बहुत सारे रोगों से बचने के लिए रोज नहाते हैं या सफाई रखते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो यही काम हो गया। तो भैया हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे और भैया गन्ने की अपने की बधाई कर देंगे। आपने हमें खत लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार से प्यार आपका बना रहे।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: तो भैया देखो इनकी समस्या जो थी उसका समाधान हो गया होगा।
0: हाँ हाँ
1: और भैया आगे एक पत्र और हम ले लेते हैं। ये भैया हमें मिला है ग्राम कोटी खिदमतपुर तहसील कांट जिला अमरोहा, और भैया भेजने वाले हमारे जो भाई हैं वो हैं सुरेश चंद्र, विजयपाल सिंह, विकास कुमार, गजेंद्र कुमार और इनके परिवार के समस्त सदस्य।
0: हाँ
1: भैया ये भी हमें राम राम लिख रहे हैं।
0: राम राम जी।
1: और इनकी भैया जो समस्या है वो इस प्रकार है, इस समय तालाब से मछली बरसात के पानी के साथ बहकर बाहर ना निकले, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है?
0: जी देखिए किसान भाइयों, आप मछली पालन करते हैं पहले तो यही अच्छी बात है, ये खेती से जुड़ा हुआ ये व्यवसाय है और भैया हमारे बहुत सारे किसान भाई मछली पालन करते ही हैं।
1: ठीक,
0: तो वैसे तो देखिए जब आपने मछली पालन शुरू करा होगा उससे पहले एक छोटा सा प्रशिक्षण जरूर लिया होगा। अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया हो तो आपके भैया आसपास मछली पालन होता होगा उनसे जानकारी ली होगी। कुल मिलाकर जब भी कोई व्यवसाय करो तो उसकी जानकारी लेने के बाद ही करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों ने ऐसे करा ही होगा। अब बात यह आती है कि जो भैया बारिश का पानी है वो भर जाता है और बारिश का पानी भरने से जो मछली बाहर आ जाती हैं। देखो मछली की ये खासियत होती है, जिधर पानी बहकर जा रहे होंगे उन्हीं जाने की,
1: जी
0: जहाँ पिछली उल्टी चलती है।
1: जी जी जी
0: तो भैया हमें करना ये चाहिए जहाँ को पानी आ रहा है जा रहा है वहाँ बढ़िया मजबूत जाली लगा देनी चाहिए। तो जाली लगाने से क्या होगा, मछली बाहर नहीं निकलने की।
1: जी,
0: क्योंकि अगर मछली बाहर निकल गई तो बाहर आते ही क्या होता है, मछली सांस नहीं ले पाती और सांस नहीं लेगी तो क्या होगा, कुछ देर में उसकी मृत्यु हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरे आपके तालाब से बाहर निकल गई तो आपको मिले या ना मिले मछली तो आपका तो नुकसान हो ही गया।
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर हमें मछली को जो है बाहर निकलने से रोकना है।
1: ठीक।
0: तो उसका सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि भैया आप जाल लगा दो।
1: है
0: ना, और हमारे किसान भाई पहले ही करते हैं इस काम को।
1: बिल्कुल
0: भैया तालाब के चारों ओर जो है जाल लगा देते हैं, कुछ तो भैया लोहे का जाल लगा देते हैं, कुछ भाई प्लास्टिक का लगा देते हैं आजकल, और विशेष रूप से जहां पानी आने के लिए होता है एक नाला सा बना देते हैं,
1: ठीक,
0: उस नाले को तो बहुत बढ़िया करके बंद कर देते हैं। तो हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस प्रकार से करेंगे और भाई उनके चारादानी का ख्याल रखें।
1: बिल्कुल।
0: और भाई हमारे भाई क्या करते हैं, एक बड़े से बैग में यानी कि जो खाद का होता है ना कट्टा सा,
1: जी जी जी
0: उसमें जो है इनका चारा भर देते हैं और दो लंबे से वहां से उसे हिलाते रहते हैं।
1: अच्छा,
0: तो होता ही हो कि मछली उस चारा खाने के लिए इंगे सुंगो भागती है तो उसका व्यायाम होता रहता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो।
0: उस दृष्टिकोण से भी मछली जो है बढ़िया फूल कर मोटी हो जावे है, अच्छी या फिर उसके वजन निकलता है और हमारे किसान भाई को लाभ होता है। तो भाई हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई ऐसी करेंगे और अपने जो मछली है उनको बचावेंगे।
1: बिल्कुल भैया
0: जी।
1: और भैया एक पत्र और शामिल कर लेते हैं हम।
0: बिल्कुल
1: भैया ये पत्र हमें मिला है ग्राम आपसाबाद चमन पोस्ट

0: आए गए थे, लेकिन भैया वो एक अलग बात थी। और ये व्यावसायिक तौर पर पेड़ लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो यूकेलिप्टस के पेड़ अब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो, आजकल वैसे तो बहुत वैरायटी चल रही हैं, लेकिन हमारे किसान भाई ज़्यादा जो पसंद कर रहे हैं ना आजकल, वो क्लोन 3 और 413 को पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: तो इनकी खासियत ये है कि ये जल्दी एकदम तेज़ी से बढ़वार होती है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक एकड़ में भैया 650 से ज़्यादा पेड़ ना लगाना।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 3 मीटर रखें।
1: जी
0: तो देखो, दूरी बढ़िया होगी तो क्या होगा, पेड़ बढ़िया फूल जाएगा।
1: बिल्कुल सही।
0: और
1: कह
0: जब
1: रहे हो।
0: पेड़ फूल लगा तो क्या होगा भैया, वजन बढ़िया बढ़ेगा उसका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपने जो है यूकेलिप्टस का पेड़ अगर कोई भी किसान भाई लगा रहा है, वो वजन के लिए लगा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया हम उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस बात का ख्याल रखेंगे। और दूसरी ये नहीं कि वो पेड़ लगा दिया और फिर उनको जाकर नहीं पड़ रहे। 3 मीटर की दूरी इसलिए कर रहे हैं कि भैया हमारे आजकल जो छोटे वाले ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो भैया उनमें रोटावेटर भी है और दूसरी चीज भी है, उनसे आप जो है जुताई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ट्रैक्टर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाएगा, तो उसमें खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा। और आप इसकी फसल के तौर पर उगाओ, अगर आपने भैया पूरे खेत में लगा रहे हैं तो इसे फसल के तौर पर अगर आप उगाएंगे तो आपको अन्य फसलों से ज्यादा आमदनी देगा। और
1: बिल्कुल।
0: आज के दौर में भैया ये बहुत ही सामयिक है, हमारे किसान भाई काफी बढ़ चढ़ कर ऐसे कर रहे हैं। तो भैया हम इनका एक तो धन्यवाद करते हैं
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: स्वागत भी करते हैं कि इन्होंने जो है यूकेलिप्टस लगाने की सोची।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: और आलोक भैया, एक बात का और हमारे किसान भाई ध्यान रखें, जो भैया पेड़ लगाना चाहते हैं यूकेलिप्टिस के,
0: जी
1: तो भैया वो स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता के पौधे लगाएं।
0: बिल्कुल
1: और जैसा आप कह रहे थे ना, पेड़ लगा के भूल नहीं जाना, उसकी भैया देख रेख यानी कि निगरानी जरूर रखनी।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, बहुत सारी चिट्ठियां आज आपने ले ली
1: हाँ।
0: और भैया हमने भी कोशिश करी कि हमारे किसान भाइयों के जवाब दिए जाएं। अब हमारे किसान भाई आगे को भैया चिट्ठी लिख सकें तो भैया पता बता दो।
1: बिल्कुल भैया, पता भी बतावेंगे। तो भैया यो तो बता दो उससे पहले कि भैया अगला जो हमारा कार्यक्रम है अपनी खेती किसानी का, भैया वो कब है?
0: मैं देखो, चिट्ठी पत्री का जो अगला कार्यक्रम होगा वो 31 जुलाई को होगा, तो 31 जुलाई 2026 को हम कार्यक्रम लेकर फिर आवेंगे,
1: बिल्कुल
0: तो उसमें आप चिट्ठी जरूर लिखें। और चिट्ठी लिखने के लिए पता बता दो भैया।
1: बिल्कुल। पता है हमारा कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, और पिन कोड है भैया 246763।
0: बिल्कुल। तो भैया देखिए, ये तो हो गई चिट्ठी पत्री की बात। अगर भैया आपको चिट्ठी पत्री लिखने में कोई दिक्कत हो रही है या नहीं लिख पा रहे, कोई आलस्य है या पोस्ट ऑफिस दूर है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो माह के पहले शुक्रवार को हमारे से कार्यक्रम होता है हेलो किसान, और माह के तीसरे शुक्रवार को होता है हेलो गन्ना किसान।
1: जी।
0: तो भैया किसी भी समस्या के लिए आप हेलो किसान में फोन कर सकते हैं, और केवल गन्ने के लिए आप फोन करें भैया तीसरे शुक्रवार को, और माह के आखिरी शुक्रवार को भैया हमारे यहाँ होता है हेलो बासमती।
1: ठीक।
0: तो मंगलवार को भैया हेलो बासमती में जो है बासमती धान से संबंधित कोई भी समस्या है उसके लिए विशेषज्ञ हम बुलाते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं। तो भैया इसके लिए भैया फोन नंबर आप बता दो।
1: ठीक है भैया, जो हमारा मोबाइल नंबर है वो है 9457-07-82-88।
0: जी। तो भैया इसके अलावा भैया हमें जो है आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंस्टाग्राम पर भी भैया फॉलो कर सकते हैं
1: ठीक।
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से। तो भैया देखो, ये अपना कार्य आपका अपना कार्यक्रम है भैया, आपने खत भी लिख दिया, सब कुछ होगी। अब आपसे जो है विदा लेने का टाइम आ गया।
1: बिल्कुल भैया।
0: हाँ, तो भैया आप
1: तो
0: इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
1: और अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति।
0: किसान भाइयों, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:45 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम कानूनी सलाह का।
1: कानूनी सलाह।
2: नमस्कार श्रोताओं, कानूनी सलाह का आज का अंक लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं मैं अंकित सैनी।

0: आज का हमारा कानूनी सलाह का विषय है किशोर न्याय अधिनियम 2015। श्रोताओं, जैसे कि अक्सर समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से आप लोग देखते सुनते हैं कि जब कभी भी कोई अपराध होता है, संगठित अपराध हो, गिरोह के द्वारा हो या एकल रूप से किया गया हो, और जो उसमें अपराधी है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर मुकदमा चल रहा है, वो एक किशोर है, तो सुनने में आता है कि उसको किशोर सुधार गृह में भेज दिया गया है या जुवेनाइल कोर्ट में उसका मामला लंबित है। तो इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए, हमें कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी, मैं श्रोताओं का स्वागत करता हूँ।
0: जी, सबसे पहले तो गजेंद्र जी, हम आसान सी भाषा में अपने श्रोताओं को यही बताना चाहेंगे कि किशोर जो एक शब्द है, किशोर क्या होता है, किशोर की क्या परिभाषा है।
1: कानून की भाषा में किशोर को इसलिए लाया गया कि जो वयस्क व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाते हैं, वो कम उम्र के बच्चों के द्वारा, बालक बालिकाओं के द्वारा अपराध किए जाएंगे तो उनको दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक 18 साल से बड़े वाले वयस्क कहलाएंगे, और जो 18 साल तक की उम्र के लोग हैं, उन बच्चे हैं, बालक हों या बालिका, उनको किशोर की परिभाषा में रखा गया है।
0: जी, अच्छा सर, सबसे पहले अगर हम जो अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम, इसके इतिहास की बात करें, इसके भूतकाल में अगर हम जाएं, तो किशोर न्याय अधिनियम जो है, कब सबसे पहले ये लागू हुआ भारत में और क्या-क्या उसके मुख्य प्रावधान थे?
1: भारत में 1986 में भारत की संसद ने एक कानून पास किया जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या किशोर न्याय अधिनियम कहा जाता है, और उसमें 16 साल तक की बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को दंडित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, और 16 से ऊपर वालों को एक जो पहले से चल रही है व्यवस्था उसके अंतर्गत रखा गया, और ये लागू 1986 में किया गया
0: जी,
1: सबसे पहले।
0: यानी कि जो 16 से 18 के जो बीच के किशोर हैं, उन पर वयस्क वाले जो कानून है वो लागू होंगे
1: हाँ,
0: इस अधिनियम के अनुसार।
1: 1986 तक की स्थिति यही थी कि 16 से ऊपर के जितने थे वो वयस्क में गिने जाते थे, और
0: जी
1: 16 तक के बच्चे, और 16 की गणना कब होगी, अपराध करने की तिथि पर
0: जी
1: 16 वर्ष की आयु की गणना की जाती थी।
0: अच्छा सर, इसके बाद उत्तरोत्तर अगर हम बात करें, क्या इसमें सुधार हुआ, क्या नया अधिनियम फिर दोबारा आया, जैसे 86 के बाद अभी हम बात करने वाले 15 की, क्या इस बीच में भी कोई इसमें सुधार हुआ?
1: हाँ, 1986 के बाद जब ये कानून भारत में लागू किया गया तो ये देखा गया कि 16 साल की आयु के बच्चों के अलावा 17 वर्ष और 18 वर्ष तक के बच्चे भी जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उन्होंने सन 2000 में एक नया कानून बनाया और उसमें ये व्यवस्था की कि अब किशोर की परिभाषा के अंतर्गत बालक या बालिका घटना की तारीख पर 18 वर्ष तक का यदि होगा तो उसको इस किशोर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके बाद में 2015 में इसको और थोड़ा सा, उम्र तो यही रखी गई लेकिन उसमें अपराधों को बांटा गया, और वो दो श्रेणी के अपराध है, साधारण और जघन्य अपराध।
0: जी, एक मिनट सर, यहीं पे हम अपनी बात को आगे कैरी करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जैसे कोई मुकदमा लंबित है किसी ने न्यायालय में, जुवेनाइल जो कोर्ट है उसके अधीन, तो उसमें कोई मुकदमा जब आता है तो वो कैसे ये तय करते हैं कि जो जिस पर मुकदमा चल रहा है, अपराधी जिसको हम कह रहे हैं, उसकी आयु 18 से कम है या 18 से ज़्यादा है, उसके लिए क्या पैमाना है हमारे पास?
1: सामान्य से ये होता है कि यदि, उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं कि यदि कोई डकैती का अपराध हुआ और उसमें मान लीजिए 5, 6, 7 लोग शामिल हुए, और अदालत में जब वो मुकदमा जाएगा तो वहाँ जो लोग 18 से नीचे के लोग हैं वो अपने एप्लीकेशन देंगे कि हमारी उम्र 18 से कम थी घटना की तारीख पर, इसलिए हमारे मामले को किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया जाए और इनसे अलग कर दिया जाए। तो वो कोर्ट ये तय करेगा, ये साक्ष्य लेकर के, कौन से कागज हैं जिनसे आप अपने को 18 साल से छोटा मानते हो, और यदि ये सिद्ध होता है कि वो 18 साल से छोटे हैं तो उनकी फाइल वो इस कानून के अंतर्गत ये किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी जाएगी।
0: जी, लेकिन बहुत से मामलों में हम देखते हैं कि ये आता है कि उसकी कोई मेडिकल जांच भी जारी है, उसने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, दस्तावेज जो दिए हैं अपनी आयु से संबंधित, उन पर भी संदेह है कि जी फर्जी दस्तावेज हैं, उन मामलों में किस प्रकार से उसकी जो आयु का निर्धारण कैसे होता है?
1: आमतौर से दो परिपाटी भारतवर्ष में लागू हैं। यदि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और कभी भी स्कूल गया है तो स्कूल का जो रिकॉर्ड है जो वहाँ से वो मंगा लिया जाएगा, या उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या और कोई समकक्ष हायर सेकेंडरी का है जहाँ पर स्कूल में बच्चों की उम्र लिख करके दी जाती है, तो वो एक प्रमाण माना जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो फिर मेडिकल बोर्ड जो जिले में होता है और CMO उसके प्रभारी होते हैं, दांत का एक्सरे होगा, बाल का एक्सरे होगा, हड्डी का एक्सरे होगा और उनके जो मेडिकल के टेस्ट हैं उनको तय करके और डॉक्टर साहब ये प्रमाणित करेंगे कि इसकी उम्र इस तारीख पर जो घटना का तारीख है कितनी हो सकती थी। अगर वो 18 से नीचे पाया जाएगा तो वयस्कों वाली अदालत में उसका मुकदमा हटा दिया जाएगा और इधर आ जाएगा 2015 के प्राविधानों के अंतर्गत।
0: जी, अब सर जब बात 2015 की आई है, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, अब बात कर लेते सर, जब हमारे पास ऑलरेडी 2000 वाला अधिनियम था, लागू था, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि उसमें कुछ सुधार किया गया?
1: 2000 का कानून लागू होने के बाद और 2014 और 2015 के वर्ष की शुरुआत तक बच्चों के द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई। उसमें अपहरण जैसे थे, डकैती थी, दुष्कर्म या कत्ल था और लड़कियों पर तेजाब फेंकने जैसे गंभीर अपराध थे। और भारत में एक कांड हुआ जिसे निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है, उससे सारा देश हिल गया था। कानून की प्रणाली में ये हुआ कि उसका मुलजिम जो था वो केवल 3 साल की सजा पा करके छूट गया। तब इस 2015 के कानून को बनाने की स्थिति आई। उम्र तो 16 से 18 ही रखी गई, लेकिन उसमें सजा जो है वो न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल कर दी गई।
0: जी, अच्छा सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो निर्भया कांड का एक अपराधी था वो किशोर था, 3 साल की अधिकतम सजा के बाद वो छूट गया, तो क्या ये अधिनियम लागू होने के बाद उसको फिर से जेल हुई?
1: ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा जेल हो। घटना जिस दिन हुई है, वारदात जिसको हम बोलते हैं आम ग्रामीण भाषा में, वारदात होने की तारीख पर देश के अंदर जो कानून वयस्कों के लिए लागू था, जो कानून अवयस्कों के लिए किशोर के लिए लागू था, उसी के अंतर्गत सारी कार्रवाई होगी। यदि सजा पूरी करने के बाद वो व्यक्ति छूट गया और आपने नया कानून बना दिया देश की संसद ने और उसे लागू कर दिया, तो भूत लक्षी नहीं हो सकता। उसको भूत लक्षी कहा जाता है, तो नए कानून का भूत लक्षी प्रभाव नहीं होगा कि कानून लागू होने से पहले जितने लोग छूट गए हैं या उनके मुकदमे निर्णीत हो गए हैं तो उनको दोबारा खोला जाए और दोबारा उन पर सजा दी जाए।
0: जी, अच्छा सर, जो हमारा अधिनियम है 2015 वाला किशोर न्याय अधिनियम, उसमें जघन्य अपराध करने पर दंड का क्या प्रावधान है और किस प्रकार से वो दिया जाएगा?
1: देखिए, ऐसा है कि जघन्य अपराधों का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दुष्कर्म, कत्ल, तेजाबी हमले, अपहरण, डकैती और जो ड्रग्स वगैरह हैं इनको इधर से उधर पहुंचाना या अपहरण करना, तो उसमें वयस्कों के लिए तो अलग है और वयस्कों को किसी किसी मामले में यदि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है या उम्र कैद दी जा सकती है, तो वो किशोरों के लिए, अवयस्कों के लिए नहीं है। इनके लिए कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल का सजा का प्रावधान किया गया।
0: अच्छा सर, सजा जब इनको हो गई किसी मामले में, तो क्या इनको जो वयस्कों वाली हमारी सामान्य जेल होती है उसमें रखा जाता है या इनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है?
1: देखिए, अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक बार घटना करने के बाद में बच्चों को अपराधों से दूर रखने वाले व्यवस्थाओं से अलग रखा जाए। अगर वयस्कों की जेल में इन्हें भेज दिया जाएगा तो वहाँ विभिन्न तरह के अपराध करने वाले अपराधी बंद होते हैं, वो इन बच्चों को भी, जिसे आम भाषा में कहते हैं, बिगाड़ देंगे, इसलिए इनको वहाँ नहीं भेजा जाता, बल्कि इनके लिए बाल सुधार गृह की व्यवस्था की गई है और इनकी सारी सजा वहीं पूरी कराई जाती है।
0: जी, मतलब कुल मिलाकर कहें कि अगर किसी में सुधरने की गुंजाइश है तो उसमें सुधार आ सकता है।
1: हाँ, मंशा यही है कि किसी वजह से उस बच्चे ने नासमझी में कोई अपराध कर दिया है तो सारा जीवन उसका बर्बाद न किया जाए और कानून का उद्देश्य ये रखा कि उसको सुधार करके और आगे जो मुख्य धारा है जीवन की, समाज की मुख्य धारा है, उसमें वो IAS बने, IPS बने या कोई भी वकील बने या कोई भी अपना कारोबार करे, तो उस तरह से उसको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसने चूंकि अपराध किया है तो उसे दंड भी देना जरूरी है, तो दोनों चीजों को सामंजस्य बना करके उसके शेष जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाना इसकी जो है मुख्य विशेषता है।
0: अच्छा सर, क्या जो हमारे बाल अपराधी हैं, किशोर जो जिन्होंने अपराध कर दिया है, उन पर मुकदमा अभी चल रहा है न्यायालय में, तो क्या उनकी पहचान किसी प्रकार से उजागर की जा सकती है?
1: देखिए, इसमें यह है कि जब उद्देश्य यह है कि बाल अपराधियों को उस मुकदमे के निर्णय होने के बाद में यदि सजा भी हो जाती है, उसको पूरा करने के बाद में समाज की मुख्य धारा में लौटने की व्यवस्था रहेगी, तो किसी भी प्रकार से मुकदमा चलने के दौरान या मुकदमे में सजा हो जाने के बाद या सजा भुगतने के बाद किसी तरह उजागर नहीं हो सकती। किसी भी तरह का जो अखबार है, मैगजीन है, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, उसको उनकी उजागर नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने की तो ऐसा करने वाले उन वयस्क व्यक्तियों के लिए कानून की अलग व्यवस्था है, उन्हें दंडित किया जाएगा।
0: जब न्यायालय में पेशी होती है किसी अपराधी की, तो उसको सामान्यतः हथकड़ी या बेड वगैरह लगा करके जज साहब के सामने, न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। तो सर, क्या जो हमारे बाल अपराधी हैं, किशोर हैं, उनको भी ऐसे ही पेश करते हैं या अलग से कुछ?
1: देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इसमें वयस्कों के लिए भी ये व्यवस्था हो गई है कानून में कि यदि पुलिस अधिकारी की राय में वो आदमी फरार नहीं हो सकता है तो उसको भी हथकड़ी ना लगाई जाए। और बाल अपराधियों को तो हथकड़ी लगानी ही नहीं है। एक मैं विशेष तौर से सुनने वालों के लिए अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि आप पूरी बाहों की जो लोग कमीज पहनते हैं उसमें कफ होता है सबसे आगे, तो वो कफ कहलाता है CUFF, और कफ हाथ पे होता है, तो दोनों को मिला करके हथकड़ी हाथ में पहनाई जाती है, तो हथकड़ी की अंग्रेजी हैंड कफ्स रखी गई, तो हैंड कफ्स नहीं लगाए जाएंगे बच्चों को किसी भी स्थिति में।
0: और सर, क्या बच्चों को हम जैसे पुलिस स्टेशन में रख लेते हैं न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले किसी अपराधी को, तो क्या किशोरों को भी इसी तरीके से बंदी कारागार में या पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं?
1: देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर दो आम तौर से ग्रामीण भाषा के लोग हवालात बोलते हैं उसे, तो वहाँ पुरुष बंदी गृह और महिला बंदी गृह बराबर बराबर होते हैं या आमने सामने होते हैं और उन्हें हवालात बोला जाता है। तो 18 साल से ऊपर के लोग यदि पकड़ करके आते हैं उन्हें हवालात में रखा जाएगा, और 18 साल से जो छोटे बच्चे पकड़ करके आए हैं उन्हें एक सामान्य कक्ष में बैठा दिया जाएगा।
0: अच्छा सर, जैसे ये जो हमारा अधिनियम है, इसका किशोर न्याय अधिनियम 2015 या कई बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, तो सर अब इसमें जब संरक्षण या देखरेख की बात आई है, तो बच्चों की देखभाल या उनके प्रति दुर्व्यवहार के लिए जो या उनके प्रति जो अपराध किए जाते हैं उसके लिए भी क्या इसमें कोई प्रावधान किया गया है उनसे, उनके प्रति अपराध ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, उनसे बचाव के लिए?
1: जी, बच्चों के लिए चाहे वो आम परिवार में रहते हैं या लावारिसी हालत में सड़क पर रहते हैं या घूमते फिरते रहते हैं, उसके लिए व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में 18 साल से छोटे लड़के या लड़की को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देकर के या बगैर प्रलोभन के कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं कराएगा, उसके साथ कोई अपराध नहीं करेगा, उसके साथ मारपीट नहीं करेगा, मानसिक उत्पीड़न नहीं करेगा या शारीरिक उत्पीड़न नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भारत के अंदर लागू वयस्क कानून के अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलेंगे और अपराध साबित होने पर उन्हें सजा और अर्थदंड भी दिया जा सकता है।
0: व्यवस्था को लागू करने के लिए एक बोर्ड का ही व्यवस्था की जाती है, एक बोर्ड होता है, तो क्या जो ये न्याय है किशोरों के लिए, इसके लिए भी कोई बोर्ड वगैरह की स्थापना की गई है?
1: हाँ,
0: उसका क्या ढांचा है, क्या स्वरूप है?
1: देखिए, ऐसा है कि ये जो सन 2015 का अधिनियम बना है इसका नाम ही किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 है, और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था होती है कि वहाँ पर पुलिस जब इसे ले जाती है तो, और मोटे तौर पर ये तय कर दिया जाता है स्पष्टता कि 18 साल से छोटा है तो उसको बोर्ड के सामने भेजा जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत एक किशोर न्याय बोर्ड गठित किया जाता है और जिस जिले में अपराध गठित होता है उस जिले के में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ दो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता रखे जाते हैं बोर्ड के अंदर, और दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक महिला अवश्य होती है, वो बोर्ड बनता है और अगला सारा मामला उसी की देखरेख में चलता है।
0: जी, मतलब ये बोर्ड ही वो तय करता होगा कि जो अपराधी हमारे समक्ष आया है, जिसने कहा कि जी मैं वयस्क नहीं हूँ, मुझ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, तो ये बोर्ड ही वो तय करेगा कि ये 18 से प्लस है या 18 से कम आयु का।
1: हाँ, ये बात होता होनी बिल्कुल जरूरी है कि ये 18 से कम उम्र का था या ज्यादा उम्र का था, और फिर जब ये तय हो जाता है कि 18 से कम उम्र का था तो फिर उसकी जमानत की, जैसे हम भाषा में हम कहते हैं कि छुड़ा करके लाना, जमानत के लिए भी जो एप्लीकेशन जाएगा उसमें उस बात का महत्व रखा जाएगा और उसी के अनुसार फिर उस पर निर्णय होगा।
0: जी, अच्छा गजेंद्र जी, अब अंत में चलते चलते इस अधिनियम को लेकर के आप हमारे श्रोताओं से मुख्यतः क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं मुख्यतः श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बच्चों को अपराध घटित होने की परिस्थितियों से दूर रखें और उनका जो आप भविष्य पढ़ा लिखा करना या कारोबार करना उसमें लगाएं, और यदि कोई घटना भूलवश हो जाती है या कुछ प्रलोभन या अज्ञानता के वश की जा सकती हो जाती है तो उसमें इस अधिनियम के अंतर्गत फायदा उठा करके और उसका सुधार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
0: जी निश्चय गजेंद्र जी, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे, इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूं और समस्त श्रोताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं।
0: जी इसी के साथ श्रोताओं आप मुझे यानी अंकित को दीजिए अनुमति और अगले एक एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार।
2: कानूनी सलाह।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी सलाह, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म मेरे सनम से गीत। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे, धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का गीत, आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वर में, फिल्म लव स्टोरी से।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साजन बिना सुहागन फिल्म से गीत, यशुदास और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। इंदिवर के गीत को संगीत से सवारा उषा खन्ना ने।

साजन बिना सुहागन फिल्म के इस गीत के साथ ही छाया गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 7:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:32 पर आपको सुनवाएंगे रूपक, कितने हसास थे अश्क। रात्रि 8:15 पर गीत संध्या, 8:30 पर एक ही फिल्म से और रात्रि 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद और रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर आप सुन सकते हैं। ये थे आज के कार्यक्रम और एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। प्रातः 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे नरेंद्रजीत गहलोत। जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कल रात्रि 8:00 इस सप्ताह संसद में, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती, रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल दिन में 12:05 पर कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव आप सुन सकते हैं। महिला जगत कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर सुनिएगा लघु नाटिका बड़ी बहू। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए लोक गीतों और रागनियों पर का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। श्रोताओं ये थे हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
5: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।
6: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
4: इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
7: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया लाखों परीक्षार्थियों के मांग और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि हम उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से विपरीत ना हो।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर

0: भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भव्य रसायन योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
1: भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और 5 इयर्स रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा।
0: नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 7,740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में कल कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। शामली में प्रदेश के अधिकारियों और हरियाणा प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, CCTV निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर चर्चा की गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
2: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आम जन हों या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी एक बैठक की गई थी, जिसके मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है रूपक कितने हसास थे अश्क, आलेख अमन त्यागी का, वाचन स्वर सचिन शर्मा और श्वेता भट्ट के, प्रस्तुति एवं परिकल्पना शोभित शर्मा की। तो लीजिए सुनिए रूपक कितने हसास थे अश्क।

0: यू ब्लडी फूल, तुम इस रोड पर पेशाब करना है। सिपाहियों पकड़ लो इस डॉग को, जेल में रहेगा तो अकल आ जाएगी।
1: गलती माफ हो हुजूर, अभी अभी पहले यहाँ कोई दूसरा आदमी पेशाब करके गया है। अब देखिए ना साहब, अभी तक जमीन गीली पड़ी है, मुझे भी पेशाब लगी थी, मैंने भी कर ली।
0: अरे नाम क्या है तेरा?
1: ठाकुर सिंह जनाब, ठाकुर सिंह।
0: क्या नाम बताया? ठाकुर सिंह।
1: अरे नहीं, ठाकुर सिंह।
0: कहाँ रहता है तू?
1: किवाड़ गांव में रहता हूँ, जमींदार परिवार से हूँ और कानून का पालन भी बहुत अच्छे से करता हूँ जनाब।
0: ओके ओके, अब भाग यहाँ से, अब कहीं और मत मुटना।
2: ये घटना है मुरादाबाद में अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई एक खास सड़क की, जो आज भी पीली कोठी से कमिश्नरी की ओर जाती है। जनपद बिजनौर के सीमावर्ती ग्राम किवाड़ के जमींदार परिवार के ठाकुर सिंह का जी मचला और उन्होंने विद्रोह का मन बनाते हुए उस सड़क पर पेशाब कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने खास रूप से बनवाया था। यह घटना अपने गांव में आकर अपने परिवार मित्र जगन सिंह और नियादर आदि को बताई तो गांव में अब ठाकुर सिंह को लोग मजाक में ठाकुर सिंह कहने लगे।
3: बात साल 1945 के आसपास की है। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का स्वर निरंतर प्रबल होता जा रहा था, जिसे देखो वो अपने ही तरह से अंग्रेजों के प्रति अपने अंदर पनप रहे क्रोध का प्रदर्शन कर रहा था। ठाकुर सिंह चूंकि सूफी प्रवृत्ति के थे, जमींदार परिवार होने के बावजूद झगड़ालूपन या हिंसा प्रवृत्ति उनके अंदर लेश मात्र को भी नहीं थी। कुर्ता पायजामा और सिर पर फर वाली काली टोपी भी उन्हें किसी सूफी जैसा ही लुक देती थी। उन्हें अपने परिवार और मित्रों से बड़ा लगाव था। वो नहीं चाहते थे कि उनके कारण परिवार पर कोई भी आफत आए, इसलिए अंग्रेजों की उस पवित्र सड़क को अपवित्र कर देने की संतुष्टि लिए खामोशी के साथ अपने गांव चले आए।
2: यही ठाकुर सिंह अब तक अपनी कई संतानों को अल्पायु में ही गवा देने के कारण दुखी भी थे। उनकी पत्नी दयावती को जब इस घटना का पता चला तो वो विचलित हो उठी। एक तो परिवार के लोगों का व्यवहार, दूसरा पति का सूफीपन उनके लिए घातक होता जा रहा था। ऊपर से अंग्रेजों के प्रति पति में पनप चुके विद्रोह के भाव ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया था। तभी किसी विद्वान ज्योतिषी ने बताया कि यदि दयावती अपने पति संग कुछ दिन मायके में रहे तो उनके बच्चे जी सकते हैं। बस फिर क्या था, दयावती अपने पति को लेकर अपने मायके ढभारसी चली गई, जहां उनकी मां मोहनी

0: आज तो संकट का दिन है, एक तो त्योहार की खुशी और थाली में पकवान परोसे जाने का इंतजार, दूसरे नवजात के आने का इंतजार, बैठक पर कुछ लोगों का जमावड़ा है।
1: अरे तुम लोग तो ऐसे खामोश बैठे हो, जाने कोई बहुत बड़ी चिंता है तुम्हें।
2: अरे दाई मौसी, वो क्या है कि?
1: वो क्या क्या है? अरे बच्चा जनने में सबको दर्द होए। अरे जो बच्चे को जन रही वो तो रोए, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो?
2: हाँ भाई, बात तो सही है दाई मौसी की। अरे जब तक कोई खुशखबरी नहीं मिलती तब तक क्या यूं ही सुस्त बैठे रहेंगे? कुछ शेरो शायरी सुना दो पहनो।
3: ठीक है भैया, तो सुन। नकाब रुख उठाया जा रहा है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
3: नकाब रुख उठाया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा
4: है। एक बार और।
3: तो एक बार फिर से। नकाब रुख उठाया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा है।
2: वाह पहनो, कमाल कर दिया तुमने तो।

0: जी, बधाई हो, बधाई।
1: अजी आप सबको भी बहुत बहुत बधाइयां हो जी।
2: वाह क्या बात है, सर्दियों में खिली सुहावनी धूप, चबूतरे पर धूप सेकते कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरह से शायराना अंदाज में हंसी ठिठोली कर रहे थे। साथ ही एक ऐसे बालक के आने का इंतजार भी था जिसे ये दुनिया आने वाले समय में विश्व विख्यात शायर महेंद्र अश्क के नाम से जानने वाली थी।
3: वास्तव में आज बड़ी ही प्रसन्नता का दिन है। ढमारसी में रामस्वरूप जी का परिवार बड़ी धूमधाम से खुशियां मना रहा है। उनकी बड़ी बेटी दयावती को बेटा जो हुआ है, माँ मोहनिया तो जैसे प्रसन्नता से नाच ही उठी है।

0: इस तरह सन 1947 में सकट त्योहार के दिन प्रसिद्ध शायर महेंद्र अश्क का जन्म अपने ननिहाल ग्राम ढबारसी में हुआ, जो कि उस समय जनपद बिजनौर की तहसील हसनपुर का प्रसिद्ध गांव था। बाद में यह गांव अमरोहा जिले में आ गया। यहीं पर महेंद्र अश्क जी का लालन पालन हुआ और साहित्यिक पृष्ठभूमि में जन्म लेने के कारण बालपन से ही ये गुण आप में भी उभरने लगे थे।
1: मैं 12 बरस की उम्र से शेर कहने लगा था। उसकी वजह यह थी कि मेरे वालिद मोहतरम शायरी करते थे, वो शेर बोलते रहते थे और मैं लिखता रहता था। वहीं से उसके शायरी के जरासीम मेरे अंदर आ गए। उसके बाद फिर मैं अपने ननिहाल गया। मेरे ननिहाल में गजल का

0: फायदा उन्हें उस्ताद बनाया और उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जितनी मेहनत मैंने भी नहीं की अपने लिए, जितनी मेहनत मेरे उस्ताद ने मेरे लिए की।
1: यूं तो गांव में मामाओं की कमी नहीं थी। हुमा साहब और रंग साहब जैसे शायरों का स्नेह इस बालक पर था, लेकिन छोटे मामा धर्मवीर सिंह यानी पाठक जी का साहित्यिक प्रेम और बड़े मामा रूपराम सिंह का कठोर अनुशासन इस बालक में संस्कार तो जैसे कूट कूट कर भर रहा था।
2: ये सच है, एक ओर स्नेह था तो दूसरी ओर कठोर अनुशासन भी। एक तरफ बालक में शायरी पनप रही थी तो दूसरी ओर शिक्षा भी। बड़े मामा और छोटे मामा के संस्कारों के साथ ही पिता का असीम स्नेह और शायरी के प्रति रुझान भी देखने लायक था। लेकिन हतभाग्य, जब महेंद्र अश्क की आयु 12 वर्ष की हुई तो अचानक पिताजी ठाकुर सिंह दुनिया छोड़कर चले गए।
1: सच में माँ दयावती के लिए ये और भी मुश्किल दौर था। अचानक पति का यूं चले जाना और 4 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें धीरे धीरे संघर्षशील महिला में बदल दिया। भले ही भाइयों के पास रहना हो रहा था, लेकिन स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए जो भी किया जा सकता था किया।
2: अश्क साहब की शिक्षा कुछ गांव में और कुछ मेरठ में संपन्न हुई। शायरी और वॉलीबॉल जैसा खेल भी साथ चलता रहा। बाद में खेल तो छूट ही गया, लेकिन शायरी जीवन भर के लिए साथ हो चली। बड़े हुए तो जनपद बिजनौर के प्रसिद्ध गांव राजपुर नवादा के समीपवर्ती गांव रघुनाथपुर की वेदकांति त्यागी के साथ पाणी ग्रहण किया। ससुराल में भी प्रसिद्ध साहित्यकार दुष्यंत कुमार का मिलन हुआ तो बार बार ससुराल जाने का मन भी होने लगा।
1: आपके विवाह के बाद आपसे छोटी बहन कमलेश त्यागी का विवाह भी ढबारसी रहते हुए संपन्न हुआ, किंतु एक दिन आपकी पत्नी वेदकांति ने आपसे बड़ी ही मनोहार के साथ कहा,
3: सुनो जी, आपसे एक बात कहनी थी।
4: हाँ, कहो, क्या बात है?
3: अब देखो जी, यहाँ मामा मामी के घर में रहते हुए कब तक हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे? मुझे तो यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ना अब हम अपने गांव की वार चले, बताओ क्या कहते हो?
4: हाँ, तुम कह तो सही रही हो, वैसे भी एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं माँ से बात करके देखता हूँ, शायद वो हमारे तुम्हारे फैसले पे राजी हो जाए।
3: तो क्यों नहीं होंगी माँ जी राजी, आखिर हमारी पैतृक भूमि भी तो केवाड़ी है ना। देखो, अपने गांव अपने घर लौटने की खुशी उन्हें भी तो उतनी ही होगी ना।
2: और फिर एक दिन महेंद्र सिंह अपनी माँ दयावती, पत्नी वेदकांति त्यागी, छोटी बहन गायत्री और भाई उदयपाल सिंह के साथ अपने गांव किवाड़ चले आए। गांव के ही जूनियर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नौकरी भी कर ली और धीरे धीरे अपने मामाओं की मदद से अपनी जमीन पर खेती भी आरंभ कर दी।
1: देखते ही देखते बंजर हो चुके खेत हरी भरी फसलों से लहलहा उठे और खंडहर होता घर चमक उठा। गांव में चूंकि शायरी का उतना अच्छा माहौल नहीं था, सो सौभाग्य से समीपवर्ती कस्बे सहसपुर में श्री जी बतौर उस्ताद मिल गए, जिनके कारण न सिर्फ अश्क जी की शायरी में निखार आया बल्कि उन्हें उपनाम अश्क भी मिला। कहते हैं कि शायर का तकल्लुस उसके मिजाज को बयान करता है।
0: अंग्रेजी से एमए किया है मैंने और उर्दू में शायरी की है। मैंने हिंदी में भी कविताएं कहीं, लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं रही, मज़ा नहीं आया। बहरहाल मैंने फिर उर्दू में की गज़ल, कता, रुबाई, मनकबत, नात, सभी असनाफ़ सुखन में इनमें शायरी की है और उसका मुझे बहुत उम्दा माहौल मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, सभी कुछ मेरे लिए अच्छा रहा। दरअसल एक शायर कोई भी हो वो इमोशनल तो होता ही है, जज्बाती होता है, हसास होता है। मैं बचपन से ही बहुत हसास था और मैं जब भी किसी को रोते हुए देखता था तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते थे, खुद ब खुद ही मैं रोक भी नहीं पाता था अपने आप। तो मैंने कई तखल्लुस का इंतखाब करने के बाद फिर मैं इसी नतीजे पहुंचा कि मैं अपना तखल्लुस अश्क रखूं, और मैंने अपना अश्क रख लिया। इस अश्क तखल्लुस को रखने का नतीजा ये भी हुआ कि मुझे बहुत पसीराई, बहुत हौसला मेरी अफजाई हौसला अफजाई हुई, बहुत मुझे इज्जत भी मिली इस तखल्लुस की वजह से।

0: ननिहाल में हारमोनियम बजाना छोटे मामा से सीख ही लिया था, वहां की रामलीला में अभिनय सीखा। जब तक अश्क जी की वार्ड में रहे तब तक रामलीला में राजा दशरथ का अभिनय करते रहे। और हाँ, सहसपुर, उमरी और कांठ में भी आप अध्यापन कार्य करते हुए शायरी करते रहे। बाद में परिणाम ये हुआ कि खेती और अध्यापन दोनों कार्य छोड़कर बस शायरी के हो गए।
1: गजल का मतलब है कि मेरा वजूद तो मिट्टी का एक शजर निकला, मेरा वजूद तो मिट्टी का एक शजर निकला, तेरे ख्याल का साया भी मोतबर निकला, तेरे ख्याल का साया भी मोतबर निकला, और सुकूत भर गया समतों में आखिरी हद तक, सुकूत भर गया समतों में आखिरी हद तक, वो एक परिंदा जो पहली उड़ान पर निकला, वो एक परिंदा जो पहली उड़ान पर निकला। बुलंदियों की तमन्ना में ये हुआ अक्सर, बुलंदियों की तमन्ना में ये हुआ अक्सर, किसी के पाँव के नीचे किसी का सर निकला। बुलंदियों की तमन्ना में ये हुआ अक्सर, किसी के पाँव के नीचे किसी का सर निकला। तमाम शहर में तन्हा मैं अपना दुश्मन हूँ, तमाम शहर में तन्हा मैं अपना दुश्मन हूँ, मैं खुद से बच गया ये भी मेरा हुनर निकला। तमाम शहर में तन्हा मैं अपना दुश्मन हूँ, मैं खुद से बच गया ये भी मेरा हुनर निकला। और उजाले बांटने आया था सारी दुनिया को, उजाले बांटने आया था सारी दुनिया को, वो आफ्ताब था नेजे की नोक पर निकला। उजाले बांटने आया था सारी दुनिया को, वो आफ्ताब था नेजे की नोक पर निकला। और तमाम उम्र चले खुद तलक नहीं पहुँचे, तमाम उम्र चले खुद तलक नहीं पहुँचे, ये फासला तो बहुत दूर का सफर निकला।
2: कमाल है, एक इंसान शायरी का इतना दीवाना हुआ कि शायरी ही उसका ओढ़ना और बिछौना हो गया। तभी तो उन्होंने कहा होगा, जिंदगी मैंने ये जी है इन्हीं गजलों के लिए, मेरे बच्चों ये ही गजलें हैं कमाई मेरी।

0: पे चलो।
1: महेंद्र अश्क किवाड़ से बच्चों की शिक्षा और अपनी शायरी के लिए नजीबाबाद चले आए। किवाड़ में भी उस समय के अनेक प्रसिद्ध शायर मेहमान बन चुके थे। नजीबाबाद आए तो घर जैसे शायरी का अखाड़ा बन गया और पहलवान बने देश के तमाम प्रसिद्ध शायर।
2: जिन लोगों ने महेंद्र अश्क साहब को देखा है वो जानते हैं कि वे जितने अच्छे शायर थे उतना ही अच्छा उनका व्यक्तित्व भी था।
3: नज़्म का उन्वान है सदाए नूर। ये एक जैसी सदाएं कहाँ से आती हैं, ये एक जैसी सदाएं कहाँ से आती हैं, रोशनियाँ सी मेरे अलील कानों में छन के उन खिड़कियों से आती हैं जो किसी भी तरफ नहीं खुलती। छन के उन खिड़कियों से आती हैं जो किसी भी तरफ नहीं खुलती। खुशबुएं रोशनी बंद पलकों पर एहसास की, खुशबुएं रोशनी बंद पलकों पर एहसास की, रक्स करती हैं तो सोचता हूँ कि ये वक्त मुड़ मुड़ के क्यों देखता है मुझे। रोशनी खुशबुएं बंद पलकों पर एहसास की, रक्स करती हैं तो सोचता हूँ कि ये वक्त मुड़ मुड़ के क्यों देखता है मुझे। और फिर सोचता हूँ कि सूखी हुई मेरी बेजान आँखें देखते देखते कैसे दरिया बनी, मेरे सीने में पत्थर जो रखा था एक वो अचानक ही कैसे पिघलने लगा, एक एक करके औराक तारीख के आयतों की तरह जगमगाने लगे, मेरे चेहरे पे क्या मेरा चेहरा नहीं, वक्त मुड़ मुड़ के क्यों देखता है मुझे, आईने की तरह सोचता है।
1: शेर व शायरी ही क्या, महेंद्र अश्क साहब ने तो देशभक्ति गीत भी कमाल के लिखे हैं।

0: महेंद्र अश्क ने सामाजिक और आर्थिक हर तरह के संघर्ष को झेला है, मगर कभी टूटकर बिखरे नहीं।
1: पत्नी के चले जाने के बाद आप अपने आप को अधूरा अनुभव करने लगे थे, तभी तो आपने कहा था, ये किसकी जिंदगी जी रहा हूं मैं।
2: ख्वाब यूं चुभ रहे हैं आंखों में, ख्वाब यूं चुभ रहे हैं आंखों में जैसे कांटे भरे हैं आंखों में, ख्वाब यूं चुभ रहे हैं आंखों में जैसे कांटे भरे हैं आंखों में। शहर के लोग, दोस्त, तन्हाई, शहर के लोग, दोस्त, तन्हाई, जख्म बिखरे पड़े हैं आंखों में। शहर के लोग, दोस्त, तन्हाई, जख्म बिखरे पड़े हैं आंखों से। और शब से कह दो जरा ठहर जाए, शब से कह दो जरा ठहर जाए, चांद उतरे हुए हैं आंखों में। शब से कह दो जरा ठहर जाए, चांद उतरे हुए हैं आंखों में। और अपने होने का भी नहीं एहसास, अपने होने का भी नहीं एहसास, फासले घुल गए हैं आंखों में। अपने होने का भी नहीं एहसास, फासले खुल गए हैं आंखों में। अपने दरिया भी साथ ले जाओ, अब भंवर पड़ चुके हैं आंखों में। अपने दरिया भी साथ ले जाओ, अब भंवर पड़ चुके हैं आंखों में। और आखिरी शेर में फरमाया कि जिक्र मत कर चराग चेहरों का, आईने टूटते हैं आंखों में। जिक्र मत कर चराग चेहरों का, आईने टूटते हैं आंखों में। ख्वाब यूं चुभ रहे हैं आंखों में जैसे कांटे भरे हैं आंखों में।
0: समस्त भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, ईरान, डेनमार्क और दुबई आदि देशों की साहित्यिक यात्रा करते करते ये नायाब हीरा, जिसे शायरी की दुनिया महेंद्र अश्क के नाम से जानती है, 30 नवंबर सन 2024 को अपने भरे पूरे परिवार की आंखों के सामने उन्हें रोता बिलखता छोड़कर नश्वर देह का त्याग कर गया।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक, कितने हसास थे अश्क। आलेख अमन त्यागी का था, वाचन स्वर सचिन शर्मा और श्वेता भट्ट के, अभिनय करने वाले कलाकार थे यशोधर डबराल, प्रमोद सिंह, नंदिनी माहेश्वरी, अंजना, लोकेंद्र विश्वकर्मा और जितेंद्र। प्रस्तुति सहयोग यशोधर डबराल और धीरेन्द्र धारीवाल का था। प्रस्तुति एवं परिकल्पना थी शोभित शर्मा की। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अपने श्रोताओं को बता दें, आज रात्रि 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद और रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर आप सुन सकते हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:00 को है। कुछ ही पलों में संसद समीक्षा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12:00 दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11:00 अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12:00 तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट,

0: नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दूर गगन की छाओं में से, आवाज किशोर कुमार की, गीत और संगीत भी किशोर कुमार का ही।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: गीत संध्या में लीजिए अब सुनिए सूरज का गीत, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, तलत अजीज के स्वर में, फिल्म डैडी से।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म बेताब के लिए। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का।

बेताब फिल्म के इस गीत के साथ ही गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है दिल तो पागल है। इस फिल्म के लिए गीत आनंद बख्शी की कलम से निकले और उत्तम संगीत तैयार किया उत्तम सिंह ने। तो लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज की फिल्म थी दिल तो पागल है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: जानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक

0: आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर

0: तर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
3: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल

0: यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a

0: आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखना अंदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर मुमलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकतदारी में पेशरफ के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले महफूज काबिल भरोसा और जिम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने के तहीं पुरअज़्म है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की है और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसा रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन जिले के राधनपुर में 9 इंच से ज्यादा जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी जुनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नौसारी सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नौसारी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में सैलाब जदा इलाके से आज 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अहमदाबाद में वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल के साथ एक आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया और अम्बली और घुमा रिहायशी सोसाइटियों में भरे पानी को जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत जारी की। बिलमोरा रेल सेक्शन के रोड और विरंगम स्टेशनों पर पानी भर जाने से मगरबी रेलवे की खिदमात आज भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज मुतद्दिद रेलगाड़ियों को मनसूख करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कल भी पूरी रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है और 7 अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के

0: हेलो नजीब आबाद सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को रीना राजपूत का स्नेहपूर्ण नमस्कार। सप्ताह भर के इंतजार के बाद आता है शुक्रवार, समय 9:30 रात्रि के। मन में चैन और सुकून और इच्छा अपने मनपसंद गाने को सुनने की, और मीडिया आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। तो लीजिए, सब कुछ तैयार है और हाजिर हैं हम आपके लिए आपके पसंदीदा फिल्मी नगमों को लेकर। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हम आपको बताएंगे फ़ोन नंबर्स, जिन फ़ोन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हमसे बातें करेंगे, अपने पसंदीदा फिल्मी नगमों के बारे में आप हमें बताएंगे और हम आपको वो सुनाएंगे। तो लीजिए, देर किस बात की, जान लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 01341-230105, 01341-230105 मोबाइल नंबर भी हमारा है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि है 9457078288, 9457078288। तो लीजिए, हमने आपको बता दिए हैं आपके नंबर्स जिन पर आप हमें कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में, और ये हमारा वादा है, हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी नगमे। तो चलिए लेते हैं आज के कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो नजीबाबाद।
1: अनेकता में एकता ही भारत की राष्ट्र शक्ति है। और दीदी जी, न झुकना न रुकना न थकना, यही भारत की राष्ट्रभक्ति है, यही भारत की राष्ट्रभक्ति है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया आगाज आपके फोन कॉल का, लेकिन हम जानना चाहेंगे हमारे कौन प्रिय श्रोता हमसे जुड़े हैं।
1: जी दीदी जी, मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ, और दीदी जी को भगवान की धरती से, भगवान राम की तपोभूमि से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल, शत शत नमन हमारा भी आप पवित्र भूमि को, आपको और सभी भारतवासियों को।
1: और दीदी जी, मेरा ये डीडीएच से जो है आवाज पूरी तरह से गोल हो गई है, आपका नाम जानना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात हो रही है रीना राजपूत से।
1: जी रीना जी नमस्कार, और पहली बार आपसे हमारी बात हो रही है, अगर मुझे याद है तो पहली बार आपसे मेरी बात।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा शुरुआत आपने हालांकि अपने फोन कॉल की थी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे वहाँ के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ का कुछ खास आप बताना चाहें, कैसा चल रहा है आजकल?
1: हमारे यहाँ अगर आप चित्रकूट नहीं घूमे हैं तो ये करीब 7-8 किलोमीटर का जो है राम की तपोभूमि का कामत नाथगिर का परिक्रमा है।
0: अच्छा।
1: और यहाँ पर कम से कम 50 से ऐसे स्थल हैं चित्रकूट धाम पे जो दर्शनीय है।
0: अच्छा।
1: घूमने लायक है, और यहाँ दूर दूर के पर्यटक भी आते हैं पूरे देश से।
0: जी बिल्कुल, आपने इतना सुंदर वर्णन किया कि हमारा मन अब हो रहा है कि हम चित्रकूट पहुंच जाएं।
1: अरे दीदी जी, आपका स्वागत, आइए, चित्रकूट की सारी दुकानें आपके लिए फ्री कर देंगे हम लोग।
0: जी जी बिल्कुल, देखिए पूरा भारतवर्ष ही हमारा है, चित्रकूट अयोध्या सब कुछ हमारा है। तो चलिए, अब इस खुशी में आप ये बताइए गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गीत के मैं बोल बता दूंगा आपको।
0: बताइए।
1: ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए।
0: जी मोहम्मद रफी के स्वर में हंसते जख्म फिल्म का गीत।
1: जी दीदी जी, और ये भी बता दूं कि चित्रकूट में मैं एक मिनट में बता दूं कि 14 वर्ष से 12 वर्ष जो है भगवान रुके थे।
0: जी जी,
1: और जो भी आपके अलावा जो भी श्रोता हैं घूमना चाहेंगे उनका जो है सादर आमंत्रण है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: सावन के महीने में खास यहाँ प्रोग्राम होते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपसे बात करके एक नई ऊर्जा का एहसास हमें हो रहा है। दिनकर सिंह जी, आपने फोन कॉल किया, आपने चित्रकूट के
1: मेरे दो तीन मित्र हैं हमारे जो है मनकारी से खजुराहो, ये भी जो है हमारे बुंदेलखंड में पड़ता है खजुराहो से मनकारी से हमारे जो फूलचंद पाल जी हैं, और एक हमारे उर्दू के शायर हैं बलरामपुर से विजय पांडे जी, और मांगी लाल चंदेल जी सभी के चहेते हैं, और मेहता सिंह यादव जी, इनके साथ गीत को मैं वेरिकेट करूंगा।
0: जी लीजिए, आप सभी के साथ सुनिए ये गीत।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: जी बिल्कुल, संतोष आनंद का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, सुरेश वाडकर के स्वर में।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: सुनवा दिया जाए
1: कुछ
0: आपको ये
1: मेरे
0: गीत।
1: दीदी कुछ मेरे मित्र रहेंगे, उनका नाम थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ।
0: बिल्कुल बोलिए।
1: हमारे जो भी है, मणिराम पाल हो गए और फूलचंद मनकारी से हो गए और मांगीलाल चंदेल साहब हो गए, जितेंद्र पाल हो गए और दिनकर चित्रकूट धाम से हो गए, बबीता बघेल हो गए, जितने हमारे अन्य श्रोता सुन रहे सभी लोग के लिए डेडिकेट रह गए गीत।
0: जी बिल्कुल, जिन सभी के नाम आपने लिए हैं, आपको और हमारे सभी श्रोताओं को जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए खूबसूरत गीत प्रेम रोग फिल्म से।
1: ओके दीदी, नमस्ते।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाबाद,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। कहते हैं तुम पास नहीं फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है। तुम पास नहीं फिर भी तुम्हारी फिक्र सताती है। तुम मानो या न मानो, तुम मानो या न मानो, तुम्हारी बहुत याद आती है।
0: लहजे ने हमें कश्मीर पहुंचा दिया है।
1: बिल्कुल सर, सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है और मेरा शुभ नाम नईम मलिक। आपके साथ बात करूँ आज काफी लंबी ब्रेक के बाद आपके साथ बात करूँ। हेलो नजीबाबाद प्रोग्राम जब सुनते हैं तो बहुत बहुत खुश हम होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं इस ठंडे हुए मौसम में। पिछले हफ्तों से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कश्मीर के अंदर और कुछ जो हमारे जिले हैं सैलाबी सूरत हाल भी बन चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले के फजल करम से और पिछले 2 दिन से यहाँ पर अच्छा खासा मौसम एक बार फिर आ चुका है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अब अच्छा सुहाना मौसम वहाँ हो रहा है। कश्मीर तो अपने आप में सुंदरता का खजाना है।
1: जी सर,
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात। कश्मीर जितना खूबसूरत उतनी खूबसूरत आपकी बातें, और हमें लगता है उतना खूबसूरत गीत भी आप सुनना चाहेंगे।
1: जी सर। फिल्म सलामी का नगमा, खूबसूरत है वो, दिल का मेहमान है, मेरे महबूब की यही पहचान है।
0: क्या बात है, तो चलिए सुनवा दें आपको आपके पसंद का ये नगमा।
1: जी, थैंक यू सर, और मेरी तरफ से अपने स्टाफ को प्यार भरा नमस्कार कहना।
0: जी, नमस्कार आपको भी।
1: थैंक यू।

0: हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजी आवाज।
0: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैर से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जी बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार दानिश जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम मिल रही है। अगर थोड़ा सा नज़दीक आ करके बात करेंगे तो आवाज़ एकदम क्लियर आएगी आपकी।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खैम से मोहम्मद दानिश सिद्दीकी जी बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी मैम धन्यवाद।
0: जी दानिश जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैम यही कहना चाहूंगा, क्या बरसात का मौसम चल रहा है और खास तौर से अपना ध्यान रखें, जो घर के आसपास पानी जमा हो जाता है गड्ढों में, तो पानी जमा ना होने दें क्योंकि मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छर काटने से जो है तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं।
0: जी, बिल्कुल, बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी भर जाता है बरसात के कारण और उसमें मच्छर पनपते हैं, तो हमें उनसे बचाव करना चाहिए।
1: और
0: क्या
1: मैम
0: जी,
1: आकाशवाणी आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहें, बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार प्रोग्राम होते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक मनोरंजनदायक प्रोग्राम होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम समय निकालकर सभी श्रोता प्रोग्रामों को सुने और इंजॉय लें।
0: जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। आकाशवाणी नजीबाबाद सभी कार्यक्रम जो प्रसारित करता है वो उम्दा कार्यक्रम होते हैं, हर लिहाज से, मनोरंजन के लिहाज से भी और ज्ञानवर्धन के लिहाज से भी। तो आप सभी सुनते रहिए आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म अपराधी का सॉन्ग सुनवा देना मैम, और कुछ सुनने वालों के नाम हैं
0: बिल्कुल।
1: जैसे साथ में बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, मोहम्मद कामिल है, मकसूद भाई है, मुकेश भाई है, बहादुर सिंह सिद्दीकी हैं, और हमजा सिद्दीकी हैं, और गुलशन साहिबा।
0: तो लीजिए, इन सभी के साथ आप भी सुनिए अपराधी फिल्म से ये गीत अलका याग्निक के स्वर में, गीत के
1: शुक्रिया।
0: बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

0: हेलो नजीबाबाद। हेलो
1: जी हेलो जी मैम नमस्कार।
0: जी नमस्कार, किनसे हो रही है हमारी बात?
1: मैं ग्राम बड़ा गांव तहसील कुम्हरा जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका मांगीलाल धाकड़ भाई बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी को हमारा नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी मैम जी नमस्कार है। मेरा कॉल काफी दिनों के बाद लगी मेरी।
0: जी चलिए, बहुत
1: जी
0: अच्छी
1: मैम
0: बात है कि आपने इतने दिन बाद कॉल लगाई और कॉल लग गई, आप हमसे बात कर रहे हैं।
1: जी मैम
0: कुछ
1: जी
0: अपने बारे
1: मैं
0: में
1: बहुत
0: बताइए मांगीलाल जी।
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम अपने गांव बड़ा गांव में जी। और आपके साथ में रेडियो से मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: मैं आकाशवाणी के सभी आकाशवाणी टून करता हूँ मैम। नजीबाबाद है, भोपाल है, इंदौर है, बम्बई है और गुना है, लखनऊ है
0: अच्छा
1: जी।
0: वाह,
1: वो नजीबाबाद है जी मैम। कार्यक्रम से मैं 25 साल हुए मैम।
0: बिल्कुल। यानी कि आप अपनी खेती किसानी के काम को बड़े आनंद के साथ करते हैं आकाशवाणी के साथ।
1: जी जी मैम, और काफी समय मिल जाता है तो कॉल भी लगा देता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जीवन का आनंद है। जब हम अपने काम को आनंद के साथ करते हैं तो फिर हम कभी नहीं थकते।
1: जी मैम, और मुझे रुचि रेडियो से काफी लगाव है जी। और मुझे मतलब साथ में ज्ञानवर्धक ज्ञान मिलता है रेडियो से
0: जी बिल्कुल। देखिए, लगाव का एक और कारण ये भी है कि
1: जी मैम।
0: आप सुनते सुनते काम को करते हैं, जिससे कि आपका काम में मन लगा रहता है, आपको आपके काम करने की थकान महसूस नहीं होती और काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ी रहती है।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: और टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, देखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है।
1: जी। और आपने खेती में अभी मक्का बोलिए
0: अच्छा
1: जी मैम।
0: जी, कैसी फसल चल रही है?
1: बस बढ़िया है। और अपने जो खाद है और जो चारे की दवाई मवाई दे रहे हैं जी मैम।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनते रहिए, अपनी खेती किसानी का काम बहुत अच्छे से करते रहिए और अच्छी फसल उगाइए। आपको
1: जी
0: बहुत
1: मैम,
0: बहुत
1: और कुछ
0: शुभकामनाएं।
1: जो कुछ मेरे दोस्त हैं उनको याद करना चाहता हूँ मैम।
0: पहले गीत तो बताइए, कौन सा सुनेंगे?
1: मुझे एक गीत है मोहरा कलम का है, ना ना कजरे की दाल ना मोतियों को याद है
0: अच्छा।
1: जी। जी बहुत पसंद है मुझे जी गीत,
0: जी, गीत ही बहुत
1: पंकज उदास
0: खूबसूरत है।
1: साहब और साधना सरगम की आवाज में गीत है जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अमर सिंह ढील हैं, नरेश नरेश प्रजापति हैं, और लोकेन वर्मा जी हैं, गजराज सिंह जोगी जी हैं, और सायना प्रसाद प्रजापति जी हैं, धीरन धाकड़ हैं, मंगल धाकड़ हैं, मोनिशा रुकमणी, चंचल खाना।
0: तो लीजिए, सुना देते हैं आपको आपकी पसंद पर मोहरा फिल्म से ये गीत। इंदीवर का गीत बीजू शाह के संगीत निर्देशन में, पंकज उदास और साधना सरगम के स्वर में।

0: हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: हेलो नजीबाबाद
1: जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
0: तमन्ना किसी को पाने की मत कर, तमन्ना किसी को पाने की बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। तू खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। शायराना अंदाज में आपने शुरुआत की अपने कॉल की, तो अब अपना नाम भी बता दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं ग्रामबा पोस्ट वक्तीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। नमस्ते मैम।
1: जी विमल ठाकुर जी, स्वागत अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में।
0: जी, और आपकी आवाज से मुझे कुछ कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी रीना जी से बात हो रही है शायद,
1: जी बिल्कुल, रीना राजपूत से आपकी बात हो रही है। जी
0: क्योंकि मैं प्रोग्राम सुन रहा था तब तक मेरा नेट खत्म हो गया, पर मैंने कोशिश नहीं, हार मतलब हार नहीं मानी और मैं कोशिश लगातार करता रहा, मेरा फोन लग गया फिर भी।
1: बिल्कुल, देखिए ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सच्चाई है, और आपने उसको आज प्रूफ कर दिया।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं
1: जी
0: सभी श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगा कि अपने किसी भी काम में अगर वो डटे हुए हैं, कर रहे हैं उसे, तो हार नहीं मानना है, हमें आगे की ओर और जाना है, कहीं ना कहीं हमें मुकाम जरूर मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, देखिए, अगर इस दुनिया में कोई काम करने के लिए है तो नामुमकिन तो वो है ही नहीं। हमें ये
0: जी
1: सोच करके आगे बढ़ना है।
0: जी
1: चलिए,
0: और
1: बहुत अच्छी बात विमल जी।
0: मैम आपसे आज बात हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हेलो नजीबाबाद में बड़ी देर से फोन लगता है, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है, तो काफी श्रोता हमारे दूर दूर के इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद सुन रहे हैं, उन सभी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि श्रोताओं से बात नहीं हो सकती, पर रेडियो के जरिए हम सबको
1: जी
0: अपने दिल के एहसास सुना सकते हैं।
1: ये जरिया है जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जोड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: जी
0: मैम, मैं अपने अन्य श्रोताओं से यही कहूंगा कि समय मिलते रेडियो पे फोन लगाया जरूर करें, क्योंकि समय मिलता है तो एक रेडियो हमारा पुराना साधन था जो कि आज से पहले भी चलता था, और अभी भी हम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा, तो उस याद को बरकरार बनाए रखें।
1: जी बिल्कुल, पुराना और सच्चा साथी जो कि हमेशा सच्चाई से आपके साथ खड़ा रहता है। विमल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: मूवी का नाम रहेगा बादल, और इसमें बहती सुरंग में मिलने से दिल डरता है, कहीं प्यार होना चाहिए, ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। चंद सुनने वाले रहेंगे, सबसे पहले मेरी वाइफ रहेंगी सरता जी, और उसके बाद मेरे बच्चे शुभ लव गुनगुन, दिव्यांशु यादव खेड़की बिजनौर से है, सतीश जी फरुखाबाद से है, और भगवान सिंह परमार जी है मध्य प्रदेश से। जितने भी सुनने वाले बाकी श्रोता सभी को गाना डेडिकेट रहेगा।
1: जी लीजिए, सभी श्रोताओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ लीजिए, सुनिए आप ये गीत बादल फिल्म से, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में। गीत के बोल समीर के और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: हेलो नजीबाबाद, हेलो नजीबाबाद
1: हेलो
0: जी,
1: जी,
0: नमस्कार
1: नमस्ते।
0: जी, नमस्कार।
1: मैं
0: कौन बात कर
1: प्रेम
0: रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम पछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, उज्जैन से प्रेम सिंह जी का हम स्वागत करते हैं अपने हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में।
1: जी, थैंक यू सो मच। रीना जी, कैसे हैं आप?
0: जी बिल्कुल अच्छे हैं। आप कैसे हैं और आपके परिवार में कौन-कौन है?
1: जी, हम बढ़िया हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 3 बच्चे हैं मेरे, बिंदिया, साक्षी और कृष्णा।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या काम करते हैं आप?
1: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: अच्छा, बहुत
1: हाँ
0: अच्छा,
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात। तो क्या कुछ
1: और
0: कहना चाहेंगे आज के
1: आकाशवाणी
0: कार्यक्रम में?
1: के, जी बताना चाहेंगे, आकाशवाणी के कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोबाइल ऐप पर
1: जी,
0: ही सुन रहे
1: और
0: हैं?
1: हाँ जी, अभी भी कार्यक्रम सुना हूँ, एक मोबाइल पर और एक मोबाइल से ट्राई कर रहा था तो मेरा कॉल लग गया।
0: बहुत अच्छा। तो क्वालिटी एकदम क्लियर मिलती है ना प्रोग्राम्स की?
1: हाँ जी, बिल्कुल, एकदम स्पष्ट प्रसारण मिलता है, तो आप जैसे
0: चलिए
1: मुंह बोलते हो ना, वो भी सुनाई देता है। जी
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल,
0: इतनी क्लियरिटी चलिए, बहुत अच्छी
1: और
0: बात है।
1: अभी जी, अभी आपने अगले कॉलेज, पिछले कॉलेज से जो बात करी थी ना, और वो बोल रहे थे कि उनका कॉल बड़ी मुश्किल से लगा, इसी तरह मैं भी ट्राई करता रहा तो आखिरकार मुझे भी सफलता मिल गई।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको सफलता मिली। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस सफलता पर?
1: इस सफलता पर आप सुनवा दीजिएगा, विरासत फिल्म का नाम है और गाने के बोले तारे हैं बाराती।
0: क्या बात है, खुशियां हैं तो खुश। कितना बढ़िया गीत आपने चुना है। चलिए बिल्कुल,
1: जी
0: आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का ये गीत। तो लीजिए, पेश है ये गीत विरासत फिल्म से कुमार सानू और जसपिंदर नरूला के स्वर में। आप सभी सुनिए ये गीत।

विरासत फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम संपन्न करने की रीना राजपूत को अब दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फरमाइश पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबा बात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबा बात केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर।

विश्वास आपसे है, हर आस आपसे है। कुछ खास तो नहीं यूं दरमियां हमारे, बस जो है वो है इतना, हर सांस आपसे है। जी हाँ, आपका प्यार लीजिए फिर से खींच करके ले आया है आपके साथ। कार्यक्रम शुरू हो चुका है रात के हम सफर, और हम आमंत्रित करते हैं आप सभी के व्हाट्सएप मैसेजेस इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, अपने उन श्रोताओं को जिनके पास नंबर हमारा नहीं है। नंबर है 9457078288, 9457078288।

0: 8, ये हमारा नंबर है, इस पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज। अब मैसेज में आपको क्या लिखना है वो हम आपको बताते हैं। आज हम बातें करेंगे, रात का हम सफर कार्यक्रम है। तो सुबह हुई, दिन भर हमने अपने बहुत सारे काम किए होंगे, हम बहुत लोगों से मिले होंगे, इधर उधर कहीं गए होंगे, तो हम साझा करेंगे कोई खास काम जो आपने किया हो, जिससे किसी दूसरे की मदद हुई हो, या फिर किसी ने आज आगे बढ़कर आपके साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे आपकी मदद हुई हो। तो लिख डालिए हमें मैसेजेस हमारे इस नंबर पर, हम इंतजार कर रहे हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। तो जब तक हमें आपके मैसेजेस मिलते हैं, एक खूबसूरत गीत आपके लिए।
1: कैसे जीते हैं भला।

केसरी सिंह बैसिया, ज़िला भोपाल, मध्य प्रदेश से हमें मैसेज करते हैं, लिखते हैं, आज हम हमारे गांव गए थे करीब एक महीने में, और जाकर देखा कि गाय और बछड़ा और भैंस हमको दूर से ही देखकर रहने लगे। उनसे ये सीख मिलती है कि पशु भी इंसान को नहीं भूलते, जबकि उनको हमारे भैया चारा डालते हैं और हम आर्टिस्ट हैं। फिर हमने कुछ मंदिर पर कुछ काम रह गया था उसको पूरा किया, और हरी भरी साग सब्जियां और दूध लेकर बैरसिया वापस लौट आए, तो गांव की हमें बहुत याद आती है। जी बिल्कुल, देखिए सीखने के लिए तो हमें कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, बस हमें सीख लेना चाहिए। और देखते हैं कोई और मैसेज हम तक पहुंचा है क्या। हमारे बहुत सारे श्रोता हमें मैसेज कर तो रहे हैं, लेकिन वो फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम समझ करके मैसेज कर रहे हैं, तो ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है। ये कार्यक्रम है रात के हमसफ़र, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं, दिन भर में आपने कोई काम, कोई अच्छा काम ऐसा किया हो जो किसी दूसरे के लिए हो, किसी दूसरे की मदद हुई हो, या फिर आपकी मदद किसी ने कर दी हो, तो वो आप किस्सा हमें लिख करके भेजिए, हमें पढ़ने में बहुत खुशी होगी। ये एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, शाही मार्केट सिहारा, ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी का। लिखते हैं, आज मैं बाज़ार गया था आम लेने के लिए, तो मैं आम ले लिए, एक आदमी और खड़ा था मेरे पास, वो पैसे दे रहा था आम वाले को, बाकी पैसे जेब में रख रहा था, लेकिन उसके पैसे जेब में नहीं रखे गए, पैसे नीचे गिर गए और उसको पता नहीं चला, मेरी नज़र पड़ गई। मैंने उससे कहा, भाई तुम्हारे पैसे गिर गए, उठा लो। उसने पैसे उठा लिए और बहुत खुश हुआ, कहने लगा, इस दौर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे आपके हैं, आपको मिल गए, और ये बात आज सुबह 11 बजे की है। जी देखिए आसिफ चौधरी जी, बहुत ही अच्छा काम आज आपने किया, कितनी दुआएं आपको मिली होंगी, जबकि आपने उनको बताया, उनके पैसे गिर गए, उन्होंने उठा लिए। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो ढेरों शुभकामनाएं हमें मिलती हैं, जो कि काम करती हैं हमारे जीवन पर, हमारे जीवन को सुंदर, सुकून भरा बनाने के लिए। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, जिला संबल गांव सिरसा से सचिन प्रजापति, कमल प्रजापति लिखते हैं, आज मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर खूब काम किया, तो काम 4 घंटे में ही हो गया। वाह क्या बात है, देखिए आपने और आपके भाई ने काम मिलकर के काम किया, कहते हैं ना 1 और 1 11, तो आप आज 1 और 1 11 बन गए, और आपने काम को, पूरे दिन के काम को सिर्फ 4 घंटे में ही बिता दिया, क्या बात है, बहुत खूब। गीत आपको सुनवाते हैं और फिर से लौटेंगे आपके मैसेजेस के साथ, तो जल्दी जल्दी हमें मैसेज कर दीजिए।

कार्यक्रम चल रहा है रात के हम सफर, मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं हमारे श्रोताओं के। लिखते हैं, आज सुबह से ही मौसम बहुत खुशगवार था, कभी हल्की हल्की बारिश होने लगती थी तो कभी तेज धूप, सारा दिन धूप और बारिश का खेल चलता रहा। लेकिन इसी बीच मैं घर से बाइक उठाकर बाहर निकला तो एक बुजुर्ग जो कि बारिश में भीग चुके थे, मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं?

गए थे और कोई काम से मार्केट जाते हैं सामान लेने, मगर वहाँ पर बारिश आ गई और जोर की, तो हम आए थे वापस से, ट्रक आया इतनी जोर का क्योंकि हमारे सारे कपड़े आज खराब हो गए, तो बहुत परेशान हो गए थे हम आज। यानी कि आज आपको किसी से परेशानी हुई, तो ये भी देखिए परेशानी हुई तो, बट नेचुरल सी बात है कि आपके मुंह से कुछ अच्छे शब्द तो नहीं निकले होंगे, तो जिन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इट मीन्स उनको क्या मिला, एक नेगेटिव वाइब। तो हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना है कि हमें वापसी में नेगेटिव वाइब मिले, ठीक है? तो ये भी हम सबके लिए एक अच्छी सी बात आज कार्यक्रम में सुनने को मिल गई। एक और देखते हैं मैसेज, ये आया है हमारे पास गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव। लिखते हैं, यूं तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल से मदद की जाए तो। आज दोपहर के समय जब मैं जंगल की तरफ गया तो वहाँ देखकर किसान बुखार से परेशान है। वहाँ देखा कि एक किसान बुखार से उसके खेत में पानी दिया। वाह, आपने भी कितनी सारी दुआएं ले ली ना उनकी। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखते हैं, दीदी जी हम हर दिन गौशाला जाते हैं, हमें गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। हमारी ईश्वर से यही दुआ है कि जब तक जिंदगी है ये कार्य चलता रहे। आप हैं अमीन, आदर्श नगर, मलोट, पंजाब से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। तो बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता हमें लिख करके भेज रहे हैं। अभी हम और इंतज़ार कर रहे हैं अपने श्रोताओं के मैसेजेस का, तो भेज दीजिए हमें मैसेज। एक गीत आपको अभी हम सुनवा रहे हैं।

नगीना से अनिल विनोचा हमें मैसेज करते हैं, आज का टॉपिक एक दूजे की मदद बहुत अच्छा है। लिखते हैं, मैं बैंक में किसी काम से गया था, वो तो वहाँ एक जवान लड़का सेविंग अकाउंट खोलने आया था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और फॉर्म इंग्लिश में छपा था, जो कि बहुत बड़ा होता है। कोई बैंक कर्मचारी उसके बारे में के लिए मदद नहीं कर रहा था उसकी। वो मेरे पास आया, बोला अंकल जी मेरा फॉर्म भर दीजिए। मैंने उसका फॉर्म भर दिया, वो खुश हो गया और मेरा शुक्रिया नमन कर चला गया। इस तरह मैंने उसकी मदद की। बहुत अच्छा। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, कस्बा रेहड़ ज़िला बिजनौर से बादशाह फरीदी लिखते हैं, अपनी बीती बातें साझा कर रहा हूँ। एक दिन स्कूल से आकर यूनिफॉर्म उतारी, फिर कभी नहीं पहनी और एक दिन टीचर ने आखिरी बार मेरा नाम पुकारा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा था, यस मैम। तब कहाँ पता था कि ये सिर्फ एक हाजिरी नहीं बल्कि उस क्लासरूम में मेरी आखिरी मौजूदगी थी। उसके बाद मैं ना कभी रोल नंबर पुकारा गया, ना कभी प्रेजेंट मैम कहने का मौका मिला। बस यादें रह गईं और कुछ अधूरे से दोस्त। चलिए, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। और एक गीत आपके लिए हम लेकर के आए हैं, हम अपने सभी श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: इसी के साथ रात के हमसफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हमसफर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
4: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
5: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
3: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026